वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठकर के अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठकर के सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो की उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सोच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वस्थ
किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा लें तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद को मिलाकर के पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है, किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की, तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है,
जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया, आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के

सुप्रभात साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका आपके अपने सुबह के कार्यक्रम में, जो कि भक्तिमय कार्यक्रम है पहली किरण, जो लेके आ गई है आपकी आरजे आकांक्षा। आज की सुबह हम लेकर आए हैं एक विशेष विषय, भक्ति की शक्ति। भक्ति, भक्ति वो शक्ति है जो इंसान को भगवान से जोड़ देती है, कभी प्रेम के रूप में, कभी सेवा के रूप में, कभी बलिदान और ईमान के रूप में। हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर सभ्यता में भक्ति की यही लौ जलती रहती है। आज हम इस अनोखे सफर में हर धर्म से किसी ना किसी महान भक्त की कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि भक्ति आखिर इतनी शक्तिशाली क्यों है।

भक्तों को भगवान से भी बड़ा कहा गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, भक्त बड़े भगवान से कही तुलसीदास, बलिहारी भगवान की जो भय भक्त के दास। यानी भगवान भी अपने भक्तों के सामने झुकते हैं। दोस्तों वो लाइन तो याद होगी ना, चित्रकूट के घाट पे भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। हाँ जी, जब ईश्वर भक्त को उसकी भक्ति से जानता है तो वो अपने भक्त के सामने विनम्र हो जाता है।

0: साथियों, भक्ति की बात हो और हनुमान जी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हनुमान जी की सेवा सबसे बड़ी पहचान है, यही है उनकी पहचान कि वो राम भक्त हैं। युद्ध के मैदान में जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी ने बिना देर किए पूरा पर्वत उठा लिया। लोग पूछ बैठे, हे पवनसुत, पूरा पर्वत क्यों लाए? हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिनो मोय कहाँ विश्राम। सोचिए, जो भक्ति आपको अपने प्रभु का काम ही जीवन मानने पर मजबूर कर दे, वही है ना सच्ची भक्ति।
1: श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले

वैसे हनुमान जी के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है जब माता सीता वनवास के उपरांत वापस अयोध्या आती है, उस वक्त हनुमान जी की भक्ति की परीक्षा की जाती है माता सीता जी के द्वारा। अब भाई हनुमान जी तो भाई माता सीता के ही आशीर्वाद से सभी शक्तियों का ज्ञान रखने वाले हैं, रुद्र के अवतार हैं और साथ ही साथ श्री राम के भक्त, यानी हर तरह से पूर्ण। जब बात हुई माता की महिमा की, हाँ ये एक छोटी सी महिमा ही थी, एक परीक्षा हनुमान जी की, उनको रोक दिया गया कि एक दिन आप खाली प्रभु की सेवा नहीं करेंगे। सीता जी का कहना था हनुमान जी से कि आज आप एक दिन के लिए खाली हमारे प्रभु की सेवा नहीं करेंगे, आज पूरा दिन मैं स्वामी की सेवा करूंगी। हनुमान जी कहाँ रहने वाले भाई, राम नाम का भजन जहाँ होता है वहीं हनुमान जी मिल जाते हैं। तो हुआ क्या, हुआ यूं कि उस दिन पूरे दिन हनुमान जी चुटकी बजाते हुए खाली राम नाम राम नाम राम नाम जपते रहे, यानी राम नाम का जप करते रहे। और इस तरह से एक बार आ गई हमारे प्रभु श्री राम को उबासी, उसी दौरान उनके सांस में अटकन आ गई। फिर राज वैद्य को बुलाया गया, सारी तरकीबें अपना ली गई, कोई फायदा नहीं रहा। तब जाके हनुमान जी को बुलाया गया और जब हनुमान जी स्वयं प्रभु श्री राम के समक्ष आए और हाथ जोड़कर जब उन्होंने उनके चरणों में वंदन किया, उनकी सांस वापस आ गई, क्योंकि वो राम भजन करना बंद कर चुके थे। एक तार में एक ही धुन में पूरे दिन लगातार उन्होंने राम नाम का जप किया था। तो ये थी राम भक्ति की शक्ति। हाँ जी, जब हम अपने ईष्ट में अपने ईश्वर में पूरी तरह से रम जाते हैं तो ईश्वर भी हमारे अधीन हो जाते हैं।

0: वो मेरे राम को क्या हुआ मेरे बेटे को? राम, अरे कोई है, कोई देखो, कोई देखो। राम बेटे
1: आगे आएगा, उसे देखा जाएगा रे।

0: कोई उपाय कीजिए गुरुजी, कोई उपाय कीजिए।
1: नहीं ठीक है, पाप नहीं, कुछ नहीं। हनुमान जी कहाँ हैं?

0: प्रभु बजरंगबली, तो ये हनुमान जी की चुटकी का चमत्कार था। सत्य है, सेवक बिना स्वामी को, भक्ति बिना भगवान को चैन का।
1: हाँ हनुमान, तुम जीते हम हारे।
2: आज से राम की सारी सेवाओं का अधिकार हनुमान को है। ये अनन्य सेवक है।
3: और अब सुनिए प्रेम भक्ति की मिसाल, मीराबाई। मीराबाई एक राजकुमारी थी, लेकिन जीवन भर कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। उन्हें जहर का प्याला दिया गया उन्हीं के ज्येष्ठ के द्वारा, लेकिन उनके कृष्ण ने उस जहर को भी अमृत बना दिया। फिर मीरा ने उनके लिए भजन गाया। वो भजन क्या था वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रेम की भक्ति के बारे में कुछ जान लेते हैं। जब ईश्वर के सिवा कुछ और ना सूझे, कितना भी बड़ा संकट हो पल में बूझे, उसे कहते हैं प्रेम की शक्ति, यानी प्रेम में भक्ति।

तो इस तरह हनुमान जी ने सेवा और निष्ठा से भक्ति दिखाई, मीरा ने प्रेम और समर्पण से, यानी भक्ति की शक्ति सेवा और प्रेम का मिलाप है, भगवान का आशीर्वाद है।

तो इस तरह से हनुमान जी का प्रभु श्री राम के प्रति अटूट प्रेम, संजीवनी पर्वत उठाना, लंका दहन आदि लीलाएं, और राजमहल की राजकुमारी होकर भी कृष्ण भक्ति में लीन, विष का प्याला पीना लेकिन भक्ति से विष अमृत हो गया, ये है प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा में से एक। हाँ, भक्ति में प्रेम।

अब चलेंगे इस्लाम धर्म की ओर और जानेंगे भक्ति क्या है। हजरत बिलाल पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के साथ थी। उन्हें काफिरों ने पत्थरों से दबाया, फिर भी वे कहते रहे अहद अहद, यानी ईश्वर एक है। ईश्वर के प्रति अटूट ईमान ही भक्ति की शक्ति है। इस्लाम धर्म के मुताबिक ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह ताला एक है।

आप आवाजें सुन रहे हैं, बड़े घुंघरू की आवाजें। एक बहुत छोटा घुंघरू होता है, चार मुंह का घुंघरू, उसकी आवाज में डिफरेंट होता है। जरा मुलाहजा कीजिए कि बदलाव कैसा आवाज में आता है। एक कलाकार ने बड़े घुंघरू बांध रखे हैं और एक कलाकार ने छोटे घुंघरू।

सोचिए, मौत सामने खड़ी हो और फिर भी इंसान का ईमान ना डिगे, यही है भक्ति की असली शक्ति। अब चलते हैं एक और कहानी की ओर, जो कि सिख धर्म से है। गुरु अर्जुन देव जी, नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बताती हूँ। गुरु अर्जुन देव जी, जिनको जबरन गर्म तवे पर बैठाया गया, उन्हें जलते रेत और उबलते पानी से सताया गया, लेकिन उनके होठों से निकला, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। यानी प्रभु, जो भी तेरा किया है वह मुझे मीठा लगता है। सोचिए ये कैसी भक्ति है जो दर्द को भी प्रसाद मान लेती है, है ना भक्ति की पराकाष्ठा, जहाँ भक्त भी भगवान को अपने अधीन कर लेता है।

0: अब आपको एक और भक्त की कहानी बताते हैं। भक्त कबीर। जात पात मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर कहा उन्होंने, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ कोई बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी भक्ति का अर्थ है सीधा ईश्वर से प्रेम, ना ही मंदिर, ना ही मस्जिद, ना ही गुरुद्वारा। ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है।
1: Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence.

इन दोनों की भक्ति बताती है कि भक्ति का मार्ग सत्य और बलिदान से होकर गुजरता है। ईश्वर के प्रेम को पाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप ईश्वर में प्रेम रखते हैं तो ईश्वर खुद आपसे जुड़ जाता है।

साथियों, जब हम भक्ति की शक्ति पर मनन करते हैं तो एक गहरी सच्चाई सामने आती है। भक्ति केवल मंदिर की घंटियों या मस्जिद की अजान तक नहीं सीमित है। ना सिर्फ ये वेद, कुरान, बाइबल या गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों में है। भक्ति की असली शक्ति, भक्ति का असली रूप है प्रेम, सेवा, सत्य और करुणा। हनुमान जी की भक्ति में निष्ठा है, बिलाल की भक्ति में अडिगिमान है, गुरु अर्जुन देव की भक्ति में बलिदान है, मदर टेरेसा की भक्ति में सेवा है और आनंद की भक्ति में करुणा है। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़कर सिर्फ प्रेम और समर्पण में जीना सीख लेता है तो वही है भक्ति की असली शक्ति। और याद रखिए, भक्ति का अर्थ है ईश्वर को पूजना। नहीं, भक्ति का अर्थ ईश्वर को पूजना नहीं, बल्कि ईश्वर के स्वरूप इंसान की सेवा करना।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: झक मार के, वाह क्या बात है। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपकी मॉर्निंग जॉक आर जो इतना आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और लगता है कि अपन को कोई याद कर रहा है सुबह सुबह हाईला वेंसडे के बाद, अगर कोई याद करता है सबसे ज़्यादा तो ट्यूसडे को मुझे ऐसा लगता है। सो फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपकी मॉर्निंग जॉक देखा आरजे अदनान। सो चलिए बताते हैं आपको कि आज का ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल क्या है, थॉट ऑफ द डे जो आज के दिन को आपके बनाने वाला है।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो चलिए आपका अब वेलकम करने के साथ ही साथ बताते हैं कि आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। दरअसल आज का जो मॉर्निंग थॉट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल कैसे है, क्योंकि आज का थॉट कहता है खुद को चमकने दें, खुद को चमकने दें, लेकिन दूसरों की नज़रों में आने की चाहत ना रखें। खुद को चमकने दें लेकिन दूसरों की नज़रों में आने की चाहत ना रखें। साधारण सा एक थॉट लग सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसके मायने हैं। कैसे? अगर आप ये जानते हैं कि भाई आप ऑफ कोर्स चमकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने लिए ऐसे हैं एक स्टार के मानिंद, एक सितारे के मानिंद जो चमकता है, राइट। बट जब वही चाहत बन जाए कि दूसरे भी उसी नज़रों से देखें जैसा आप खुद को देखते हो, कि आप बहुत कूल हैं, बहुत काम है और आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कर लेते हैं, आप डील कर लेते हैं, अब आप सोचते हैं कि हर शख्स मुझे ऐसा समझे कि हाँ मैं हूँ ऐसा, या आपकी जो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, चमकती जा रही, वो चमक दूसरा भी महसूस करे। सो ये चाहत रखना थोड़ा सा आपके लिए डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जिस निगाह से आप देख रहे हैं, और ज़रूरी क्या, बिल्कुल ऐसा होता भी है कि भाई आप जिस निगाह से देख रहे हैं, सामने वाला उस निगाह से नहीं देखने वाला है, ये बात तो फैक्ट है। तो इस बात को समझा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई साहब ये जो हम चमकते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन हम दूसरे से नहीं कर सकते हैं कि भाई वो भी हमको इसी निगाह से देखें। तो खुद चमकते रहिए, खुद पे काम करते रहिए, खुद को बेहतर फील कराते रहिए। अक्सर कहते हैं कि लोग डायलॉग मारते हैं कि मैं बताऊंगा जिन लोगों ने मुझे ये कहा था उनको करके दिखाऊंगा। किसी को करके नहीं दिखाना है। हो सकता हो कुछ ऐसा आपने सोच लिया हो कि ये करना है, और बाद में वो आपके लिए ठीक भी ना हो, और आप बहुत मुश्किल से कर भी ले, बाद में आप दिखा भी दें लोग के अरे हाँ कर तो लिया, लेकिन आपको खुद ही महसूस हो कि इससे मिला कुछ भी नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, वो हर वो चीज़ करनी है जो आपको महसूस कराए कि हाँ ये बेहतर है, ये ठीक है, ये होना चाहिए था, हर वो चीज़ सही है, ना कि वो चीज़ें कि हमें किसी को करके दिखाना है। किसी को करके हम एक एहसास दिला करके क्या कर लेंगे, वक्त हमारा जाएगा, एफर्ट्स हमारा लगेगा, तो फिर कहीं ना कहीं हमको इस बात को समझना होगा कि इससे क्या मिलने वाला है हमको, राइट। सो अगर ये हम समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हमको समझ में आ ही जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई खुद आप शाइन होइए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चमक आपको दूसरों की नज़रों में भी नज़र आए, ऐसा देखें वो, तो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि दूसरे भी समझेंगे और दूसरे भी कहेंगे, तो ये शायद अप्रोप्रिएट उतना नहीं होने वाला है, और यही कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। सो भाई ये ट्यूसडे मॉर्निंग स्पेशल वाला थॉट तो काफ़ी स्पेशल निकला, सुनने में काफ़ी साधारण सा लेकिन बड़ा ही असरदार करने वाला निकला। फिलहाल आपका क्या है मानना, आप इसको कैसे देखते हैं? अगर आपकी बात आए तो भाई आप इसको कैसे देखते हैं, चलिए ये बताइए। और तब तक के लिए हम आपको ले चलते हैं अगले सॉन्ग की तरफ। सॉन्ग सुनते हैं, वापस से आते हैं, आने के बाद देखते हैं कि भाई आपने क्या लिखा है, और साथ ही साथ आपकी मॉर्निंग विशेस। सो आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से अपना मॉर्निंग वाला शो लाइव मॉर्निंग चौक आरजे अदनान के संग। स्टे ट्यून्ड।

0: आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार चाहे लाइफ में हो, चाहे फ्रेंड्स में हो या वर्क प्लेस पे, कम लोग हो लेकिन बेहतर हो, ये बड़ा अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। वैसे ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि सच में जो आसपास का माहौल होता है वो बड़ा असर डालता है। एंड माहौल के बारे में आपने अभी तक तो भाई लाइफ में कई बार इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि हाँ, जब भी कुछ ऐसा होगा कि जहाँ बहुत ज़्यादा लोग होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, वहाँ बहुत सारी कन्फ्यूजन भी होगी, लेकिन जहाँ मुख्तसर से लोग, वहाँ आराम से कुछ भी किया जा सकता है। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। एंड चलिए भाई चलते हैं आपको विश करते हुए, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM। कुछ मैसेजेस आपके आ चुके हैं चैट बॉक्स की तरफ, रुख करते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

हाँ जी, तो पहला मैसेज जो आया है इस शो में वो दुर्गा प्रसाद का है। हाय लिखा है, हेलो, क्या हाल है? बढ़िया। तानिया है, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग टू यू। सविता दुबे जी हैं, सुप्रभात सभी को, भाई आपको भी सुप्रभात। प्रीति जी हैं बहराइच से, लिखा है सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। वेलकम करते हैं आपका मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। साथ ही प्रीति जी लिखती हैं, नाइस थॉट, कोशिश लगातार अच्छा करने की ही रहती है, बट अब हर कोशिश परिस्थिति के अनुकूल ही करूंगी। बहुत प्यारी बात कही आपने। सो ये जो आज के थॉट ने बताया कि खुद को चमकने दें लेकिन दूसरों की नज़रों में आने की चाहत नहीं रखना है, है ना? तो खुद जो है वो आप चमकते रहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि दूसरे भी उस चीज़ को कंसीडर करें, उसको समझे, उसको माने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद को चमकिए दें, और चमकने देते से होगा ये कि आप खुद की नज़र में बहुत अच्छे हो जाएंगे। एट द एंड एक लाइफ का जब फेज़ इंसान पार कर लेता है तो उसको समझ में आता है कि यार मुझे दरअसल अपने लिए ही बेहतर होना था, अब तक तो हम न जाने क्या क्या करते आए। तो बस अगर आप खुद के लिए बेहतर हैं तो बिलीव मी कि आप सभी के लिए खुद ब खुद बेहतर हो जाते हैं। लेकिन जब खुद दूसरों के लिए बेहतर होने की कोशिश करते हैं तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आप दूसरों के लिए बेहतर हो भी नहीं पाते हैं और अपने लिए तो खैर हो ही नहीं। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस, मुझे तो लगता है भाई ये छोटा सा थॉट बहुत ज़्यादा असर करने वाला है बॉस। सो फिलहाल चलिए निकलते हैं अगले ट्रैक की तरफ, और बड़ा ही खूबसूरत सा गाना मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपने ट्यून कर लिया है अपना मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग उड़ा वेडियो मॉर्निंग चौकार जो नॉन ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। सो भाई, चलिए इतनी सारी बातें हम बताते हैं, और कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि आप सुन करके कहते हैं वाह क्या बात है, और कुछ बातों में कहते हैं अरे ये क्या है। यानी कई सारे अमेजिंग से फैक्ट्स होते हैं और कई सारे सवाल होते हैं उसमें। फिलहाल हम एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो सुन करके आप कहने वाले ओ माय गॉड, दिस इज़ अ साइलेंट किलर। जी हाँ, सो आखिर ये साइलेंट किलर है कौन और कैसे कर रहा है ये अपने काम को अंजाम, यानी ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले हम सुनेंगे इस खूबसूरत से गाने को आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, और यही तो है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: सो भैया देखते ही देखते जिस जून का इंतजार था, नानी के घर जिस जून में आप जाते थे, जिस जून में आप दशहरी आम खाने की लालायित रहते थे, और ये सब कुछ होता था इसी समर वेकेशंस में। फिलहाल उसको देखते देखते आज 9 तारीख हो गई, लेकिन अगर हम कल की तारीख की बात करें यानी 8 तारीख की, सो कल एक स्पेशल डे था जिसके रिगार्डिंग मुझे बताना है, और वो एक कंसर्न की बात भी है। यानी कल 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे था। भाई सभी का दिन होता है, मेंस डे, विमेंस डे, और न जाने कौन कौन से हम लोग डेज मनाते हैं, टीचर्स डे और बहुत सारे फलों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। सो समुद्र के लिए भी तो होता ही होगा ना। सो कल को लेकर के हम बता दें, कुछ तो ऐसा है जो है बहुत छोटा हमारा है, लेकिन वो पूरे पूरे समुद्र के लिए काल बनता जा रहा। आखिर क्या है वो बताते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो दुनिया में हर साल जो है वो 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे मनाया जाता है, और इसी वर्ल्ड ओशियन डे को लेकर के मुझे एक बात याद आई, तो मैंने कहा भाई इसको कहना ज़रूरी है, क्योंकि हम समुद्र के पास जाते हैं और बहुत ही अच्छा फील करते हैं, वो उठती हुई लहरें, वो आती हुई हवाएं, और वो सुकून के पल, और वो पानी का शोर, ओहो, ऐसा लगता है जैसे सारा स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाता है। लेकिन वहीं बैठ कर के कुछ ऐसा करते हैं, वहीं खेलते हुए, जो समुद्र के लिए काल बनता जा रहा है। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक्स की। हर साल लाखों टन प्लास्टिक्स समुद्र के लिए खतरा बन रहा है, जिसमें जो रहने वाले जल जीव हैं उनके लिए काल है। सो आपको हम बता दें, समुद्र में पहुंच रहे हैं लाखों टन प्लास्टिक्स, कचरे में फंस करके लाखों सील, शार्क, कछुए तैर नहीं पाते हैं और इसे खाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका दम घुटता है और फिर वो इस दुनिया से ही चले जाते हैं। सो ये प्लास्टिक पानी में टूटकर 5 मिलीलीटर से भी छोटे कणों में बदल जाता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। छोटी मछलियों के प्लैंकटन इन्हें अनजाने में निगल जाते हैं। इसमें मौजूद जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं, ये उनकी बॉडी में जहर घोल देते हैं। और अगर हम बात करें कछुओं को प्लास्टिक थैलियों यानी जेलीफिश जैसी लगती है, जो कि उनका मुख्य भोजन है, प्लास्टिक चूंकि इससे पेट में ज़्यादा जमा हो जाता और पचता ही नहीं है। सो रिसर्च के मुताबिक अगर बताएं तो सी फूड खाने वाले इंसानों के शरीर और उनके खून में भी अब माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं। एंड इसके साथ ही साथ समुद्र का जो रेन फॉरेस्ट कहे जाने वाला कोरल रीफ्स है, जो प्लास्टिक से ढक जाते हैं, तो उन्हें धूप और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है। इससे बीमारियां फैलने का खतरा 80% तक बढ़ जाता है। सो कोरल रीफ्स नष्ट होने से वहां रहने वाले हजारों प्रजातियों का घर छिन जाता है। इसके अलावा आज हमने समंदर को डंपिंग ग्राउंड बना दिया है, यानी जो भी कूड़ा कचरा होता है हम जाके समुद्र में ढकेल आते हैं। इससे क्या होने वाला है, सोचा है कभी? सोचिए, नहीं सोचा है तो सोचिए, क्योंकि इससे हम पूरा इकोसिस्टम बिगाड़ रहे हैं। हम खेलने जाते हैं, उधर रहने जाते हैं, बॉटल्स फेंक देते हैं, रैपर्स फेंक देते हैं। सो ये कितना अप्रोप्रिएट है, इतना बड़ा समुद्र, उसमें रहने वाले इतने प्यारे प्यारे नन्हे जीव जो होते हैं, जलीय जीव, उनके लिए ख़तरा हम बन रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम मुश्किल में डाल रहे हैं। इस बात को समझा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फिलहाल इस खास दिन पर, यानी जो 8 तारीख को मनाया जाता है, कल मनाया गया वर्ल्ड ओशियंस डे, इस पर हमारी यही अपील है कि भाई अगर ऐसा हम कुछ भी कभी भी जाते हैं सी साइड में, तो हम इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। फिलहाल जो डंपिंग जोन बन रहे हैं उसको लेकर के आपकी भी अगर कोई राय है तो आप भी बता सकते हैं कि आखिर ये इंसान इतना ज़्यादा मतलबी क्यों होता जा रहा है।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग जूट को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

Hell VIP t-shirts and matching Ferrari ho. कभी तो बैंक में करेंसी करारी हो,

हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में। आई होप कि आपने इस गाने को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। जिस गाने में जिंगल जिंगल है, तो भैया आपको अपने बचपने का जिंगल बेल ज़रूर याद आ जाता होगा, क्योंकि मुझे भी याद आ जाता है। फिलहाल आपको कुछ ऐसे पौधों के नाम बताने वाले हैं जिनके फूल जो है वो बड़े ही खुशबूदार होते हैं, और अगर घर में लगा लिया आपने तो भाई वाह वाह वाह वाह, क्या ही बात है। मतलब इन फूलों को अगर आप लगाएंगे तो पूरा घर महकेगा, इसकी गारंटी तो हम भी ले रहे हैं। सो कौन कौन से फूल हैं वो, देखिए पहला तो मोगरा है। मोगरा हम सभी लोगों ने नाम सुना है, और क्या महकता है भाई साहब, इसके तो परफ्यूम्स भी आते हैं, इसके तो सेंट्स भी आते हैं, और उसमें मोगरा नाम मेंशन्ड भी होता है। इसके अलावा होता है रात की रानी, जो कि हम सभी लोग पता है कि भाई ये रात में बड़ा महकता है और बड़ी ही खुशबू आती है। हालांकि इसको लेकर के बड़े ही मिथ्स भी होते हैं, लेकिन भाई मिथ्स तो मिथ्स होते हैं, फैक्ट्स ही फैक्ट्स होते हैं। इसके अलावा चमेली का नाम तो भाई सुना है, और गानों से लेकर के फूल तक चमेली अपने आप में अलग ही अपना रुतबा रखती है। सो ये बिल्कुल सच्ची और सही बात है। एंड इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो भाई गंधराज करके भी एक फूल है, जिसकी स्मेल बड़ी ही प्यारी होती है, और ये आप घर में इसको लगा सकते हैं। जूही जानते ही होंगे, जूही का जो फूल होता है ये भी बड़ा ही खुशबूदार होता है। इसके अलावा रजनीगंधा, आय हाय हाय, इस नाम पे तो भाई आकाशवाणी का शो भी बना, और साथ ही साथ लता मंगेशकर जी ने बड़ा ही प्यारा गाना गाया रजनीगंधा पे। सो ये जो फ्लावर है ये बहुत ही महकता है और घर को आपके एकदम फ्रेश सा कर देता है। सो मधुमालती भी है, इसके अलावा चंपा है और हरसिंगार है। यानी अगर हम ये नौ पौधों की बात करें जिनके फूल जो है वो बहुत ही खुशबूदार होते हैं, तो इसमें से आप अपने घर पे लगा सकते हैं। हमने बताया मोगरा, रात की रानी, चमेली, गंधराज, जूही, रजनीगंधा, मधुमालती, चंपा और हरसिंगार। ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो आप आराम से गमले में करके अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा महकने वाले हैं। जी हाँ, सो आई होप कि आज मैंने आपकी हेल्प कर दी है, इस बात को जान गए हैं आप। और आज ही जब आप लौट रहे होंगे तो डीएम बंगले के सामने भी नर्सरी है, इसके अलावा आपको लाइफलाइन हॉस्पिटल के पास हाईवे पर भी नर्सरी मिलने वाली है, और कई जगह ऐसी हैं गोंडा में स्पॉट्स हैं जहाँ पे नर्सरीज़ हैं, यानी ये लखनऊ रोड पे मिलता है, सिंचाई विभाग के आसपास कई सारी नर्सरीज़ हैं। सो जहाँ पे भी आपको मिल जाए आप ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये घर में रखने से बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार हो जाता है। अगर अच्छा, हम हर चीज़ में हिसाब किताब लगाते हैं, कुछ चीज़ें सच में ज़िंदगी को महकाती हैं, फ्रेशनेस देती हैं, उसमें इतना नहीं सोचते हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोचना ही हमारे लिए दिक्कत बन जाता है, बेहतर होता है कि भाई हम चीज़ों को करना भी सीखें। सो चलिए, अगर ये पौधा आप लगाते हैं इनमें से कोई भी, तो हर खुशबू में कहेंगे वाह वाह, थैंक यू आरजे अदनान, थैंक यू। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं अगले म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: कहते हैं ना, लाइफ जब ढकेलती है पीछे तो इसका मतलब होता है कि कुछ आगे जाने के लिए इंतज़ाम कर दिया है। बस यही वो मोमेंट होता है जब हमको ख़ुद के लिए समझना होता है और ख़ुद के लिए होपफुल रहना होता है उम्मीदों के साथ में। ऐसा ही कुछ हुआ है क्रिकेट जगत में, एक काफ़ी बड़ी घटना घटित हुई है, शायद इतनी साइलेंटली हुई है कि आप इसको समझ ही नहीं पाए। चलिए हम बताते हैं आखिर किसकी लाइफ में ऐसा हुआ जो 2023 से लेकर के और 2026 तक में इतना बड़ा चेंज आया, किस तरह से लाइफ ने पलटी मारी, ये आज हम जानेंगे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग कोंडा में।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

एक ऐसा नाम जिससे हर कोई वाकिफ था, हर किसी ने उसको अप्रिशिएट किया था। फिर एक ऐसा दौर आया जब भूलने लगे लोग कि वो है कौन। और आज कुछ इस तरह वापसी की है कि जिंदगी के पीछे ले जाने की वजह उस शख्स के अलावा सारी दुनिया को समझ में आ गई है। दरअसल दिसंबर 2023 का वो दौर जब भारत के लिए आखिरी T20 मैच खेला और टीम से बाहर कर दिया गया। अब आप सोच रहे हैं आखिर ऐसा कौन सा शख्स है। दरअसल हम बात कर रहे हैं श्रेया सैयर की। श्रेया सैयर जून 2026 हारे नहीं लौटे, सो टीम इंडिया की T20 टीम में कप्तान बनकर के लौटे। इतनी बड़ी वापसी है ना। कभी कभी होता ना, जिंदगी हमको पीछे ढकेलती है ताकि हम थोड़ा सा मजबूत और होकर के वापस लौट सके। सो श्रेयस अय्यर की कहानी भी कुछ ऐसा ही है। दिसंबर 2023 में भारत के लिए आखिरी T20 मैच खेलने के बाद इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इन्हें नज़रअंदाज किया गया और कई लोगों ने इनकी क्षमता पर सवाल भी उठाए, लेकिन श्रेयस ने हार नहीं मानी। इन्होंने आलोचनाओं का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि अपने खेल से दिया। सो हर मौके का पूरा फायदा उठाया और हर टूर्नामेंट में खुद को साबित करते रहे। दौर आया IPL 2026 में जब इनकी बल्लेबाजी, कप्तानी और लगातार अच्छे प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा। इन्होंने दिखा दिया कि एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान सिर्फ सफलताओं से नहीं होती है, बल्कि मुश्किल वक्त में किस तरह से वो हौसले के साथ होता है, इस बात से होती है। और आज जो खिलाड़ी कभी टीम से बाहर था, वो अब भारत की T20 टीम की कप्तानी करने जा रहा है। सो सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई है। और ये सिर्फ एक खिलाड़ी की वापसी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा पेशेंस, मेहनत और ख़ुद पर यकीन की जीत है। श्रेयस अय्यर की कहानी ये ज़रूर याद दिलाती है कि असली हार मैदान में नहीं बल्कि तब होती है जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है। और अगर मेहनत जारी रहे, इरादे भी पुख्ता रहे और ख़ुद पर हो रहे भरोसा, तो देर होती है लेकिन मिलता सब कुछ ज़रूर है। सो आज श्रेयस की जो वापसी है सिर्फ क्रिकेट की खबर नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक मैसेज है जो किसी न किसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। सो यकीन मानिए, ये आवाज़ अगर आप तक मेरी पहुँच रही है, हालात चाहे जैसे भी हों, ख़ुद पर यकीन मत खोइएगा, क्योंकि आपका वक्त आपकी यकीन से ज़रूर बदल जाता है। सो फिलहाल कैसी लगी श्रेयस अय्यर की ये कहानी 2023 से 2026 के बीच 3 साल में कहां बाहर कर दिए जाने से लेकर, नज़रअंदाज करते जाने तक से लेकर, और आज उसी टीम की बाकायदा ना फिर वापसी बल्कि कप्तान के रूप में वापसी, यानी सबसे टॉप खिलाड़ी। सो भाई ये इसको कैसे देखते हैं आप, क्योंकि अगर ये बात सही है, श्रेयस को भी अगर ये लग गया होता कि ये नहीं कर पाएंगे, ये उस एबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये वापसी नहीं हो सकती थी, कोई कुछ भी कर लेता। लेकिन जब करने वाले ने ही ठान लिया है, तो फिर किसी चीज़ का ना डर है ना प्रॉब्लम है।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: डियर स्टूडेंट्स, आज आपके स्कूल का पहला दिन है। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
8: टीचर, मैं पूछूं क्या?
7: बिल्कुल।
8: तो टीचर, ये बताइए कि यहाँ पे छुट्टियाँ कब शुरू हो रही हैं?
9: यो बॉयज, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, सुपर सॉन्ग, flop song.

डीके शिव कुमार, जो कि अभी आपने हाल ही में नाम सुना है। डीके शिव कुमार जी ने हाल ही में एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। सो भाई, ये कौन सा राज्य है? ये जो राज्य है, ऑप्शन ए कर्नाटक है या ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश है? मुझे लगता है बहुत दिन से आपने ऐसे सवालों का जवाब नहीं दिया, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ये नाम अभी फ़िलहाल आपने हाल फिलहाल में सुना होगा। तो क्यों ना चलिए इसी से जुड़ा इतना ही सवाल पूछ लिया जाए कि ये जो नाम है डीके शिव कुमार, इन्होंने अभी हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। सो ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। दो ही ऑप्शन है और मुझे लगता है इसका जवाब जो है आपको पता ही होगा, और आप इसको बता सकते हैं इजीली चैट बॉक्स पे आ करके। सो चलिए हम देखते हैं कि भाई अगर आपको पता है इसका जवाब तो आप क्या आकर के बताने वाले हैं अपने मॉर्निंग वाले शो में। जब तक के लिए हम एंजॉय करेंगे ये नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक सिर्फ और सिर्फ आपके मॉर्निंग शो।

डॉक्टर टी के शिव कुमार, हा हा हा हा। जी हाँ, ये सवाल करके हम आपको यहाँ से पूछा था मैंने कि भाई डॉक्टर डी के नहीं बल्कि डी के शिव कुमार जी, जिन्होंने भी हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, वो आखिर किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, जिस पर हमारी प्रीति जी ने जवाब दे दिया है। और जो जवाब आपका आया है वो आया है ऑप्शन ए कर्नाटक, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ जी हाँ, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड किया आपने प्रीति शुक्ल जी फ्रॉम बहराइच, क्या बात है। सो मुझे लगा था कि अगर आप ज़रा सा भी अपडेटेड होंगे न्यूज़ से तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि डी के शिव कुमार जी, जिनके अभी हाल ही में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, और ये कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए, ये अच्छी बात है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पे है। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जवाब जो है, जो हमारे स्टूडेंट सुनते हैं, स्पेशली प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ऐसे सवाल, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। और आप अपडेटेड हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जिनको नहीं भी पता था कि डी के शिव कुमार जी कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, तो अब सबको पता हो गया है कि भाई कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं डी के शिव कुमार जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच प्रीति जी कि आपको पता था और आपने इसको बताया कि कहाँ के आखिर मुख्यमंत्री बनाए गए हैं डी के शिव कुमार जी। फिलहाल वक्त है बात ही बात में आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ते बढ़ते चलते हैं अपने वॉल 2 के सॉन्ग की तरफ। और ये गाना फिल्माया गया है ऋतिक रोशन पर, आपको काफी पसंद आने वाला है।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: तो भाई फिलहाल जो है वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी अपडेट है और आप तक वो अपडेट पहुंच रही है। फिलहाल हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी बात जो हमारे कई सारे स्टूडेंट जिनको इंतज़ार रहता है यूजीसी नेट का। सो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम डेट आ गई है जो कि जून में ही है। एनटीए ने जारी कर दिया है पूरा शेड्यूल। सो क्या है यूजीसी नेट के बारे में, आइए आपको पूरी पूरी जानकारी देते हैं आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में।
1: यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो भाई 22 जून से शुरू होने वाली है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम और एनटीए ने जारी कर दिया है पूरा स्केड्यूल। सो क्या है, यूजीसी नेट जून 2026 एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए ये अपडेट है, या आपके हो सकता है किसी पहचान में या घर में आपके छोटे भाई बहन ने किसी ने भी किया हो तो उन तक ये आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी किया है। 80 सब्जेक्ट्स के लिए एनटीए की तरफ से यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 22 से 30 जून तक दो शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा। सो पहले शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक एग्ज़ाम होगा, इसके बाद दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक एग्ज़ाम लिया जाएगा। सो सब्जेक्ट वाइज पूरा शेड्यूल जो है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.nte.ac.in से चेक किया जा सकता है। क्या है, सो इस तरह से आप अगर जाते हैं वेबसाइट पर तो आपको पूरा का पूरा शेड्यूल नज़र आने वाला है और कहीं ना कहीं आप इसको देख करके ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई, आप किस तरह से इसमें जो भी आपने अप्लाई किया है यूजीसी नेट के लिए सब्जेक्ट से, उस तरह से ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट करें। और जैसा कि हमने इसका ऑफिशियल वेबसाइट बताया है www.nta.ac.in, इस पर आप जाएंगे तो एनटीए की तरफ से वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, पूरा शेड्यूल जो है वो डाल दिया गया है और आप अपने सब्जेक्ट वाइज यानी 80 में से जो भी सब्जेक्ट है उसका शेड्यूल पूरा देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको बता दें, चूँकि आज है हमारे नवदीप से लिख करके भेजने वाले आकाश जी का जन्मदिन, कल हमने पहले ही मना लिया था प्री में अच्छी बात है। सो आज उनका बर्थडे है और उसको लेकर के कई सारे कमेंट्स भी आ गए हैं हमारे पास और कहीं ना कहीं सब लोगों ने अपने अपने कंटेंट्स भी दिए हैं, तो चलिए आपके कंटेंट्स की तरफ भी चलते हैं और देखते हैं कि आज कंटेंट्स में क्या क्या है। सबसे पहले गुंजन जौहरी जी फ्रॉम सहारनपुर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं, उम्र का एक और सफ़ा पलट गया, आज पर दुआ है हर नया पन्ना एक नई दास्तां लिखे, जहां उदासी की कोई जगह ना हो और खुशियाँ हर रोज़ आपके घर का पता पूछे, आंगन में अपनी हंसी का पहरा हो और आपकी मुस्कान का रंग पहले से भी गहरा हो, जिंदगी के इस बेहद ख़ास और नए मोड़ पर आपको मुबारकबाद, आप हमेशा स्वस्थ रहें, महकते रहें और नई कहानी रचते रहें, आपकी हर सुबह उम्मीद की किरण लेकर आए और हर शाम संतोष का दीप जलाए, जो सपने बरसों से आपकी आंखों में बसे हैं वो हकीकत बन करके आपके कदमों को चूमने आए, रिश्तों में अपनापन बना रहे, दिल में सुकून और मन में उजाला रहे, कामयाबी आपके दरवाजे पर दस्तक देती रहे और ईश्वर कृपा हर पल आपके साथ चलती रहे, बीते वर्षों का अनुभव आपकी ताकत बने और आने वाले वर्षों की संभावनाएं आपका उत्साह बने, हर दिन एक नई सीख दे, हर पल एक नई खुशी दे, जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर बस इतनी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत किताब की तरह हो जिसका हर अध्याय प्रेम सम्मान सफलता और खुशियों से भरा हो, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मैसेज है गुंजन जौहरी जी की तरफ से आकाश जी को फ्रॉम नवदीप वेस्ट बंगाल, थैंक यू सो मच। एंड आकाश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, थैंक यू सो मच गुंजन जौहरी जी इस बात से अपडेट करने के लिए। एंड पुनीता सिंह जी ने लिखा है, आपके आँखों में वो फितूर ना होता, मेरे दिल में आपको चाहने का सुरूर ना होता, लिखवा देते खुद को खुदा से लकीरों में आपकी, अगर मेरा खुदा हमारी किस्मत लिखने से मजबूर ना होता। क्या बात है, बहुत शानदार, थैंक यू सो मच पुनीता सिंह जी। यामिनी चौहान जी ने लिखा है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं और दर्द मेरी आंखों तक पहुंच जाता है, वो खामोश भी रहे तो हर जख्म मुझसे कुछ कह जाता है, उसकी एक आह मेरे दिल में तूफान जगा जाती है, उसकी तकलीफ की परछाई मेरी रूह तक उतर जाती है, कभी लगता है उसके हिस्से का हर गम मैं खुद में ओढ़ लूं, वो सलामत रहे बस मैं अपनी सारी खुशियां छोड़ दूं, उसके दर्द की आग में मैं भी हर रोज़ जलती हूं,
वो एक बार टूटता है मगर मैं उम्र भर बिखरती हूँ। ओहो क्या बात है, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही शानदार, बेमिसाल, थैंक यू सो मच। वर्षा कुमारी पायल जी लिखती हैं कि मरी हुई मछलियाँ हरदम बहाव के संग बहती हैं, बकरियाँ मुर्गियाँ भीड़ में अपनी दुनिया कहती हैं, भेड़े सीखी हुई राहों से बाहर कदम नहीं धरती, आंखें खुली हो फिर भी अक्सर सच्चाई नहीं पढ़ती। हैरानी तो बस इंसानों की फितरत पर होती है, हर चेहरे के पीछे कोई और ही सूरत होती है, जानवर तो आखिर जानवर है, जैसे हैं वैसे रहते हैं, इंसान ही हैं जो हर मौके पर किरदार बदलते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह वाह, बहुत ही फैक्ट, बहुत ही शानदार, थैंक यू सो मच। वर्षा कुमारी पायल जी बहुत सुपर्ब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साक्षी यादव जी लिखती हैं, तुमसे मिलकर ये एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं एक पूरी दुनिया होती है, तभी तो तेरी मौजूदगी हर खुशी से ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं मिलते रूह की दुआओं से, कि कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं मिलते हैं रूह की दुआओं से, तभी मेरी हर सुबह तुझसे और रात तुझसे होती है। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही शानदार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा प्रीति शुक्ल जी बहराइच से लिखती हैं, आत्म चमक, सबकी सोचते सोचते खो बैठी अपनी चमक, भूल गई अपनी खुशियां सभी को प्रसन्न करने की कोशिश में, न कामयाबी हासिल हुई फिर भी अपने साथ, लेकिन प्राथमिकता दे रही हूँ वर्तमान में सिर्फ अपने आत्म चमक को निखारने की। यदि हम सर्वप्रथम स्वयं प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे तभी दूसरों को खुश और संतुष्ट रख पाऊंगी। अब है कोशिश यही पहली मेरी, आत्म चमक बाद में सर्वात्मा। क्या बात है, सो जो जैसा थॉट ऑफ द डे रहता है वैसा आप लिख देते हैं, और क्या शानदार लिखते हैं, थैंक यू सो मच। और आज का जो लास्ट कंटेंट है जो हम लेने जा रहे हैं वो हमारे बर्थडे बॉय आकाश जी का नवदीप वेस्ट बंगाल से है। एक मैसेज लिखते हैं अपनी तरफ से सभी को संबोधित करते हुए, जो भी मेरे मैसेजेस को अभी सुन रहे हैं मैं उन सभी से ईश्वर के लिए प्रार्थना करता हूँ, मे गॉड ब्लेस द होल यूनिवर्स, आई प्रे टू गॉड कि आज इस दुनिया में जितने भी सारे बच्चे पैदा हुए उन सभी को खुशहाल ज़िंदगी मिले, आज रात से कोई भी इंसान या जानवर भूखा ना सोए, फुटपाथ पर भीख मांगने वाले सभी इंसानों को कल की कोई फिक्र ना हो, धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने वाले बेवकूफ़ों को थोड़ी सद्बुद्धि मिले, प्रार्थना करता हूँ कि डर की कोई जगह ना हो, आज से इस दुनिया में आतंकवाद अपराध पूरी तरह ख़त्म हो जाए, वही रंग जात धर्म मज़हब को लोग लेकर नफरत फैलाने वालों को सही सीख मिले, वो बच्ची जो अपनी ही फैमिली के किसी राक्षस के हाथों शोषण का शिकार हुई उस मासूम सी बच्ची को प्यार से हक करने वाला कोई आज मिल जाए, ईश्वर से प्रार्थना है कि बॉर्डर पर आज किसी को भी शहीद ना होना पड़े, सिर्फ पेट पालने की वजह से जो लड़की आज कॉल गर्ल या प्रोस्टिट्यूट बनी है, प्रभु रक्षा करना उसकी, उसे कोई हैवान न मिल जाए, आज उसके पास कोई ऐसा आए जो उसे इस दलदल से बाहर निकाल कर एक इज्जत भरी ज़िंदगी दे, कैंसर से फाइट करने वाले सभी इंसानों को प्यार से वर्चुअल हक करता हूँ, आप एक फाइटर हो एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनका भी आज डाइवोर्स हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब रोने की ज़रूरत नहीं है, आज से आप आज़ाद हो, दुनिया के बारे में मत सोचो, खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि हज़ारों लोग कल आपको इंस्पिरेशन बना रहे, मैं आपके इस फैसले के साथ हूँ, आप सब खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, गॉड ब्लेस यू। भाई इतनी सारी दुआएं इतने तरह के लोगों के लिए इतने दिल से दी है आकाश जी, आप बहुत ही खुश नसीब हैं कि आपको इतने चाहने वाले मिले हैं, और जो नज़रिया जो बेबाक अंदाज आपका है, जिस तरह आपकी राय है, हम तो बस यही कहते हैं कि इस ज़माने में आप एक विरोध हैं, और ये विरोध होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है, कि जब कोई भी किसी भी तरह से सोच करके किसी की भी सोच फॉलो कर लेता है, वहाँ आपकी अपनी सोच, अपने इरादे, आपकी अपनी शख्सियत है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड वापस से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। ऑफ कोर्स आज आपका जन्मदिन है, आपका दिन अच्छा हो, लाइफ में आपको ढेर सारा सुकून मिले, ऐसी दुआ हम भी करते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस बात को सुन रहे होंगे, और
शायद थोड़ी सी स्माइल भी आपके चेहरे पे आ गई होगी, और अगर आ गई है तो ये स्माइल हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसी स्माइल के साथ हम चाहेंगे कि आप पूरी लाइफ आगे बढ़ते रहें। सो फिलहाल मेरे चलने का भी वक्त आ गया है, और जो लोगों ने भेजे थे अपने कॉन्टेंट्स बहुत लाजवाब थे, बहुत शानदार थे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। फिलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, और कल के बाद वापस से परसों आपसे मुलाकात करने वाले हैं आपके मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। फिलहाल सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और जाने से पहले ये सुपर्ब सॉन्ग, बहुत ज़्यादा पसंदीदा सॉन्ग्स आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा जाने से पहले, क्योंकि अब सीधे मुलाकात होगी परसों।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
11: श्वेता, समता, कहाँ हो सब लोग?
12: अरे स्टूडियो में इतनी

0: शांति क्यों है और सब कितना मुंह लटकाए हुए हो।
1: किरण दी, एक ड्रेस खरीदने का मन कर रहा है पर इतनी महंगाई है कि खरीद ही नहीं पा रहे, इसीलिए मन बहुत दुखी हो गया है। महंगाई कितनी बढ़ गई है।
0: ये तो है समता, हर सामान महंगा होता जा रहा है। डेली की सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या करें।
2: अरे सब लोग महंगाई पर बाद में रोना, पहले मेरी फ्रेंड सिमी से तो मिल लो। ये हम लोगों के गांव की गूंज की टीम से जुड़ना चाहती है। और हाँ किरण दी, आपके लोक गीतों की ना ये बहुत बड़ी फैन है।
3: हेलो, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं किरण दीदी, समता दीदी और हरिओम से मिल रही हूँ। जिनकी आवाज सुनते थे वो लोग हमारे सामने खड़े हैं। क्या आप लोग मुझे भी गांव की गूंज की टीम का हिस्सा बनाएंगे? हमारे यहाँ दादी बाबा बहुत खुश होंगे आप लोगों से मिलकर।
4: एक शर्त पर तुम हम लोग को अपने गांव ले चलोगी?
1: कहीं चलने की बात हो रही है, फिर तो बड़ा मजा आने वाला है। एसी में बैठ बैठ कर हाथ पैर अकड़ गए हैं, गर्मी बहुत है फिर भी घूमने का मन कर रहा है।
2: हम ननकू भैया से कहते हैं गाड़ी निकाले, तब तक सिमी रिक्वेस्ट कर रही है कि किरण दीदी एक लोकगीत सुना दें।

0: अब ये बताओ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं?
1: हम लोग झंझी ब्लॉक में चंदवतपुर गांव जा रहे हैं। वहीं हमारे दादी बाबा भी रहते हैं, उनसे मिलेंगे और इस समय गेहूं की कटाई हो रही है तो हम वहां भी चलेंगे।
2: मई आ गया और हम सब बच्चों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। याद है बचपन में हम सब बच्चों को लेकर मम्मी पापा नाना नानी या दादा दादी के घर ले जाते थे?
3: चाचा के, बुआ के, मामा के, मौसी के, सभी के बच्चे होते थे घर में। 30-35 लोग तो होते ही थे घर में कम से कम।
0: समता, हम सोच रहे हैं कि कभी दादी बाबा या नाने नाना ने शिकायत नहीं की कि कितनी महंगाई है और एक महीने सबको कैसे रखेंगे। हमारी ननद भी आ रही हैं अपने पूरे परिवार के साथ और हम सोच रहे हैं कि कितनी महंगाई में एक महीने कैसे रखेंगे, पर हम भूल गए कि यह तो उनका घर है, उनका पूरा अधिकार है।
1: आपको पता है क्या, पहले हमारी मम्मी भी बहुत परेशान होती थी, फिर दादी ने छत पर सब्जी बोना सिखाया, अब लगभग हर सब्जी घर के गार्डन से ही मिल जाती है।
4: आप बादाम में सोडा मिलाकर पिलाइए या बेल के शरबत का आइसक्रीम बना दीजिए, देखिएगा बच्चे बाजार का खाना भूल जाएंगे और आपको मेहमान का आना खटकेगा भी नहीं।
2: आपकी ननन तो कितना अच्छा खाना बनाती है, आप नई नई रेसिपी बताइएगा और वह बनाएंगी। आपकी ननन तो कितनी स्वीट है, वह ननन पर जो गाना गाती हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं है।
5: अरे कैसे करूं सैया गुजारा, ननद बटवारा कराई गई रे। अरे कैसे

0: आप लोगों को पता है, जब हम लोग गर्मी की छुट्टी में गांव जाते थे तो ढेर सारे बच्चे हो जाते थे। उनको बिजी रखने के लिए बाबा हम लोग से बागवानी करवाते थे, वेजिटेबल गार्डन में तरह तरह की सब्जी लगवाते थे। आप भी ऐसा ही करिएगा किरण दीदी, बच्चे मोबाइल से हटकर कुछ सीखेंगे।
1: लो, चंदवतपुर आ गया। अगर बहुत गर्मी नहीं लग रही हो तो चलो वहाँ गेहूँ की बुआई हो रही है, उसे देखते हैं।
2: सब लोग मुंह पर चुन्नी बांध लो, क्योंकि भूसा चला जाएगा नाक में। वैसे गाड़ी में तो मास्क भी रखे हैं।
3: देखो जितने आदमी हैं, सब ने मुंह में गमछा बांधा है और औरतों ने पल्लू, पर बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। हरिओम, सबको मास्क दे दो, भूसे की धूल से सांस की बड़ी समस्या होती है।
4: देखो बच्चों ने कैसे पुरानी साड़ी से कैंप बनाया है, और ढोलक की आवाज ये कहाँ से आ रही है, तुम लोगों को भी सुनाई दे रही है क्या?
0: धनु आजी बहुत अच्छी ढोलक बजाती हैं। जब घर के लोग खेत में काम करने जाते हैं तब आजी ढोलक बजाती हैं, और छोटे बच्चों को अपने साथ रखती हैं और गाती हैं। बच्चे उन्हीं के साथ खेलते रहते हैं और बड़े लोग अपना सारा काम निपटा लेते हैं।
1: गाँव में देखो कितना अपनापन है, आजी सभी के बच्चों को कितना प्यार से रख रही हैं। पानी, दूध, भूजा, सत्तू सब रखा हुआ है। वहीं शहर में हम लोग को क्रैश में बच्चों को छोड़ना पड़ता है।
2: किरण दीदी, आजी आपके बारे में पूछ रही थी और एक लोक गीत सुनाने को बोल रही थी, और देखिए सभी अपनी गेहूं की कटाई और दवाई छोड़कर आपके पास आके बैठे हैं।

0: यह लीजिए, मट्ठा पीजिए और खरबूजा खाइए, बहुत मीठे हैं। सब बिल्कुल शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। बबलू पेड़ से अमिया तोड़कर लाया है और बाली हरी हरी मिर्च नमक की चटनी कौन कौन खाएगा?
1: हरिओम, आज गांव की गूंज की टीम ने खेत खलिहान में आए अपने एक्सपर्ट से गेहूं के भंडारण और कटाई के बाद खेत को उपजाऊ कैसे बनाएं, जो बात सीखी है ना, अपने किसान भाइयों को बताएं।
2: आप लोग बताएं कि आपने गेहूं खुद काटा है या मशीन से कटाई की है। देखकर तो लगता है मशीन से कटाया गया है। और हाँ, अब खेत का क्या करेंगे?
3: हमारे गांव में तो खेतों को जला देते हैं और इससे खूब आग भी लगती है। खेतों को जलाकर चले जाते हैं और ध्यान भी नहीं देते हैं। अगर बगल में किसी के खेत में फसल लगी हो तो आग भी लग जाती है।
4: यही तो गलती करते हैं आप सब। जब गेहूं और भूसा घर चला जाए, खेत खाली हो जाए, तब आप खेत में पानी भर दे और उसकी एक बार जुताई कर दे, फिर उसमें ढांचा बो दे, जिससे 40 से 45 दिन में वो तैयार हो जाएगा। और फिर एक बार पानी भर के खेत की जुताई कर दे, जिससे अगली फसल के लिए खेत उपजाऊ हो जाएगा।
0: आप लोगों ने ध्यान से सब बातें सुनी? अगर कोई बात न समझ में आए तो फोन करके सिमी बिटिया से पूछ लीजिएगा। 89.6 FM पर जो कृषि एक्सपर्ट आते हैं उनसे बात करवा देंगे और उनको भेज भी देंगे।
3: अलगू भैया, दयाराम काका, आप सबने सुना ना कि कैसे अगली फसल के लिए खेत को उपजाऊ बनाएं? किरण दीदी, हमने दादी को फोन कर दिया था, देखिए वो पूरे गांव की औरतों की टोली को लेकर आ रही हैं। रज्जो काकी के घर बहू आई है, वो अपने बहू को लेकर आई हैं। किरण दीदी, सब आपका गाना सुनने आई हैं।

0: लो यह गाना तो नई बहू के लिए है और काकी के हाथ में छोटा सा ललना दिख रहा है, तो एक गाना तो प्यारे से ललना के लिए होना ही चाहिए।
1: ओ हमरे भाई है ललनवा कैसे सपरी।

0: राघव भैया पूछ रहे हैं कि गेहूं का भंडारण कैसे करें, जब वह रखते हैं तो उस पे कीट लग जाते हैं।
1: भैया आप लोग जो मेहनत से गेहूं पैदा करते हो वही हम लोग खाते हैं, तो उसको तो बहुत संभाल कर रखना चाहिए। सबसे पहली बात, गेहूं की जब दवाई करते हैं तो वह गर्म होता है, इसको तुरंत बोरे में बांध कर नहीं रखना चाहिए, ठंडा करिए ताकि उसमें बहुत नमी से भी न रह जाए।
2: एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक दो दिन खेत में ही पड़ा रहने दें और सूखने दें, पर अगर आपको लगता है कि खेत में नुकसान होगा तो घर पर लाकर कहीं फैला दें और ठंडा होने दें जब तक कि गेहूं में 10% की नमी ना रह जाए।
3: अब आप लोग पूछेंगे यह कैसे पता चलेगा, तो गेहूं को दांत से दबाइए, अगर कट कट की आवाज आती है मतलब आपका गेहूं तैयार है डेहरी में रखने के लिए।
0: जिस डेहरी में रखना है उसे धूप में सुखा लें, जिससे जो डेहरी के मुंह पर या ढक्कन में कीड़े के अंडे रह जाते हैं वो सब मर जाएं। अब गेहूं को भंडारण के लिए रखें, पर अभी उसमें दवाई डालने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर दवाई डालना है ना तो सल्फाज बरसात शुरू होने के पहले डाला जाता है, और डालना कैसे है, इसके नीचे ढक्कन से इसमें डालना होता है।
1: जब सल्फास डालेंगे तब एक हफ्ता गेहूं का प्रयोग ना करें, उसके ढक्कन को भी ना खोलें, क्योंकि सल्फास गैस बनती है, और ना ही उस कमरे में सोएं। 7 दिन के बाद जब आप चाहें बिना धोए गेहूं की पिसाई करवा सकते हैं, क्योंकि अब दवा का असर नहीं रहता है।
2: एक बात का और ध्यान रखें, या नहीं कि दवा डालकर चैन की नींद से एकदम सो जाएं। समय समय पर ढक्कन खोलकर या जांच करते रहें कि कीड़े तो कहीं नहीं लग रहे हैं।
0: अपने गेहूं का भंडारण अच्छे से करें ताकि साल भर आपका गेहूं सुरक्षित रहे। कुछ भी पूछना होगा तो हमें फोन कर लीजिएगा, गुरुवार को 5 बजे खेत खलियान आता है ज्ञानस्थली रेडियो पर, उसे जरूर सुना कीजिए।
3: चलो सिम्मी, दादी घर चलने को कह रही हैं, बोल रही हैं कमल ककड़ी की सब्जी बनाई है, दाल की कचौड़ी और आम की चटनी, आहा, और साथ में गलका, अरे मुंह में पानी आ रहा है।
0: सभी को नमस्ते, राम राम, जल्दी फिर आएंगे, और हाँ आप लोग भी हमारे रेडियो स्टेशन आइएगा।
1: कमल ककड़ी की सब्जी में तो बहुत ज्यादा स्वाद होता है, इसको हमने पहली बार खाया है। इसे बुआ क्या बोल रही थी?
2: समता मैम, मैं महेश भैया के साथ गांव घूमने जा रहा हूँ, क्योंकि किरण दीदी का गाना सुने बिना तो कोई जाने ही नहीं देगा,

0: कमल ककड़ी की सब्जी में तो बहुत स्वाद था, उसको हमने पहली बार खाया है। इसे बुआ क्या बोल रही थी?
1: लगता है कहीं पास में पानी बरसा है। सिमी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम सोच रहे हैं अगर सभी लोग गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे तो खेती तो बंद ही हो जाएगी, फिर हमें गेहूँ, बिना पॉलिश की दाल, ये सब कहाँ से मिलेगा?
2: किरण दीदी, गांव की गूंज की टीम और मेहनत करेगी, लोगों को गांव से जोड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, औरतों को लघु उद्योग में मदद करेंगे हम सब मिलकर।
3: आप लोग जब बातें कर रहे थे, हम कमल ककड़ी कमल गट्टे के फायदे के बारे में पढ़ रहे थे। अगर हम आज गांव नहीं आते तो पता ही नहीं चलता।
1: चलते चलते एक यह लोकगीत चंदवतपुर गांव के लोगों के लिए।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: हाँ जी, हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आए हो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 12:11 बस स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली। आवाज है आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजी उन्नति की, और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है मेरी को होस्ट, जिनका नाम है सृष्टि, जिससे आपकी मुलाकात कल भी हुई थी। सृष्टि,
1: हेलो दोस्तों।
0: हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप?
1: मैं एकदम अच्छी, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। वैसे सृष्टि, आपको पता है कि आज हम क्या लेकर आते हैं? कल मैंने अनाउंस किया था,
1: आज हम एक स्टोरी लेके आए हैं।
0: स्टोरी? वेल, स्टोरी का कुछ आइडिया है क्या होने वाला स्टोरी में?
1: वो एक हॉरर स्टोरी है।
0: पक्का?
1: बट अगर देखा जाए तो वो हॉरर से ज्यादा एक प्यार पे स्टोरी है, मतलब वो हॉरर लगती नहीं है।
0: ओह माय गॉड, यानी कि एक लव स्टोरी लेकिन हॉरर स्टोरी, या फिर हॉरर स्टोरी एक लव स्टोरी,
1: मिक्स अप,
0: हॉन्टेड लव स्टोरी। अब ठीक है, इट साउंड्स बेटर, राइट?
1: यस मैम।
0: ओके, तो भाई आज हम आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ से नहीं, थाईलैंड के एक कोने से निकाल कर लेकर आए हैं 1800 की सदी के आसपास से एक ऐसी स्टोरी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि जब किसी से बेइंतहा मोहब्बत हो तो इंसान दुनिया छोड़ने के बाद भी दुनिया नहीं छोड़ता। वैसे तो ये कहानी हमेशा हमें सुनने में लगती है कि किसी बॉलीवुड की, किसी फिक्शनल स्टोरी का, या फिर किसी रोमांटिक फिल्म के अंदर चलने वाली कहानी है, लेकिन ये कहानी रियल है। हालांकि इस पर फिल्में कई बनी हैं, सीरीज कई बनी हैं, बुक्स बहुत सारे लिखे गए हैं, और उस घर जिस घर में ये कहानी स्टार्ट हुई थी उसको आज नाम दिया गया है द टेम्पल ऑफ लव एंड डेथ। क्या खूबसूरत नाम है, मुस्कुरा लीजिए
1: मैम। स्टोरी है बहुत अच्छी क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च की थी।
0: रिसर्च की है फिलहाल दोस्तों, तो ऐसी लव स्टोरी, इसे हॉन्टेड लव स्टोरी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इस गाने के उस पार। तब तक के लिए आप हॉन्टेड फिल्म का ये गाना सुन लीजिए, तुम हो मेरा प्यार। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: और उस खूबसूरत से गाने के बाद एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइफ में। मैं हूं आपकी आर्चुनती और आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन। और इस धड़कन पर मैं एक कहानियां लेकर आती हूं। धक धक बोला नहीं कोई। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट सृष्टि, जो कहीं तो खोई हैं और अपने कैमरे को ऑन करके बैठी हैं।
1: नहीं मैम,
0: अब मुझे दिखता है, ये दो आंखों को मैंने देखने के लिए ही लगाया है।
1: आप ओपनिंग करिए।
0: वेल, हम ओपनिंग कर चुके हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको लेके चलते हैं हम उस दिशा में, उस जगह पर, उस देश में जहां आपको मिलेगा क्या मिलेगा, वो इंसान जिसकी कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलते हैं थाईलैंड में। थाईलैंड 1850। आप ही सोचते होंगे ना, ये इतनी पुरानी कहानी लाते कहाँ से। हम बता दें, हम आपको लेकर आते हैं इतनी पुरानी कहानियाँ हिस्ट्री से, इतिहास के पन्नों में। कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनको सुलझाने में बड़ा मज़ा आता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको ना सुलझाने में ही मज़ा आता है, क्योंकि कुछ कहानियाँ बनी होती हैं कभी ना सुलझने के लिए, और कुछ कहानियाँ होती हैं बताने के लिए, सुनाने के लिए। और उनमें से एक कहानी ये भी है, थाईलैंड 1850। मॉक नाम का एक इंसान जो बड़ा खुश था, नहर के अंदर था और बोट पर चल रहा था। बहुत तेज़ तेज़ वो बोट के चाकू मार रहा था, सोच रहा था घर जाऊंगा, अपनी बीवी से मिलूंगा। मेरी बीवी जाने से पहले वो प्रेग्नेंट थी, एक साल हो चुका है, तो मतलब मेरा छोटा सा बच्चा भी होगा और हम दोनों कितने खुश होंगे, कितनी एक्साइटेड होगी, मैं कितना एक्साइटेड रहूँगा। वो चीज़ें याद कर रहा है, यार वॉर पे जाने से पहले, क्योंकि ज़बरदस्ती वॉर पे भेजा गया था, मैं जाने के मूड में तो नहीं था, बट क्या कर सकते हैं, सरकार की तरफ से ऑर्डर था, जाना पड़ा।
1: मैम, ये स्टोरी सुनकर लग रहा है कि ये इमोशनल और पावरफुल होने वाली है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए तो इसका नाम द लव एंड द डेथ है।
1: इंटरेस्टिंग है काफ़ी।
0: बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अपनी बीवी को, अपने बच्चे को देखने के लिए, और वो न जाने कितने ही दिनों के, कितने ही टाइम के सारी सीन्स को अपने दिमाग में रिपीट कर रहा था। ये हुआ था, वो हुआ था, हमारी शादी ऐसे हुई थी, हमने ऐसे बात की थी, ये होने वाला है, वो होगा। जैसे हम एक्साइटेड होते हैं ना किसी से मिलने से पहले, हम हर एक चीज़ प्लान करते हैं, यार जब मैं सामने से मिलूंगा अपने दोस्त से तो क्या होगा, कैसे होगा, हमने कब लास्ट बात की थी। और क्योंकि 1850 में तो टेलीफोन भी नहीं थे कि हमने वीडियो कॉल कर ली हो, चिट चैट कर ली हो, ना भाई ना। वॉर में एक खत लिखने में भी बहुत वक्त लगता था, बहुत मुश्किल काम था, और जब युद्ध चल रहा हो तो फिर कहाँ ही मौका मिलता है किसी को। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और थोड़ा सा नर्वस था कि यार उसको प्रेगनेंसी में छोड़ के आया था, वो मुझसे नाराज़ होगी क्या। शिद्दत देख रहे हैं आप। फिलहाल वो जैसे जैसे इस थॉट को अपने दिमाग में घुमा ही रहा था, उतने ही तेज़ उसके हाथ भी चल रहे थे कि बस कैसे भी घर पहुंच जाएं, ये जो रास्ता है, ये जो इतना टाइम ले रहा है, बस ये ख़त्म हो जाए, कैसे भी ख़त्म हो जाए। और फाइनली वो अपने घर के पास पहुंचने वाला था। घर के पास जनाब पहुंच भी नहीं पाए थे, थोड़ी दूर ही थे, और वहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया था अपनी मोहतरमा का नाम। और उनको लगा था कि उनकी मोहतरमा सामने खड़ी होंगी अपने बच्चे के साथ, बट हुआ नहीं ऐसा। मोहतरमा बाहर नहीं आई। उसे लगा कोई बात नहीं, होता है, घर जाके देखता हूँ, इतने दिनों से आया नहीं हूँ, क्या पता इसी लेना निकल रही हो। घर पे गया, गेट खटखटाया, दो मिनट तक कोई बाहर नहीं आया। बहुत ज़ोर से गेट खटखटाने पर इस बार गेट खोला गया, और इस बार उसकी मोहतरमा बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसा उसने इमेजिन किया था, हाथ में छोटा सा बच्चा और वो, लेकिन चेहरे पर वो एक्साइटमेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी? फिलहाल उसने इस चीज़ पर ध्यान दिया ही नहीं, उसने सीधे अपने बच्चे को पकड़ा, गले लगाया, अपनी वाइफ को गले लगाया और अपने बच्चे को चूमने लग गया, क्योंकि जब वो गया था तब उसका बच्चा बस दुनिया में आने वाला था, कुछ महीने की प्रेगनेंसी थी, और उसको नहीं पता था कि उसकी वाइफ ने ये सब कैसे हैंडल किया होगा। वो बहुत खुश, इतना खुश कि उसके पैर अब उस वक्त ज़मीन पर नहीं थे। वो जो फीलिंग होती ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, बस यही हाल था उस वक्त उसका। सब लोग अंदर गए, खाना पीना खाया, उसने अपनी वॉर की कहानियाँ सुनाई कि देखो मैंने क्या किया है, मैं कितने कितने कठिन मिशन करके आया हूँ, मैंने सब कुछ अच्छा किया है, तुम्हारा हस्बैंड कितना ब्रेव है, उसने युद्ध लड़ा, उसने जीता, न जाने कितनी कहानियाँ उसने सुना डाली। और रात में सब आराम से सो चुके थे। अब भाई क्योंकि एक साल बाद की मुलाकात थी तो कोई घर से बाहर निकल ही नहीं रहा था, ना उनकी वाइफ ना वो सोच रहा था बस कैसे ये पूरा एक साल का वक्त जो मैंने गुजारा है इनके बिना, कैसे इनको पूरा कर लूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है कि घर से बाहर निकल के पूरा करें, और वो चीज़ ये थी कि घर का राशन पानी भी ख़त्म हो रहा था। एक सुबह जब उनकी आँख खुली, सुबह सुबह था, दोपहर हुई नहीं थी, मार्केट खुलने का टाइम हो रहा था, उसकी वाइफ बगल में सो रही थी, उसके बगल में उसका बच्चा भी सो रहा था। उसने मुड़कर देखा, खुशी के मारे खिल उठा कि फाइनली वो सपना जो मैं देखता था वॉर में वो पूरा हो रहा है। उसने इस चीज़ को नोटिस किया, स्माइल किया और सोचा चलो बाहर जाके थोड़ा सा राशन लेके आते हैं, सब्ज़ी लेके आते हैं, लेकिन जाने से पहले अपनी वाइफ को बताना ज़रूरी है कि मैं घर से जा रहा हूँ, नहीं तो ये फिर से पागल हो जाएगी, सोचेगी फिर मुझे छोड़ के चला गया ये कहीं। और इस बात पर उसने बड़े ही प्यार से उसके बालों पर अपना हाथ रखा और सहलाते हुए बोला कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ सामान लेने। इतना सुनते ही उसकी मोहतरमा की आँख बहुत तेज़ खुली और उसने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचा और अपने सीने से लगा कर कहा कि नहीं बाहर मत जाना। उसने कहा क्यों भाई, बाहर तो जाना पड़ेगा ना, घर में सब्ज़ी ख़त्म है, बच्चा उठ जाएगा, उसको खाना भी तो खिलाना है, तुम कैसे रहोगी। बोली नहीं बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, तुम इतने दिनों बाद आए हो, नहीं जाना है। अब वो पूछ रहा था कि क्यों नहीं जाना है, जवाब तो उनके पास था नहीं, तो बस यही कहा कि तुम इतने दिनों बाद आए हो, मत जाओ ना। उसने कहा नहीं कुछ नहीं होता, तुम आराम से सो, मैं अभी आता हूँ। फिलहाल ज़िद करने के बाद वो अपने घर से बाहर निकल भी चुका था। मार्केट पहुँचा फ्रूट्स लेने, जैसे ही वो एक रेड़ी वाले के पास गया, रेड़ी वाले ने उससे पूछा तुम्हारे घर में तुम्हारी वाइफ है। उसको लगा है ये कैसा सवाल है, मेरी वाइफ मेरे घर में नहीं होगी तो तुम्हारे घर में होगी क्या। यही बात उसने भी कही दी कि हाँ बिल्कुल ऑफकोर्स मेरे घर में है। उसका फिर एक सवाल था तो तुम कैसे हो। फिर मैं कैसा हूँ क्या मतलब है। उसको लगा कि शायद ये मेरे से वॉर के बारे में पूछ रहा है क्योंकि वॉर होती ख़तरनाक है। तो उसने बताया कि हाँ यार बहुत मुश्किल था, मैंने इतने इतने काम किए, मुझे ज़ख्म भी आए, लेकिन मैं ठीक हूँ, अब मैं घर आ चुका हूँ, अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ। उसने कहा खुश हो अपनी वाइफ के साथ सच में। ये क्वेश्चन उसे बड़ा अटपटा लगा कि ये कैसा बकवास सवाल है, ज़िंदगी में ऐसा सवाल नहीं सुना, लोग अपनी बीवी के साथ खुश नहीं होंगे तो किसके साथ खुश होंगे, पड़ोसी के साथ नहीं ना, उसी के साथ खुश होते हैं। फिर भी उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से सामान लेके घर आ गया। सवाल तो था उसके दिमाग में कि ये क्या बकवास कर रहा था ये। उसने घर आके अपनी वाइफ को बताया कि यार मार्केट में कुछ ऐसा हुआ था, मुझसे फेरी वाला बड़ा अजीब सवाल कर रहा था। उसकी वाइफ ने कहा मुझे इसी बात का तो डर था, मैं इसीलिए तुम्हें जाने नहीं देना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है, मार्केट में लोग मेरे बारे में कितनी अफवाहें उड़ा रहे हैं। उसने कहा हटाओ यार, दुनिया की तो आदत है बात करना, मुझे पता है तुम मेरे बच्चे को संभाल रही हो, तुमने अकेले सब कुछ किया है, कोई बात नहीं होता है। आराम से वक्त गुजार ही रहे थे कि कुछ दिन बाद घर में खाना बनाने के लिए लकड़ियां ख़त्म हो चुकी थी। अब क्योंकि आग भी जलानी थी, खाना पकाना था, तो लकड़ियां लानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और उसने फिर से कहा कि मैं जंगल में जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। इस बार उसकी मोहतरमा फिर गुस्सा कि अरे नहीं यार तुम नहीं जा सकते, तुम क्यों जा रहे हो, तुम नहीं जाओगे। और इस बार वो थोड़ा चिढ़कर बोली। मॉक सोचने लगा कि जब मैं वॉर पे गया था उससे पहले तो ये काफ़ी कूल इंसान थी, ये हर चीज़ को अकेले करने की हिम्मत रखती थी, डिपेंडेंट थी, ये कभी मुझ पर डिपेंड नहीं होती थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी, इंडिपेंडेंट थी, अब इसको क्या हो गया। फिर लगा कि शायद ये जो प्रेगनेंसी का वक्त होता है इसमें अकेले बच्चे को संभालना, डिलीवरी, ये सारी चीज़ें बहुत पेनफुल होती हैं, और एक वक्त आता है जहाँ पर माँ को ज़रूरत पड़ती है किसी और की। अब क्योंकि मैं तो था नहीं तो इसके साथ तो कोई भी नहीं था, हो सकता है इसकी वजह से, उस थकान, उस पूरे प्रोसेस की वजह से ये ऐसी हो गई हो। उसने फिर भी हाथ हटाकर कहा कि नहीं लकड़ियाँ तो लानी पड़ेंगी, और वो जंगल में लकड़ियाँ काटने भी चला गया। पेड़ पे पहुँच के लकड़ियाँ काट ही रहा था कि उसको लगा कोई पीछे से आ रहा है। उसको लगा कि वही हो सकती हैं क्योंकि जंगल में इस वक्त कौन ही होगा, वही पीछा करते करते आ रही होंगी अपनी केयर दिखाने के लिए, मेरे लिए कुछ ला रही होगी। बट इस बार उसकी वाइफ नहीं थी, इस बार वहाँ पर उस इकलौते गांव के इकलौते मंदिर से पुजारी साहब थे जिनको गांव का लीडर भी कहा जाता था, और वो पुजारी उसी की तरफ आ रहा था। उसने सोचा इसको क्या काम है मुझसे, अब पुजारी यहाँ तक आ रहा है, इसको लीडर मानते हैं, सब इसकी बात सुनते हैं, कि इसका यहाँ तक चल के आना ये काफ़ी बड़ी बात है। और इसीलिए वो जनाब नीचे आए, उन्होंने नमस्ते किया और पुजारी जी ने कहा कि देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो उसको लगा कि हाँ बताइए क्या बात करनी है। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी बीवी को लेकर कुछ बात करनी है। उसने कहा क्या बात कर सकते हैं आप। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवी से पूरा गांव डरा हुआ है अब, क्योंकि उसकी मोहतरमा ने पहले ही कहा था कि गांव में उसके खिलाफ कुछ तो अफवाहें चल रही हैं। उसने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। जब उसने कहा, उस पुजारी ने कहा कि तुम्हारी बीवी लोगों के घरों में 3-4 बजे जाकर उन्हें डरा रही है, तो उसने पुजारी जी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपके जो दिल में आएगा आप बोलेंगे। मुझे ना कुछ सच जानना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ कहना है। बोले नहीं, अगर तुम जानोगे तो उसके साथ रहोगे नहीं। बोले मुझे जानना ही नहीं है, होगा जो भी होगा। मेरी बीवी मेरे लिए बहुत वफादार है, मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी बहुत केयर करती है और हम बहुत खुश हैं। मुझे नहीं जानना आपका सच क्या है, आपका झूठ क्या है, क्या कहानी है, क्यों है FY, आप बस यहाँ से जाओ। पुजारी ने कुछ तो बताने की कोशिश की थी बट उसने सुनी ही नहीं। फिलहाल पुजारी जी ने अपना मुंह नीचे किया और मुंह लटकाकर वापस चले आए। जब कोई सच सुनने कोई तैयार नहीं है तो उसको कितना ही सच बता सकते हैं। लेकिन अब उसके दिमाग में एक बात तो घूम रही थी, क्यों हर कोई उसकी वाइफ को टारगेट कर रहा है। जवाब देने के लिए उसके पास सिर्फ एक वो रेड़ी वाला था जिसके यहाँ से फल लिए थे। उसने सोचा कि कल सुबह जब सब सो रहे होंगे तब चुपके से निकल के पूछने जाऊँगा। और यही हुआ भी। रात में सब खाना खा के सो चुके थे और उन जनाब की आँख खुलती है सुबह एकदम मॉर्निंग में। मार्केट भी ठीक से लगी नहीं थी और वो जनाब मार्केट पहुँच चुके थे ये जानने के लिए कि वो कौन सी बातें हैं जो रेड़ी वाला उसको बताने की कोशिश कर रहा था, क्यों ऐसे ऊटपटांग सवाल कर रहा है। वो वहाँ पहुँचे, इंतज़ार करने लगे, लेकिन वो रेड़ी वाला आया ही नहीं। अब क्योंकि छोटा सा गांव था तो हर कोई किसी न किसी का घर जानता ही था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना घर जाकर पूछ लिया जाए। और वो उस बिल्डिंग में भी गए जहाँ पर वो रेड़ी वाला रहता था, फर्स्ट फ्लोर के गेट पर जैसे ही जाके खटखट की, नॉक नॉक किया, किसी ने गेट खोला ही नहीं क्योंकि गेट पहले से ही खुला था हल्का सा। उसने लगा शायद अंदर से कोई निकलेगा, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट, और इस बार जब तेज़ी से उसको खटखटाया गया तो गेट अपने आप खुल गया पूरा। और जो सामने का नज़ारा था उसे देखकर मौत की जान निकल चुकी थी। कैन यू इमेजिन आगे का नज़ारा हो क्या सकता है। जब तक आप सोचते हैं तब तक हम लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के उस पर आते हैं, बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए ज्ञान असली लाइफ। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले कार्यक्रम ज्ञान असली लाइफ में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यह गोला शहर की धड़कन। और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट सृष्टि, जो फिलहाल कहानी में खो चुकी है।
1: यस मैम, कहानी
0: है। आई गेस क्या हुआ होगा आगे, क्यों उस इंसान का दिल बैठ चुका था?
1: मैम आपने सस्पेंस क्रिएट कर दिया है।
0: अब ये तो मेरा पसंदीदा काम है।
1: पर हम लिसनर्स वेट कर रहे हैं सुनने के लिए।
0: चलो भाई, तो मैं शुरुआत करती हूँ कि आगे क्या हुआ था। जनाब ने जैसे ही गेट खोला, जनाब का नाम मॉक था, और उन्होंने गेट खोलते ही देखा कि सामने उस रेड़ी वाले की लाश पड़ी थी। किसी ने तो उसको बहुत बेदर्द तरीके से मारा था, इतना बेदर्द कि उसके अपर बॉडी को दो हिस्सों में बांट दिया था। उसकी चीख निकल चुकी थी। उसने आसपास के लोगों को बुलाया और लोग इकट्ठे हुए। उसके दिमाग में एक और ख्याल तुरंत हिट करता है, और वो ये है कि एक तो पहले ही सब लोग मेरी बीवी को न जाने क्या कुछ कह रहे हैं, मैं यहाँ मौजूद हूँ, पता चलेगा इस लाश का भी क्रेडिट मुझे ही थमा दिया जाएगा कि मैंने ही किया है सब या मेरी बीवी ने किया है। और इतना सुनते ही वो यहाँ से 9:45 हो चुका था। वो यहाँ से भागता हुआ, लोगों की नज़रों से छुपता हुआ, सीधे अपने घर की तरफ भागा बहुत तेज़। और भागते भागते भागते भागते वो ऑलमोस्ट अपने घर पहुँचने वाला था, जहाँ उसे एक आइडिया था कि उसकी मोहतरमा भी सो रही होंगी, बट ऐसा नहीं था। उसकी मोहतरमा उसके बच्चे को लिए बालकनी में खड़ी थी। और कमाल की बात ये थी कि उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं था, वो नींबू के पेड़ को देख रही थी जो उस बालकनी में ही लगा था। अब यहाँ से वो ट्विस्ट आने वाला था जिसके बाद मॉक को भी लगा कि हाँ, जो अफवाहें वो सुनता आ रहा है वो सच है। उसने देखा उसकी वाइफ ने एक नींबू तोड़ा जो गिरना तो वॉल्केनी में चाहिए था, लेकिन वो गिरा फर्स्ट ग्राउंड पर। उसने दोबारा तोड़ा और वो भी नीचे गिर गया। वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। अब एक आम इंसान अगर नींबू तोड़ता भी है और वो गिर भी जाता है तो ऑफ कोर्स वो 11 से 12 फीट अपने हाथ लंबे करके तो नहीं पकड़ने वाला है ना। वो नीचे उतरेगा या किसी से कहेगा कि मुझे उठाकर दे दो, बट उन मोहतरमा ने ऐसा कुछ नहीं किया। कहते हैं कि उन मोहतरमा का हाथ 10 से 12 फीट लंबा हुआ था, जिसको देखकर मौ की हालत खराब हो गई थी। उसे लगा ही नहीं कि उसकी बीवी है, और अगर उसकी वाइफ है भी तो ये कैसे पॉसिबल है, कोई अपना हाथ कैसे लंबा कर सकता है। उसने झुककर जैसे ही उसको उठाया, उसकी नजर तुरंत अपने हस्बैंड की तरफ गई। दोनों की निगाहें मिली, मॉक बहुत जोर से चिल्लाया और उल्टे पांव वहीं से वापस लौट के सीधे गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचकर उसी मंदिर के दरवाजे पर गया जिसका पुजारी उससे मिलने आया था, और बहुत जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा कि कैसे भी खोल दो भैया, जान बचानी है, जान पर बन आई है अब तो। बहुत देर बाद पुजारी जी ने गेट खोला, और जैसे ही वो गेट खोला, मॉक उनके पैरों में गिर चुका था सच जानने के लिए कि ये क्या था, मैंने अभी क्या देखा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगा, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना है। उसने कहा मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, तुम मुझे सच बताओ ये क्या था। उन्होंने कहा प्रॉमिस हम तुम्हें लास्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब तुम वो सच सुनो जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। जब तुम वॉर में थे, तुम युद्ध करने गए थे, उस वक्त कुछ 7 महीने पहले तुम्हारी वाइफ के बहुत तेज लेवर पेन उठा था। जो दाई माँ थी, जो इकलौती नर्स थी शायद उस गांव की, वो गई थी उसकी डिलीवरी कराने। पूरी रात उस दर्द में तड़पने के बाद तुम्हारी बीवी ने एक बच्चे को डिलीवर भी किया था, लेकिन उस दाई माँ का कहना था कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उस पेन के कारण या फिर कोई भी रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं बचा। और जैसी ये खबर तुम्हारी वाइफ को पता चली, वो शॉक में, शायद उसे हार्ट अटैक आया था, और वो भी वहीं मर चुकी थी। अब क्योंकि तुम नहीं थे, लोग नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थे, तो हमने सिर्फ उसकी बॉडी को दफन किया था पास के कब्रिस्तान में। इसके अलावा कोई और रिचुअल हुआ ही नहीं था। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं अपनी बीवी के साथ रह रहा हूँ, मैं अपने बच्चे के साथ उस घर में रहता हूँ, हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, उसने कहा, नहीं, तुम जिसके साथ रहते हो वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, वो तुम्हारा बच्चा भी नहीं है, वो तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे के स्पिरिट्स हैं, भूत है। उसने कहा, कैसे हो सकता है? उसने कहा, पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन शायद तुम्हारी मोहतरमा यानी तुम्हारी वाइफ तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी कि वो दुनिया छोड़ के जाने के बाद भी तुम्हारे इंतज़ार में उसी घर में रह गई और वो नहीं जा पाई, और अब उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए तुम्हें कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करनी पड़ेंगी। रिचुअल्स ये थी कि कब्रिस्तान में जो बॉडी दफनाई गई थी उन्हें बाहर निकालना था, उन आत्माओं को उसमें वापस डालना था, और उसके बाद वो रिचुअल्स ख़त्म करनी थी। मन को मारते हुए और ये जानते हुए कि जो देखा है वो सच है, झूठ नहीं है, और शायद जो पुजारी कह रहे वो भी सच है, उसने हामी भरी। कब्रिस्तान की कब्र वापस से खोदी गई और इस बार उसकी मोहतरमा की बॉडी निकाली गई। बात बहुत अजीब है, देखने में अजीब लगती है। इसके बाद भी उसके सर पर, उसकी थोड़ी सी सर की जो बोन होती है उसको कट किया गया, शायद कुछ रिचुअल्स परफॉर्म की गए जिससे उनका मानना था कि शायद वो आत्मा वापस से वहीं चली जाएगी जहाँ से वो आई है। उसको, उस रिचुअल्स को परफॉर्म करने के बाद वापस से दफना दिया गया। कुछ सालों बाद मौक की भी कुछ नेचुरल कॉजेस से डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद थाईलैंड में उस घर से लोग डरते कम थे, उसको मानते ज़्यादा थे। लोगों का कहना था ये वो घर है जहाँ पर एक ऐसी भी लड़की थी जिसने अपने हस्बैंड के इंतज़ार में दुनिया छोड़ने के बाद भी दुनिया नहीं छोड़ी, और आज उसकी लोग पूजा करते हैं। एक ऐसा घर जिसको लोग अब मंदिर बना चुके हैं और कहते हैं कि ये मंदिर है मोहब्बत का, ये मंदिर है मौत का, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है द टेम्पल ऑफ लव एंड डेथ। ऐसी स्टोरीज होती हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो समझ से परे होती हैं, और उनमें से भी एक ये कहानी थी। हमें लगता है कि हर एक चीज़ जो इस दुनिया में होती है वो साइंस के समझ में होती है, बट ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें साइंस की समझ से परे होती हैं, लोगों के सोच से परे होती हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो और आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है। मॉक को भी आइडिया नहीं था कि वो एक साल पहले जो अपनी वाइफ छोड़ कर गया था एक साल बाद आएगा तो उसे उसकी वाइफ नहीं, उसकी वाइफ की स्पिरिट मिलेगी, उसकी आत्मा मिलेगी। जो सबको डरा रही है वो अपने हस्बैंड को कुछ नहीं कहेगी, उसके साथ रहेगी और महीनों गुजारेगी। वो वैसे ही रहेंगे एक हैप्पी फैमिली की तरह, एक जैसे ड्रीम होता है ना किसी का, खुशहाल ज़िंदगी, खुशहाल फैमिली। बस भाई, फिलहाल आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को जो कैलाश खेर की आवाज़ में है, तुझे मैं प्यार करूँ, मेरी फेवरेट फिल्म 1920 से। स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी, तो इस खूबसूरत गाने जिसमें अल्ताफ सैयद की आवाज है, इश्क तुम्हारा बन जाऊं, बहुत ही प्यारा गाना है। और ऑफ कोर्स जिस हिसाब से मैंने कहानियां सुनाई है ना, उसके अकॉर्डिंग गाना बड़ा ही फिट बैठता है। आपका क्या ख्याल है? फिलहाल हम सृष्टि से पूछ लेते हैं कि आज की कहानी के बारे में वो क्या कुछ कहना चाहती है।
1: मैम ऑनेस्टली ऐसा फील हो रहा है कि स्टोरी सिर्फ हॉरर नहीं, इमोशनली अटैच है और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, पर इमोशनली भी ज्यादा थी।
0: इमोशनली तो थी। जब हम ऐसी फिल्में बॉलीवुड में देखते तो हमें लगता नहीं है ना ऐसा कुछ होगा कभी, कोई किसी के चक्कर में बैठा रहेगा, इंतजार में बैठा रहेगा।
1: नहीं, कभी नहीं लगता है
0: ना। बट 1850 में ये कहानी सच हुई थी। अब जो लोग मानते हैं वो मानते हैं, कुछ हैं जो कहते हैं कि शायद ये सिर्फ एक कहानी है जो लोगों ने बना रखी है। बट जो उस वक्त इसके चश्मदा गवाह रहे थे वो तो जानते थे ना कि कहीं ना कहीं ये सच है। फिलहाल ये तो आपके ऊपर है कि आप इस कहानी को क्या मानने वाले हैं, सच कहानी, कथा या सिर्फ अफवाह।
1: मैम सबसे स्कैरी बात ये है कि उसको पता नहीं चला कि वो स्पिरिट के साथ है।
0: तो भाई ये तो थी आपको हमने सुनाई बेपनाह मोहब्बत की बे इंतहा खूबसूरत स्टोरी। आप मुझे जरूर से बताइएगा अपना फीडबैक। और वक्त ने कर दिया इशारा कि अब विदा लेने का वक्त आ चुका है, तो फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा। लेकिन आज सच कहूं तो आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है दोस्तों। अभी मैं स्टूडियो में बैठी हुई हूं, एसी भी चल रही है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठी हुई हूं। सुबह जब घर से निकली तो लगा कि आज का दिन तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा तो लगा कि आज तो हालत खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ और सिर्फ 10 बज रहे हैं और लग रहा है कि जैसे दोपहर सिर पर खड़ी है। दोस्तों, पहले गर्मी सिर्फ मौसम हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है यार। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रही है हमारे आसपास।
2: अरे आरजे दीदी, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी है तो पसीना आएगा ही। लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है, इस बार की गर्मी वाकई कुछ ज्यादा ही तेज है। और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
1: हाँ टीकन भाभी, अब आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही मेरे, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों की भी इसमें कोई भूमिका है? सच बताऊं, अब ये गर्मी डराने लगी है मुझे, पहले जैसे नहीं रहा।
2: देखिए आरजे, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिम भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब होता ये है कि जो गर्म हवा है वो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल नहीं पाती। और जब ऊपर से बादल भी नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं। जमीन सूख जाती है, उसमें नमी नहीं रहती और फिर वो गर्मी को और तेजी से पकड़ती है। जैसे तवा गर्म हो जाता है वैसे ही।
1: तो इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बन रही है।
2: बिल्कुल सही समझी आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ चुका है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कहीं ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
1: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं, क्यों भाभी?
2: हाँ आरजे, यही सच्चाई है। और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित हैं, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और

0: जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक हो जाती है।
1: तो भाभी अब ये बताइए, ये लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं कि लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है ये तो आज तक किसी ने ना सोचा और ना ही किसी ने प्रश्न किया इस पर। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर में लू हमारे शरीर पर कैसा असर डालता है।
0: जी देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो जाता है। उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
1: मतलब ये तो बहुत गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, अगर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही लू हीट स्ट्रोक में बदल जाती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: ओहो भाभी, तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि हम सबके लिए है। घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
0: देखिए आरजे, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिए, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
1: भाभी आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। ये ORS क्या होता है और कब लेना चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल है आरजे
2: जी।
0: ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है। जब हमें बहुत ज्यादा पसीना बहता है तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
1: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है।
0: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी लग रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं। घर पर भी घोल बनाया जा सकता है।
1: अरे वाह, ऐसा भी कुछ है भाभी?
0: बिल्कुल, 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
1: वाह, मतलब ये तो बहुत आसान है और हर घर में बन सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है ना भाभी?
0: बिल्कुल आरजी, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों है जरूरी। पानी के साथ ORS दोनों है जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
1: हाँ ये तो सही बात है, अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना ही भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?

0: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, और जब भी निकलें तो सिर को ढक कर निकलें, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
1: और भाभी, खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है, या फिर मैं यूं कहूं कि आजकल मैं अगर अपना पर्सनल बोलूं भाभी, तो मुझसे तो खाना खाया ही नहीं जाता। थाली में लेके बैठती दो रोटी, और एक रोटी खाते ही ऐसा लगता कि मन भर गया है, और भूख भी लगी रहती है, फिर भी हम नहीं खाना खा पाते। और सेम चीज़ कहीं ना कहीं पानी के साथ भी होता है कि गला सूखा सूखा लगता है, पेट भरा लगता है। तो मतलब खान पान में हमें क्या बदलाव करना चाहिए?
0: बिल्कुल सही कहा आपने, अक्सर ये घटना सभी व्यक्तियों के साथ गर्मियों में होती है। गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पच जाने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा आदि। ये न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
1: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चालक और अन्य लोग, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल होगा। उनका क्या होगा फिर भाभी?
0: बिल्कुल, मुश्किल तो है। आपने बहुत ज़रूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदलें। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज़ धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें, और जहाँ भी छांव मिले वहाँ थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा कर लें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
1: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
0: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
1: और अगर किसी को सच में लू लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर में प्राथमिक उपचार क्या हो। मतलब हम बड़े उपचार की तो बाद में सोचेंगे, प्राथमिक उपचार भी दिमाग काम नहीं करता है ऐसे समय पे जब हमें लू लग जाती है।
0: जी, ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए, और उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे ज़रूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
1: भाभी, ये तो थी हम इंसानों की बात। अब एक और बात, ये गर्मी ने तो हम लोगों को वाकई बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं जितने हम मनुष्य?
0: अरे आरजी
1: जी,
0: जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं,
1: है ना?
0: बल्कि जी, लेकिन कई बार हमसे भी ज़्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव और साफ पानी की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: तो भाभी इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो सकते नहीं लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेल रहे हैं जितना कि हम।
0: बिल्कुल आरजे, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भर कर रख दे तो वह किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है और यही असली इंसानियत है।
1: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बात बहुत ज़रूरी बताई कि गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हमें बस अपनी रोज़मर्रा की आदतों में बदलाव लाना होगा, वो भी छोटा छोटा, जैसे समय समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचाव करना, हल्के और सूती कपड़ों को पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे ज़रूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुज़ुर्ग हो, कोई बच्चा हो, कोई मजदूर हो या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली ताकत होती है। याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहें हम सब तैयार। और एक बात और कि धूप से बचाव है ज़रूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। भाभी, आपकी बातें सुनकर एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम लापरवाही करें तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या आपने ऐसे कोई मामले को देखा है जहां लापरवाही बहुत भारी पड़ गई हो?
0: हाँ अर्जे, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव में पिछले साल एक छोटा सा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम कर रहे थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी लेकिन वे बच्चे को भी अपने साथ ले गए। धूप तेज थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पानी दे देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया।
1: फिर क्या हुआ भाभी?
0: और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
1: ये तो बहुत दुखद है भाभी।
0: हाँ अर्जे, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था। अगर समय पर पानी दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। तो साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
0: और अंत में बस इतना कहना चाहूँगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
1: इसी के साथ दोस्तों, हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले लेंगे हम सब अपनी सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
3: प्राथमिकता देंगे
2: क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
2: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
1: मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे इसी शो यानी कि सेहत सही और लाभ कई में, क्योंकि अगर सेहत होगी सही तो लाभ भी तो होंगे कई, एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखिए, पानी पीते रहिएगा, छांव में रहिएगा और हमेशा स्वस्थ रहिएगा। अपना भी और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और बेजुबान और बुजुर्गों का थोड़ा ज्यादा खास वाला ख्याल रखिएगा। टेक केयर।
4: फाइलेरिया को हराएं।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: डिलीशियस
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
5: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
6: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
5: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
6: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
5: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
6: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
5: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
0: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88404-9584-8840-3035-84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज अंशिका। चलिए भाई आज का दिन, और आज का दिन है, आज है हम सभी का फेवरेट, यानी कि आज है बड़ा मंगल। तो बड़े मंगल की आप सभी को पहले पहले तो बहुत ज्यादा वाली शुभकामनाएं, क्योंकि आज है छठा बड़ा मंगल, है ना अंशिका?
1: जी मैम,
0: छठा बड़ा मंगल है, और आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा वाली बधाई। क्योंकि भाई इस बार सुना जा रहा है कि पूरे 8 बड़े मंगल आ रहे हैं, और जिसमें से 6 हो गए हैं, यानी आज मिला करके 6 हो गए, बाकी 2 मंगल और। तो इस बारी हनुमान जी की कृपा हम सभी भक्तों पर असीम है, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है पहली बार हुआ है कि 8 बड़े मंगल, यानी कि 2 महीने पूरे। वैसे क्या होता था कि 4 आते थे, 3 हाँ। आते थे, बट इस बार 8 बड़े मंगल, यानी कि 1 महीने में 4 होते हैं, और 4 × 8 यानी 8 बड़े मंगल। तो भाई ये भक्तों पर असीम अनुकंपा ही है, ऐसा ही माना जाता है कि ये असीम अनुकंपा है। तो चलिए आज के दिन को शुरू करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा वाली पॉजिटिव वाइब्स के साथ में, क्योंकि जब हम कुछ शुभ काम करते हैं, जब हम कुछ शुभ आध्यात्म को जोड़ करके कोई काम करते हैं ना, तो अपने अंदर से कुछ अच्छी वाली फीलिंग्स भी आती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और बाकी दुनिया है यार, मुझे तो लगता है कि दुनिया से ना बिल्कुल परे हट के जीना चाहिए, क्योंकि दुनिया से ना मुझे लगता है कि आप लोग जितना देंगे ना, जितना 100% आप सोचते हैं कि हम दुनिया को दे लें, रिश्तों को दे लें, पर वहाँ से ना आपको 100% तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर 50% भी नहीं कह सकती हूँ, आप 10 या 20% ही आप सोचो कि आपको उसके बदले में मिलता है।
1: बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं जैसे मैम ने अभी अभी आपको बताया कि बहुत मतलब इतर जीना चाहिए,
0: इतर
1: मतलब कहने का सेंस है कि इन सब प्रॉब्लम से थोड़ा सा हट करके जीना चाहिए, जैसा अभी आप कहना चाह रही थी। लेकिन उससे पहले एक सवाल है आज जो मेरे मन में घूम रहा है और मुझे पूछना है। पूछूं?
0: बिल्कुल।
1: आज जब आप आई थी तो बहुत ग्लोइंग लग रही थी।
0: तो लग रहे थे ना, अभी तो
1: नहीं लग रही हैं, सॉरी माय मिस्टेक, वो हल्का सा ग्लिच हो गया। लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। तो क्या राज है?
0: राज यही है कि मैं राज बताऊं, एग्जैक्टली ऑन एयर राज बताने जा रही हूँ मैं,
1: बताइए।
0: वो राज ये है कि जब उसको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, और ये मेरी दिल की आवाज है, और दिल की आवाज मुझे पता है कि जब हम ऑन एयर बोलते हैं
1: या
0: ईश्वर ईश्वर के सामने बोलते हैं, तो हम हमेशा से फेक नहीं बोलते हैं। और आज समता का शुरू से मुझे 3 साल हो रहा है यहाँ पर, मैं उन लोगों को ये चेतावनी दे देना चाहती हूँ जो लोगों के दिल दिमाग में ये है कि यहाँ पर सिर्फ फेक बोला जाता है, झूठ बोला जाता है, एंड कुछ वैसा वैसा होता नहीं है, सिर्फ एक सपनों की दुनिया में बैठ करके हम शोज की बातें करते हैं। बट होगा, दूसरों के लिए होगा, बट आज समता के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं जैसा सोचती हूँ मैं वही करती हूँ और वही बोलती हूँ जो बिल्कुल सच होता है।
1: ओके।
0: तो 3 साल से कई लोग मेरे साथ काम करके मतलब सुन सहेली में गए, और हाँ मैंने फेक सुना भी उनके मुंह से, बट मैं हमेशा से कहती थी यार ऐसा नहीं है, तुमने ऐसा किया था जो तुमने बोल दिया। बोली अरे ऐसा बोला जाता है। मैंने कहा नहीं, कोई भी रेमेडी हो, कोई भी डिश हो, कोई भी बात हो, तो वो मैं अपने ऊपर पहले ज़रूर से उसको अपनाती हूँ, देन आप तक पहुँचाती हूँ। सेम आज का भी टॉपिक यही है कि अभी जो अंशिका ने प्रश्न पूछा मुझसे, वो ये कि 100% नहीं 200% सच बोलने जा रही हूँ मैं अभी।
1: ओके।
0: कि एक एग्जाम्पल से बताऊँगी कि जब आपका घर अंशिका जाले लग जाते हैं, गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी आ जाती है, तो आप क्या करते हो उन जालों के साथ में और धूल मिट्टी के साथ में, और आपकी एक फ्रिज है उसमें बहुत सारा सामान भर दो
1: जी,
0: अननेसेसरी भी सामान भर दो, तो आप क्या करते?
1: पहले जाले लगे हुए हैं, गंदा है, मतलब धूल मिट्टी है, तो उसको साफ करेंगे,
0: जालों को साफ करते
1: हैं। हाँ, और फ्रिज में जो भी मतलब
0: अननेसेसरी सामान है,
1: तो जो हमारी यूज का नहीं होगा उसको हम निकाल देंगे और उसको साफ कर लेंगे, जो हमारे यूज का होगा उसको हम उसमें एडजस्ट कर देंगे अच्छे से।
0: हाँ, मैंने वही किया अपने साथ।
1: ओके।
0: मैंने वही किया।
1: जी मैंने समझ गए,
0: मैंने वही किया है अपने साथ। मैंने अपने दिल दिमाग में जो जाले लगे हुए थे, जो गंदगी थी, मैंने उसको साफ किया है, दुनिया से बिल्कुल दूर परे हट गई हूँ, और मेरी दिमाग में एक फ्रिज है, हर किसी के दिमाग में एक फ्रिज होती है, एंड हम लोग अननेसेसरी सामान भर देते हैं, और सामान ऐसे भर देते हैं कि डोर तक सामान भर जाते हैं, एंड कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि सालों पुरानी रख देते हैं हम लोग, और लगता है कि यार कभी तो काम आएंगी, रख दो। बट मैंने वही किया है, मैंने अपने दिमाग वाली फ्रिज को साफ किया है, एंड जहाँ पर वो कूलिंग वाला एरिया होता है वो तो बिल्कुल खाली कर दिया है ताकि उसकी कूलिंग हमारे नीचे बॉडी तक आए, यानी जो हमारी फ्रिज का जो सबसे टॉप फ्लोर होता है जिसमें कहते हैं बर्फ जमती है, उसी की ठंडक ज्यादा पूरे नीचे तक आती है जहाँ पर हम सब्जियां रखते हैं। हमारी बॉडी भी ऐसी है, हमारी बॉडी में जो दिमाग है और दिमाग जो है वो एक फ्रिज का एरिया का सबसे टॉप एरिया होता है जहाँ पर बर्फ जमती है, हमें उसको कूल रखना चाहिए, वहां पर हमें अपनी बहुत सारी चीजों को जमा करके नहीं रखना चाहिए, तभी आपकी वहां की कूलिंग आपकी बॉडी तक पहुंचती है। तो मेरे समझाने का तरीका जो आपको पसंद आया होगा,
1: तरीका पसंद आया और मतलब कूल रहने की बात आज कौन कर रहा है ये भी मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है।
0: तो सरप्राइजिंग क्या मैं कूल नहीं हूँ मुझे बताओ?
1: नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल अन्यथा में मेरी बातों को न लें। कहने का सेंस सिर्फ इतना था कि मतलब हम जब नाम लेते हैं ना कि आज समता आई, या जब हम नाम लेते हैं समता मैम, तो मन में वो एक आता है ना, तो आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे मैम के मुँह से ये सुन करके कि कूल रहना चाहिए।
0: नहीं तो नहीं नहीं देखो देखो मैंने जो बातें बताई उससे तुमको क्या लगा, मुझे सिर्फ वो जानना है।
1: उससे मुझे ये लगा
0: टोटल बातों का
1: कंक्लूजन ऑफ दिस कि आप जो है मतलब बेकार की चीजों से और बेकार की बातों से।
0: नहीं वो तो समझ में आ गया तुम्हें, बट उसका असर मेरे पे क्या दिख रहा है तुम्हें?
1: असर ये
0: जो मैंने अभी बताया क्लियरिफिकेशन मैंने दिया, तो मतलब अबाउट माई हेल्थ, अबाउट माई फेस, अबाउट माई नेचर, अबाउट माई कूलनेस, उसके बारे में पूछना चाहती हूँ मैं।
1: नेचर तो भाई बहुत ही मतलब जैसा आपने कहा कि आप कूल रहना चाहती हैं, तो आज कुछ कूल लग भी रहा है बातों से।
0: आज ही लग रही हूँ।
1: नहीं
0: कल आपने कल डोज दिया था इसीलिए
1: कि आप रहना चाहती हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब ऑलवेज। और फेस तो वाकई में मतलब आज जब मैम आई और मैं वहां से देख रही थी और मैंने गुड आफ्टरनून भी किया,
0: तो मैंने कहा ना कि मैंने अपने दिमाग वाली फ्रिज को साफ किया है।
1: हाँ, तो उसका जो एक कहते हैं ना असर वो दिख रहा है। हाँ, ये मैं बताना चाहूँ।
0: तो ये मैं आज का जो टॉपिक हमारा है ये मैं अपने सभी लिसनर्स को, इनफैक्ट मैं अंशिका को एंड सभी लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली हमारी, और जो मैंने एग्जांपल दिया है फ्रिज का तो वो अच्छा है ना।
1: हाँ एग्जांपल तो अच्छा
0: 100% है। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
1: होता तो है,
0: होता है ना, इसमें कोई फेक नहीं है ना।
1: नहीं नहीं,
0: जो मैंने बातें बोली उसमें तुम्हें कुछ फेक लगा?
1: नहीं
0: नहीं लगा। और मैं आप सभी लिसनर्स को बता देना चाहती हूँ कि अंशिका भी, जैसे कहते हैं ना रंग का संग एंड संग का रंग जो होता है वो बहुत बड़ा असर होता है। तो मैंने ये गौर किया है पिछले 1-1.5 साल से जब से अंशिका आई है कि ये लड़की भी ना कभी फेक नहीं कुछ बोलती है। अगर मैं जबरदस्ती इसको बोलती भी हूँ ना कि तुमने ये डिश बनाई थी जो तुम बता रही हो, बोली नहीं मैंने बनाई नहीं है, मैं बता रही हूँ पर मैंने इसको मैं ट्राई जरूर करूंगी।
1: हाँ।
0: मतलब ये डर जाती है कि हाँ मतलब मैंने उसको ट्राई नहीं किया है बट मैं झूठ कैसे बोलूं कि मैंने इसको कल ही बनाया था तो मैंने उसको ट्राई किया बताया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने जहाँ पर हम काम कर रहे हैं अपने कार्यस्थल पर और उन उन उन हज़ार लोगों के सामने जहाँ हम बैठे हैं और जो लोग हम पे विश्वास करके हमें सुनते हैं उनके साथ कोई ऐसा छल नहीं है, उनके साथ कोई ऐसा धोखा नहीं है कि हम लोग बस यूं ही टाइम पास करने आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी सोच इतनी अच्छी अब चेंज मैंने खुद को कर लिया है पिछले 5-6 महीनों से, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना मूव ऑन कर लिया है कि ऐसा सभी को करना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि अगर हम अध्यात्म से जुड़ते हैं ना तो हम दुनिया से दूर हटने लगते हैं।
1: ओके
0: अध्यात्म से जुड़ते हैं और दुनिया से दूर हटने का मतलब होता है कि क्या हम अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, सब कुछ हो रहा है बट लोगों की बेकार सी बातें, लोगों की बेफिजूल सी बातों का जो असर होता था वो अब नहीं होता है। फ्रिज में जो सड़ा गिला सामान रखा होता था अब उसकी जगह नहीं है, उसकी जगह पर अब कूलिंग ठंडे पानी की बॉटल्स रखती हूँ, रुआबजा रखती हूँ, मुल्तानी मिट्टी
1: आम भी रख सकते हैं,
0: वो तो अभी सीजनल है, मतलब रोज़मर्रा में मुल्तानी मिट्टी रखती हूँ, रोज़ वाटर रखती हूँ एंड एलोवेरा जेल रखती हूँ एंड बहुत अच्छी अच्छी सब्जियाँ रख देती हूँ जो कि जब भी मन हो तो उसके बना लो, फ्रूट्स रख देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ। तो ये चीज़ें रखने से ना आपकी बॉडी एंड सोच में ही, आपकी सोच से ही पता चल रहा होगा कि यस इम्प्रूव हुआ है। और ये इम्प्रूव जो हुआ है ना, कहते हैं ना कि सभी को करना चाहिए अपनी लाइफ में, सभी को करना चाहिए ये रिसाइकलिंग, सभी को करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आज बच्चों का सेक्शन है एंड बच्चों के सेक्शन के दिन में मैं बच्चों के लिए एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहूँगी कि अगर वो अभी से अपनी माइंड में रखी हुई फ्रिज को अगर उसमें कचरा नहीं भरेंगे तो आपकी फ्रिज हमेशा से फ्रेश रहेगी, उसको कभी गंदा
1: नहीं होगी,
0: उसको साफ करने की भी नीड नहीं होगी।
1: तो लिसनर्स, हमारी बातें जो है वो आई होप आपको समझ में आई होंगी और आप भी इसको ट्राई करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान में भी वर्जन होना चाहिए।
0: हाँ।
1: हमें अपने वर्जन को चेंज करते रहना चाहिए। तो चेंज करें, खुश रहें और कोशिश करें कूल रहने की
0: मेरी तरह। अभी अंशिका ने एक बात बोली थी तो मैंने उस बात को अभी रोक दिया था। तो
1: अच्छा।
0: अभी जो हम लोग बात भी कर रहे थे, अभी मतलब ऑफ एयर बात कर रहे थे हम लोग कि ये बोल रही है, मुझे बोल रही थी कि मैम आपका जो ऑरा है एक, तो उस ऑरे के कारण से हम लोग थोड़ा सा बहुत ज्यादा पहले डरते थे, और अभी इसने भी अपने मुंह से उगला भी है, कबूल भी किया कि कूल रहने की आप बात कर रही हैं, मतलब आज समता बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अंशिका अपना ऑरा वैसा बनाना चाहिए, एक बाउंड्री बनानी चाहिए, क्योंकि हम समाज में उठ रहे हैं, हम अपने काम के स्थल पर जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं अकेले, कहीं भी कुछ भी, ऐसा अगर ऑरा रहेगा ना तो काफ़ी लोग आपके फिजूल वाले लोग आप तक रंग फेंकने की हिम्मत नहीं करेंगे
1: जी।
0: और रंग आपको पता है कौन सा होता है?
1: कौन सा
0: रंग होता है? आपको ऊटपटांग बोलने वाला, आपको टीज करने वाला, आपको छेड़ने वाला, आपको बेवजह सुना के जाने वाला, वो ऑरा आपको बना के रखना है, एक बाउंड्री बना के रखनी है, ताकि बेफिजूल के रंग लोगों के आपके ऊपर ना पड़े।
1: ओके तो भाई आज का हमारा ये हम कह सकते हैं कि
0: आज
1: जो
0: पता नहीं क्यों क्या खा के अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना।
1: हाँ वो असर हुआ है मैम, पॉजिटिव
0: सफाई का असर हुआ है,
1: सफाई का असर हुआ है। और यही कहूंगी कि बिल्कुल आप सभी भी ट्राई करते रहें, क्योंकि बहुत जरूरी होता है हमारी माइंड का रिसाइकल होना।
0: हाँ।
1: तो चलिए अब इन बातों से होते हुए चलते हैं कुछ गलियों में, क्योंकि टाइम जो है वो हो गया है और हमारे लिसनर्स इंतजार कर रहे हैं और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त इंतजार कर रहे हैं,
0: क्योंकि आज है आपका फेवरेट ट्यूसडे और बच्चों का सेक्शन। लेकिन उसके पहले मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ कि आपका पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसमें दो सहेलियां आती हैं, उसका नाम है
1: सुन सहेली
0: विद आज समता एंड आज अंशिका। इन प्यारी सी दोपहर में एक साथ एक ही फ्रेम में क्या विश करेंगे?
1: शुभ दोपहरिया।
0: चलिए फटाफट आज एक प्यारी सी पोयम भी मैं लेके आई हूँ और उस पोयम को मैं पढ़ूंगी एंड रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ आपको पता है कि वो अंशिका आपको बताएंगे।
1: एक मिनट, आज दिमाग में ठंड है कायम।
0: हाँ।
1: तो हम सुनाएंगे बहुत ही प्यारी सी पोयम, सुनाई।
0: वाह, देखो ये होता है साथ में बैठने का असर, एक ऑरा दिखाने का असर कि बगल में। अच्छा आपने मतलब मैं अपने आप को डायमंड नहीं कह रही हूँ अंशिका, ये मत समझना।
1: जी जी जी।
0: बट आपने ये गौर किया होगा कि एक स्टोरी थी, मुझे अभी मैं पहले पोयम सुना लेती हूँ।
1: okay,
0: okay. ठीक है, मुझे लेकिन याद दिलाना। उसका टॉपिक है मिट्टी और हीरा।
1: oh, wow.
0: ठीक है, तो मुझे इसका जरूर शीर्षक बताना और पूछना, और अगर आज तुमने एंड ऑफ शो नहीं पूछा ना तो पिटाई करेंगे पक्का वाला।
1: नहीं तो मैं
0: जरूर पूछना। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं फटाफट पोयम।
1: जी,
0: अलमारी के पीछे छुपा वो खजाना।
1: ओह,
0: ये है शीर्षक और खजाने में क्या है आइए देखते हैं। नंगे पैर वो तफरी करना, वो छत पर सो जाना, पापा की पॉकेट से चुपके से चवन्नी चुराना। चवन्नी का भी जमाना था यार।
1: अरे ये क्या, वाओ मैम,
0: चार चवन्नी मिलकर एक रुपया होता था।
1: हाँ।
0: मैंने अठन्नी भी देखी है।
1: हाँ, अठन्नी मैंने भी देखी है।
0: हाँ, मैंने चवन्नी देखी है, चवन्नी अठन्नी मैंने देखी है। और गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना, इमली की वो खट्टी चटनी, आम चुरा कर खाना, चोट लगे तो रोते रोते माँ के आंचल में छुपना, रिफिल खत्म होने पर पेन को फूक कर मार कर लिखना, इरेजर की खुशबू सूंघना, कटर का कचरा बचाना। हाँ ये तो करते ये थे यार। मतलब जो कटर होता था ना, जिसको अब हम लोग मतलब शॉर्पनर
1: बोलते हैं,
0: उसकी पेंसिल को हम लोग जब इरेज करते थे तो वो हम लोग संभाल के रखते थे। कॉपी के पीछे पन्नों पर नाम लिख कर मिटाना, रिमोट के सेल को धूप में रखकर फिर से चलाना, छोटा सा बुखार होने पर छुट्टी से स्कूल से छुट्टी पाना, साइकिल की चेन उतरने पर हाथों को काला करना, अंधेरा होते ही भूत के डर से जोर से भागना, अब न वो फिक्री बची है न वो हंसते हुए चेहरे, जिम्मेदारी के कंधों पर अब बैठ गए हैं पहरे, सूटकेस में बंद हो गए वो गुल्लक और खिलौने, कितने महंगे हो गए देखो बचपन के वो दिन बौने।
1: Oh my God.
0: दिल को छू लेने वाली ये
1: बहुत ही प्यारी सी पोएम मैम है। और थैंक यू मैम, बहुत ही प्यारी आप पोएम लेके आई। और मतलब एक एक शब्द जैसे कहते हैं ना,
0: हाँ,
1: सीधा लगता है,
0: सीधा वार किया दिल पे। और इस पोएम की एक एक लाइन हम लोगों ने एग्जैक्टली में हम लोगों ने की है, जी है मैंने,
1: हाँ
0: हाँ मैंने तो जी है। साइकिल की चेन को भी मैंने सही किया,
1: आम भी बहुत चुराए,
0: आम भी बहुत चुराए, चटनी भी खाई है,
1: एक बार मैं गिर भी गई थी।
0: अरे बचपन में तो बहुत ज्यादा गिरते उठते पढ़ते ही रहते थे, और उस समय ना पता चोट भी नहीं लगती थी,
1: कुछ नहीं महसूस होता।
0: अब अगर जैसे हल्का सा भी अगर ग्लिच हो जा रही है और डर लगता है, अरे यार कुछ क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब ऐसा वाला हो गया।
1: लेकिन बचपन वैसा नहीं था, बचपन में तो आप गिरे, चोट भी लगी, छिल भी तब जाता था जब मम्मी बताती थी कि देखो यहाँ कटा कैसे है,
0: हाँ।
1: तब होश आता था कि अरे ये कैसे छिल गया।
0: कई कई दिन हम लोग घुटना सीधा नहीं कर पाते थे, उस पर पपड़ी जम जाती थी, और स्कूल जाते थे तो बहुत डर मतलब दर्द होता था, सॉक्स नहीं पहन पाते थे हम लोग, वो पूरा फुल सॉक्स पहन के जाते थे स्कर्ट के नीचे,
1: हाँ।
0: तो काफी दिन तक हम लोग जो छोटे सॉक्स होते थे वो पहन के जाते थे कि हमें घुटने पे चोट लगी है, मतलब फुल ऑफ एंजॉय जिसको कहते हैं, मस्ती। तो आइए सुनते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, एंड ब्रेक के उस पार बहुत सारा है आज बचपन को लेकर के बातें।
1: आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताने से पहले एक बात बताना चाहूंगी कि न्यूज में आया था, अभी मैंने दो तीन दिन पहले भी देखा था, कि 12 साल की एक लड़की थी और उसने सुसाइड कर लिया, कुछ उसका रीजन था। और उसके दो दिन पहले भी देखा था कि 17 साल का लड़का था, उसने सुसाइड कर लिया। तो आज इस टॉपिक में मैं आपको रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताना चाहूंगी कि जिंदगी एक बार मिलती है और जी लो, क्योंकि हर बार नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा वो इंसान कायर तो नहीं कहेंगे हम, वो गलत उसका वे निकलता है, लेकिन एक बहुत बड़ी हार होती है आपकी जब आप खुद से हार जाते हैं। कभी खुद से ना हारें, पूरी दुनिया से हार जाएं, लेकिन कभी खुद से ना हारें, क्योंकि जो खुद से हारता है वो दोबारा कभी उठ नहीं पाता है। ये जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि जब सुनने में आता है मैम बड़े बड़े लोग जैसे बड़े हों, 50, 55, 40, 30, तो समझ में आता है कि उन्होंने सुसाइड किया, एटलीस्ट उन्हें ये तो पता था कि होता क्या है करना। लेकिन 12 साल का बच्चा कर ले रहा है, 17 साल की लड़की कर ले रही है, और रीजन भी बहुत बड़े नहीं है, मम्मी ने कुछ कह दिया तो, पापा ने डांट दिया तो, बहुत छोटे छोटे रीजंस है, नंबर अच्छे नहीं आए, तो ये कोई एक पॉइंट नहीं होता है। यही कहना चाहूंगी, पूरी जिंदगी पड़ी है, जियो, बहुत बेहतरी से जियो, और कभी खुद से मत हारो, क्योंकि खुद से अगर हारे तो आप कभी दोबारा जीत नहीं पाएंगे। जग से हार गए, सबने आपको हरा दिया, आप दोबारा उठ जाओगे, लेकिन जिस दिन हम खुद से हारेंगे उस दिन हम कभी नहीं उठ पाएंगे। और ऐसी चीज़ तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि हमेशा न्यूज़ में हम देखते हैं आता है कि वो उनकी तो डेथ हो गई जो बच्ची थी या जो भी था, और फैमिली उनके मम्मी पापा पीछे रो रहे हैं और अपनी मन की बातें बता रहे हैं। अभी परसों मैं देख रही थी न्यूज़ में, और मुझसे तो फ्रेंकली देखा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि जिस तरह उनकी मम्मी रो रही थी और वो बता रही थी मैम कि ऐसे ऐसे हुआ, और मैंने तो कुछ नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ छोटी सी बात कही थी, और उससे वो इतनी हर्ट हो गई कि उसने इतना बड़ा कदम लिया, मेरी वजह से हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मतलब कहीं ना कहीं वो एक रिग्रेट वाली फीलिंग पूरी लाइफ रहेगी उनकी जिंदगी में। आपकी जगह भी कोई कवर नहीं कर पाएगा। तो आज के लिए बस इतना।

0: जोकर।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता एंड साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को।
5: जी, तो आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, और हमारा जो पहला टॉपिक आज का है वो ये है कि बातें जो होती हैं मैम, वैसे तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत ख़राब भी होती हैं। ख़राब इन द सेंस होता है कि उन बातों में नेगेटिविटी होती है, और कई बार ऐसी नेगेटिव बातें बच्चों के मन में बैठ जाती हैं। बैठ जाने का मतलब है कि वो उनके मन से निकलती नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें। तो सबसे पहले तो आज हम आपको ये बताएंगे लिसनर्स कि क्यों ऐसा होता है,
4: अच्छा
5: क्यों वो बातें बच्चों के मन में बैठ जाती हैं, और किस तरीके से आप उन बातों को उनके मन से निकाल सकते हैं।
4: उसके पहले मैं बता दूं कि आ गई हैं तान्या फ्रॉम गोंडा एंड कैफ मोबाइल फ्रॉम गोंडा एंड प्रीति जी बहराइच से। तो भाई, काफ़ी दूर दूर से लोग सुन रहे हैं, यानी गोंडा भी जब हमसे स्टूडियो से तो दूर ही हैं जो लोग सुन रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने शो सुन सहेली में।
5: तो चलिए बढ़ते हैं लिसनर्स, और बताते हैं आपको कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा इसलिए होता है लिसनर्स, क्योंकि देखिए कई बार आपने भी सुना होगा, हम बड़े भी होते हैं तो हमारे मन में कुछ बातें बहुत जल्दी कैच आउट हो जाती हैं। जैसे कोई कुछ नेगेटिव बोल देता है, मान लीजिए बहुत नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ मैम, कि आप बढ़िया सुबह अच्छे से तैयार होकर के और बढ़िया सा अच्छा सा सूट कोई पहन करके निकले हैं, और आपको लग रहा है आज मैं अच्छी, मतलब ऐसा लगता है हमें फील हो रहा है आज हम अच्छे लग रहे हैं, और सामने ही निकले और किसी ने बोल दिया अरे नहीं ये कलर
4: तुम अच्छी नहीं लग रही हो, ये कलर तुम हाँ, सूट नहीं कर रहा,
5: सूट नहीं कर रहा। अब वो नेगेटिविटी हो गई कि क्यों सूट नहीं कर रहा है, मतलब हम तो अच्छे से, हमें तो लग रहा था कि हमारे ऊपर सूटेबल है।
4: सारा मूड वही जो होता है ना, वो पूरा बर्फ हो जाता है। मतलब मन करता है या तो हम खुद को कुछ बोल दें, और या तो मेरा मन करता है कि मैं जाके सामने वाले को ढंग से बता दूं।
5: ढंग से बता देने वाला
4: ही होता है,
5: वाला ही होता है, और फिर सामने वाला कुछ बोलने के लायक नहीं रहता। हाँ, ये भी होता है।
4: नहीं, अभी मैंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया था फ्रिज वाला,
5: तो वो याद है मैम को, वो मैम भूली नहीं है। तो कहने का सेंस ये कि ये तो हम आपको अपने लिए दे रहे थे एग्जांपल, कि मतलब हम बड़े हैं तो, लेकिन बच्चे जो होते हैं उनके मन में बहुत छोटी छोटी बातें बैठ जाती हैं, जैसे कि बहुत लोगों को मैंने सुना है, मैक्सिमम लोगों को अपने बच्चों से इस तरह से कहते हो, तुम बहुत नालायक हो, मैक्सिमम लोग कहते हैं, मतलब बहुत घरों में सुना है, और रिलेटिव के यहाँ जाती हूँ, लेकिन बच्चों से ये नेगेटिविटी कभी नहीं कहनी चाहिए, तुम बहुत नालायक हो, अरे तुमसे कहाँ कोई काम होगा, तुमसे एक काम सही हो जाए बहुत बड़ी बात है। देखिए, हम सोचते हैं कि अरे हमने तो कह दिया, लेकिन बच्चे कुछ बातों को मजाक में नहीं लेते, उनके मन में वो बैठ
4: जाती है सीरियस लेकर के, वो फिर दिल में बात को बैठा देते
5: हैं। आप अगर किसी से ये कहेंगे कि तुमसे कोई काम नहीं होगा, तुम कोई काम ढंग से कर लो, तो वो उसके अंदर क्या नेगेटिविटी आती है कि मुझसे वाकई कोई काम नहीं होगा।
4: और अगर आप उसकी जगह पर ये कह दें कि नहीं ये काम तुमसे होगा और बेटर होगा,
5: हाँ, तो वो कोशिश करेंगे दोबारा करने के लिए कि चलो ठीक है हम दोबारा करते हैं, एक बार में नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप ही डीमोटिवेट करेंगे तो धीरे धीरे वो मन में एक जगह बना लेता है।
4: बिल्कुल,
5: मैं बताऊं, जिसे बच्चों से कहा जाता है ना हमेशा कि अरे जिसे एक कहा जाता है उस कमरे में मत जाना, भूत है, बहुत लोगों की हैबिट होती है, धीरे धीरे उस कमरे का डर बैठ जाता है बच्चे के मन में कि वाकई भूत है। फिर वो जब उस कमरे में जाएगा तो भले ही वहाँ कुछ भी ना हो, लेकिन उसे फील होगा कि कोई है, कोई चल रहा है, कुछ हिल रहा है। तो अच्छा, हम क्यों कहते हैं कि बच्चों, जैसे बहुत लोग कहते हैं अरे नहीं वो सांप है, सांप है, तो सांप ऐसी चीज है, ऑफ कोर्स मतलब सांप कोई भी देखेगा तो वो डर ही जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मैम, ऐसे मत देखिए, क्योंकि मुझे भी फिर फील होने लगता है। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रही थी कि बहुत लोग बच्चों से कहते हैं अरे
4: ऐसे भी ना संभल के बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें गर्मियां हैं तो वो बिल से बाहर
5: नहीं बारिश में निकलते हैं, मतलब
4: नहीं गर्मियों में भी क्या बिल से निकलते हैं, उन्हें गर्मी लगती है ना।
5: अच्छा तो फिलहाल यहाँ नहीं
4: देख के बैठे,
5: आज मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन अब कल से मैं चेक करके बैठूंगी। कहने का सेंस ये था कि मैम नहीं है प्लीज,
4: नहीं है नहीं है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे नहीं है,
5: नहीं है। हाँ।
4: अगर यहाँ अगर यहाँ नागिने दूसरी होंगी
5: तो सांप क्यों आएंगे?
4: नहीं नहीं।
5: अच्छा
4: यहाँ अगर नागिने दूसरी होंगी तो हमारा क्या, हम लोग कहाँ जाएंगे हम इस।
5: अच्छा हाँ। तो कहने का सेंस ये तो ये था, मतलब कि जैसे बहुत लोग कहते हैं अरे सांप है सांप है, देखो सांप है, तो बच्चे के मन में क्या होता है कि वो सांप का डर पूरी तरह बैठ गया, और फिर वो लाइफ टाइम उस सांप से डरते हैं, मतलब सभी डरते हैं नो डाउट, लेकिन वो एक खास जगह बना लेता है। आपने देखा होगा कि हर इंसान किसी खास चीज से डरता है, एक खास चीज का फोबिया होता ही होता है। किसी को छिपकली का, मुझे भी है ऊंचाई का, मतलब मैं ऊंचे से नीचे देखती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगते हैं, मुझे बचपन से ही है वो।
4: मुझे अकेले ट्रैवलिंग करने का वो
5: हाँ होता है, बिल्कुल होता है। तो कहने का सेंस ये है कि कहीं ना कहीं बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो बैठ गई हैं चीजें। क्योंकि मैं एक बार टेरिस से गिर गई थी, जो मैं रियलिटी आपको बता रही हूँ।
4: कैसे बच गई?
5: बच गई
4: इसी पे एक बात मुझे और याद आ गई, पहले अंशिका बता ले। हाँ, कैसे बच गई?
5: नहीं मैं मतलब गिरी मैं, और थोड़ा नीचा था, ज्यादा ऊंचा नहीं था नानी के घर पे, तो चोट बहुत नहीं लगी, लेकिन गिर गए तो वो मन में बचपन से ही बैठ गई है चीजें, तो थोड़ा डर लगता है ऊंचाई से अभी भी। आप बताइए, आप बताइए।
4: वो बात ये बतानी थी हमको कि जितना हमारा स्टूडियो से नीचे वाला होगा, जहाँ स्टूडियो से नीचे जहाँ पर अभी फ्लोर है,
5: जी
4: हाँ, इतना ही होगा, मतलब इतना जहाँ हम लोग बाहर खड़े होते हैं, ग्रीन सोफा है,
5: जी जी जी,
4: बस उतनी, और नीचे बिल्कुल फ्लोर पे इतनी ऊंचाई होगी। ठीक, मेरे घर के बगल में एक लड़की थी, मतलब एक पूरी फैमिली रहती थी, अभी भी रहती है, पर अब उसकी मतलब उसके आगे बताएंगे उसके बाद क्या हुआ, पहले बता देंगे तो फिर। तो एक लेडी थी, उसके तीन बच्चे थे, तो दो बच्चे तो वो हमेशा से उसके क्या कहते हैं नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे, मतलब अपनी मम्मी पापा के साथ, और उसमें से एक जो लड़की थी वो अपनी दादी के साथ हमेशा रहती थी और अपनी बड़ी माँ के साथ में।
5: जी,
4: धीरे धीरे क्या होने लगा कि उसकी बड़ी मम्मी ने ही उसको एडॉप्ट कर लिया, मतलब उसने ले लिया उसको, क्योंकि उनके पास दो ही बेटे थे, तो उसने उसको ले लिया। ठीक है, अब ये दादी के साथ बहुत ज्यादा हीली हुई थी, तो क्या था कि मैं अंशिका तुम्हें वो घर दिखाऊंगी कभी अगर तुम मेरे घर आओगी, तो क्या था कि जैसे नहीं मतलब उस ऐसा मतलब घर खुला हुआ था,
5: हाँ।
4: और जो जो हमारे घर की गली है, गली की तरफ, गली की तरफ में ऐसे करके मतलब सीट ऐसे करके बनी हुई थी, और मतलब इतना सा चौड़ा था कि वहां पर वो लोग बैठ जाती थी और नीचे सड़क पड़क देखती थी, उसकी दादी तो ऐसे बैठ जाती थी।
5: जी,
4: ये बच्ची थी कम से कम 4-5 साल की बच्ची थी बस। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो जब उसकी उसकी दादी कहीं काम वाम कर रही होंगी घर पे, इधर उधर थी, बड़ी मम्मी भी इधर उधर थी, वो उसने जाके वहाँ वो उसी चबूतरा बना हुआ था और नीचे कोई सपोर्ट नहीं था, मतलब वो खुला हुआ था,
5: खुला हुआ था,
4: और नीचे देखो तो मतलब सड़क पूरी रोड
5: जी जी,
4: वो जाके बेचारी छोटी बच्ची थी वो जाके वहाँ बैठी और नीचे जाके धम से गिर गई। सोचो कितनी ऊंचाई हो गई, यहाँ से पूरा नीचे सोचो कितनी ऊंचाई है,
5: काफी ज्यादा बच्चे के लिए, काफी ज्यादा,
4: और 3 से 4 साल की थी, मैक्स टू मैक्स 4 साल की होगी बस, और दुबली पतली सी थी वो, जाके गिरी, और गिरने के बाद में इधर पूरा हड़कंप मच गया, उसके सब चिल्लाने लगे, लेकिन वो गिर करके वो उठ करके वही सड़क पे बैठ गई थी।
5: अरे,
4: और विश्वास करने वाली बात है, उस दिन से मुझे ये बात बिल्कुल, जो जैसे जो स्लोगन है, जाको राखे साइयां मार सके न कोई, उस बच्ची को इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी कुछ खरोच नहीं आई।
5: बताइए कितनी बड़ी बात है, वरना यहाँ मतलब उतने में कुछ भी हो सकता
4: फिसल
5: था।
4: जाओ बाथरूम में फिसल जाओ तो पैर में मोच आ जाता,
5: और क्या कुछ भी हो सकता।
4: ये काफी ऊंचाई पर, और ना उसके सर में कहीं चोट आई ना कुछ, वो गिरी, और जैसे नहीं बच्चे खेल कूद में गिरते हैं और पट से उठ के बैठ जाते हैं, वो रो रही थी कि मतलब उसको लगा कि हम कहीं हवा में उड़ के नीचे आए हैं, बट उसको चोट नहीं लगी। ये कितनी बड़ी बात है। आज उस लड़की की शादी हो गई है, वो अपने घर पे है, और जब भी हम लोग उसको ये बात याद दिलाते हैं कि तुम्हारे नसीब में जीवन लिखा था, इसलिए
5: बिल्कुल
4: तुम इसलिए बची।
5: बिल्कुल मैम, वो कहते हैं ना कि भगवान मतलब ऊपर वाले का जो उनकी शक्ति होती है अपने भक्तों पे, जो कृपा होती है, वो हर उसमें होती है और वो तो बच्ची थी, जैसे कहा जाता है ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो भगवान ने ही बचाया।
4: मतलब आज भी हम लोग कभी मिलती है ना वो आती है अपने घर इधर गुंडा आती है जब, तो मैं उससे जरूर मिलती हूँ, कहती हूँ कि यार तुम्हें वो सीन, अब वो छोटी और हम लोग तो खैर बड़े बड़े थे तो बहुत छोटी थी, तो हम लोग उसको याद दिलाते हैं तो कहती है हाँ दीदी मैं कैसे गिरी थी, मैं कैसे बची, मेरी दादी ने और मेरी बड़ी माँ ने मुझे बताया कि मतलब कहीं खरोच नहीं आया। तो मतलब ये एक इंसिडेंस नहीं है, ये एक उस लाइन पर है जाको राखे साइयां मार सके ना कोई।
5: बिल्कुल।
4: और आज वो बहुत स्वस्थ है, अच्छी है, अपने घर शादी करके चली गई, लेकिन वो यादें जो होती है ना वो आज भी मुझे याद आती है उस बच्ची की।
5: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा बताया आपने। और ये तो वो क्या कहें, मतलब यही है कि हम कह सकते हैं कि किसी का जो नसीब है और जो भगवान की कृपा है वो बिल्कुल ऐसी रहती है। और टेरिस से गिरने वाला मैंने आपको अभी जो अपने लिए बताया लिसनर्स, वो इसलिए लिए बताया क्योंकि मतलब वो आज भी ऊंचाई से, जब मैं ट्रेन पे भी कभी ट्रैवल करती हूँ जाती हूँ, तो जो ट्रेन से जब नीचे उतरते, जब ट्रेन रुकती है तो मतलब लगता है थोड़ा सा फेयर लगता है कि उतरेंगे,
4: उतरने में
5: हाँ फील होता है।
4: तब तुमसे बेटर तो फिर हम है, मतलब आराम से अकेले बैठ के आ जा सकते हैं।
5: नहीं मतलब मुझे और सब चीजों में नहीं होता है, बस वो ट्रेन चलते, अगर आप ये कहो कि हल्की हल्की सी चल रही है और बहुत लोग उतर जाते हैं और मुझसे आपको कि आप
4: चढ़ जाओ
5: या उतर जाओ,
4: मैं ये कर लेती हूँ,
5: तो वो मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ, मेरे लिए वो स्थिर बिल्कुल रुकी हुई।
4: मैं फिर नहीं डरती हूँ, मैंने आज अपने आप पे जीत हासिल कर ली है पूर्ण रूप से।
5: हाँ तो कहने का सेंस बस यही है कि हर किसी के मन में किसी एक खास स्थिति,
4: एक कोई ना कोई फियर होता है।
5: और जिसे हम कहते हैं ना, बड़े बड़े ज्ञान सभी देते हैं कि डर पे जीत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो डर पे जीत होनी चाहिए। आज हम यही आपको बताना चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए आप कैसे कर सकते हैं कि डर पे जीत हो। तो उसको डर पे जिताने के लिए क्या करना है, ये हम चलिए मैम से पूछते हैं कि भाई हमने प्रॉब्लम अभी आपको बताई कि बच्चों के मन में बात बैठ जाती है, अब बताते हैं कि बैठी हुई बात को बाहर क्यों कैसे निकालें, क्योंकि मैम बाहर बहुत अच्छे से निकालती हैं बातों को, नॉट
4: लोगों को,
5: नहीं लोगों को नहीं, बातों को
4: बाहर अच्छे से निकालते हैं ये। नहीं वैसे मैं लोगों को भी निकालती हूँ अंशिका, ऐसी बात नहीं है, बट अपने दिमाग में बैठे हुए लोगों को।
5: जी जी
4: ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है सुरक्षित माहौल दें। भाई देखो, सुरक्षित माहौल देना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो एक मेन होता है वो होता है आपके घर का माहौल, क्योंकि घर के माहौल से ही बच्चे बनते हैं, बिगड़ते हैं, सुधरते हैं और अपनी अच्छी लाइफ को वो लोग बनाते भी हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि अगर बच्चे को भरोसा दिलाएं कि वो आपसे सारी बातें कह सकें। अच्छा ये चीज़ मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ अंशिका
5: जी मैम,
4: कि मैं उन्हें भरोसा दिलाती हूँ और भरोसे में ही वो सारी बातें मेरे सामने वो
5: उगल देते हैं
4: और आप उस पर गुस्सा नहीं करेंगे, ये उन्हें विश्वास होना चाहिए।
5: ओके।
4: तो इससे तो मुझे एक बात और समझ में आती है कि अगर आप बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं ना, तो वो बच्चे कभी भी गलत लाइन में नहीं जाते, कोई गलत काम नहीं करते हैं।
5: बिल्कुल सही कहा आपने।
4: और दूसरा टॉपिक है कि कहानी या खेल को आप का मतलब सपोर्ट लें, आप सहारा लें, ताकि पूछे जाने मतलब सीधे पूछने के बजाय कहानियां या रोल प्ले के जरिए उसके मन की बात जानने की कोशिश करें।
5: इनडायरेक्टली
4: जैसे मैं अंशिका से पूछती हूँ इनडायरेक्टली कभी घुमा फिरा के पूछती हूँ, कभी इनडायरेक्टली पूछती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है कि आप अपनी पॉजिटिव वर्ड्स का प्रयोग करें हमेशा से, नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग ना करें। पॉजिटिव वर्ड्स है कि अभी देखो मैंने एक लाइन बोला था ना, तुमसे ही होगा, तुम ही कर सकती हो, तुम बेटर कर सकती हो, मेरे से बेटर तुम कर सकती हो। जब मुझे कभी मैगी खानी होती है और मेरा मन नहीं होता है ना, तो मैं अपने ट्विंकल को यही कहती हूँ, सुनो तुम सबसे अच्छी बनाती हो, वो सूखी वाली मैगी ना उस बहुत ही अच्छी बनाती हो,
5: मुझसे बेटर बना।
4: देखो मैं तो वो वाली बनाती हूँ मैगी, जो वेजीज वाली होती है ना,
5: जी जी जी।
4: मैं वो बनाती हूँ, बट तुम ना वो जो सूखी वाली होती है ना, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में मिलती है, तुम वैसी बनाती हो, तो तुम जाओ बनाओ यार।
5: ये मैं मम्मी के साथ बहुत करती हूँ,
4: है ना।
5: हाँ मुझे जब
4: नहीं, तो वो लोग भी मेरे साथ फिर खेलती हैं, मुझे पता है, तो लेकिन मैं खेलती हूँ कि मैं कहती हूँ यार तुम लोग ना बहुत अच्छे बनाते हो, प्लीज स्विंकर बना दो, बहुत मजा मन कर रहा है। तो रात में 12 बजे 1 बजे क्योंकि इन लोगों का खान पान जो है वो रात के 10 बजे के बाद शुरू होता है, सुबह 4 बजे तक,
5: और नाइट वाली क्रेविंग बहुत अच्छी होती है,
4: वो क्रेविंग होती है। और रात में ये लोग मुझे भी नहीं सोने देंगे, बोलेंगे चलो अच्छा ठीक है बनाते हैं, फिर मैं कहती हूँ लेकिन एक शर्त में मैगी दूंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, आप बनाना आपको है। अच्छा ठीक है बता दो ठीक है। एक बार ये हुआ ऐसे, हम लोग रात में 1-1.5 बजे मैगी बनाई, पर मैंने नहीं बनाई थी, मैंने कहा तो बना के लाओ फिर खाते हैं आराम से। तो मैंने उसको मक्खन लगाया। तो ये आदत होनी चाहिए कि तुमसे बेटर कोई नहीं है और तुम ही ये बात कर सकते हो। और अगर वो लोग मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये कहना है कि कोई बात नहीं, अगली बार मिलकर इसे बेहतर करेंगे। ये तो पॉइंट खैर हम लोग अपनाते हैं और सभी पेरेंट्स को अपनाना चाहिए। एंड एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए हमेशा से। आप बच्चों की बातों को ना मतलब एकांत होके सुने, एक्टिव होके सुने, सक्रिय होके सुने उन बातों को, कि जब बच्चा अपनी बातें कहे तो मोबाइल छोड़कर उनकी आंखों में आंखें डालकर पूरी बात को बैठ के सुने। और ऐसा करने से आपका बच्चों पर विश्वास बनता है और बच्चों का आप पे विश्वास बनता है,
5: जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे जब भरोसा करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, अरे मुझे ये बात अपने पापा से नहीं बतानी, मुझे मेरे फ्रेंड से बतानी है, क्योंकि बच्चों को होता है कि फ्रेंड सुनेगा समझेगा। हाँ। लेकिन अगर वो आप में ही उस इंसान को पा जाएंगे कि वो मेरी बात सुनेंगे समझेंगे, तो वो घर आकर आपको बताएंगे। जैसे मैं मतलब मैं तो अपनी बात फ्रेंकली कहना चाहती हूँ, और कहने में कोई इसमें वो भी नहीं है कि मुझे जब भी कुछ खुराफाती बताना होता है
4: तो मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ।
5: नहीं, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन है कि मैं पापा को बताती हूँ।
4: ओह गॉड,
5: मेरी और पापा की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे जब कुछ खुराफाती इन द सेंस कि कुछ मस्ती वाला बताना होता है, कुछ सीरियस बताना होता है, मेरे मन में कुछ चल रहा होता है, किसी ने कुछ कह दिया होता है, तो मैं पापा को बताती हूँ कि पापा आज मेरे साथ ये हुआ।
4: तो यानी कल तुमने बताया होगा पापा को?
5: नहीं, मोस्टली सारी बातें नहीं, मतलब जो मुझे लगता है कि मुझे उन्हें बताना चाहिए, मतलब वो हमारे बीच का जो बॉन्ड है, मुझे लगता है कि मुझे अपने पापा से कहना चाहिए, तो वो मैं कहती हूँ। बाकी सारी बात
4: होना चाहिए, किसी ना किसी एक मम्मी से या पापा से अपनी बॉन्डिंग बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये ही एक रिश्ता होता है। जब हम अपनी लाइफ में काफ़ी ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर हम ढूंढते हैं किसी एक के लिए कि हम अपनी सारी मन की बातों को एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो हमारी बात को सुने, समझे और उस पर अच्छा सा एक डिसीजन दे।
5: बिल्कुल।
4: तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, लेकिन अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बेहतरीन, यानी मेरा फेवरेट सॉन्ग। कितनों को पता है कि मैं शाम वाले शो में जब आरजे सिंपल आती हैं तो मैं हमेशा से ये गाना डेडिकेट करती हूँ और सुनती भी हूँ इस प्यारी सी विसलिंग के साथ में। सुनते हैं इस गाने को।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। चलिए चलते हैं फटाक से एक न्यू टॉपिक की ओर, और उसके बाद आएंगे हम आपको मोरल स्टोरी की तरफ ले चलेंगे।
5: बिल्कुल, हमारा नया टॉपिक जो शुरू होता है वो ये शुरू होता है कि आप सब में मुझे बताइए और मैम भी बताएं कि ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने बचपन में अपने मम्मी पापा से अपनी कोई बात मनवाई नहीं होगी।
4: हमेशा मनवाते हैं, आज भी मनवाते हैं।
5: हाँ बिल्कुल। तो कहने का सेंस ये है कि हम अपनी बातें मनवाते हैं, लेकिन कई बार यही बातें आजकल के बच्चों में स्पेशली जिद का रूप ले लेती हैं। इसका मतलब है कि उनको अपनी मांगी हुई चीज चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी कॉस्ट पे चाहिए, लेकिन चाहिए। ये मुझे लगता है कि पहले के बच्चों में नहीं होता था। अगर उन्हें समझा दिया जाता था कि बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे है, तो वो समझ जाते थे कि अच्छा ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं पापा, ठीक है। क्योंकि हम भी ऐसे ही थे, मतलब पापा से मनवाने की कोशिश करते थे, लेकिन अगर पापा नहीं मानते थे तो हम छोड़ देते थे कि चलो अच्छा हटाओ। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं हैं। आजकल के बच्चों के मन में बिल्कुल एक वो बैठ गई है चीज़ कि अगर उन्हें चाहिए तो चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्यों होता है, क्यों बच्चे इतने ज़िद्दी हो जाते हैं। वो इसलिए ज़िद्दी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होगा। यानी कि अगर आपने शुरू से अपने बच्चे की हर एक मांग पूरी की है, तो धीरे धीरे वो ज़िद्दी हो जाते हैं। ज़रूरी है कि समय समय पर हम उनकी कुछ मांगों पर रोक लगाएं। कहने का मतलब ये है कि रोक लगाने का मतलब ये नहीं कि आप उनको जो ज़रूरत चीज़ें हैं वो मत दीजिए, वो दीजिए, लेकिन हर मांग मत पूरी करिए। कई बार हम क्या सोचते हैं कि अरे घर का बच्चा है, अगर हमारे पास है तो चलो जो मांग रहा है वो हम दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों पर आपको रोकना चाहिए कि नहीं, अभी हमने आपको नया परसों ही तो खरीद के दिया था नया, अब आज नहीं मिलेगा। यार बहुत बच्चे मैम ज़िद करते हैं कि मुझे रेस्टोरेंट से पिज्ज़ा खाना है, तो वो ज़िद करते हैं कि डेली पिज्ज़ा खाना है, या हफ्ते में दो दिन, दो तीन दिन। तो आप उनको कहिए कि नहीं बेटा, अभी आपने पिज्जा देखो परसों खाया था, अब आपको इस वीक नहीं मिलेगा, आपको वीक में एक ही बार मिलेगा। तो अगर हम धीरे धीरे उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो उनको भी ये रियलाइज होगा कि हर बार हमारी कही हुई बात से को भी ये रियलाइज होगा कि हर बार हमारी कही हुई बात सिर्फ सिर झुका के मान नहीं ली जाएगी कि अच्छा ठीक है। और मैं बता दूं कि जो माँ बाप अपने बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के साथ इस तरह की करते हैं बातें कि उनकी हर बात मानते हैं, वही बच्चे आगे चलकर धीरे धीरे जिद्दी हो जाते हैं।
4: जिद्दी होने का एक कारण और भी है कि ज्यादा लाड प्यार।
5: हाँ,
4: ज्यादा लाड प्यार भी बच्चों को जिद्दी बनाते हैं। फिर उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरी बात मानेंगे ही मानेंगे, वो चाहे आसमान से तारे क्यों ना तोड़ के दे दें। लेकिन वो ये फिर पेरेंट्स को थोड़ा सा पेरेंटिंग अपनी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बात उनकी मानी जाए। हर बात उनकी मानने मतलब किसी के पास उतना पैसा है नहीं है, पर वो जिद में जो बच्चे भाई देखिए बचपन में तो अगर वो कहेंगे कि मुझे ओरियो बिस्किट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, तो चलो तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होंगे, उनके पेरेंट्स के पास अगर नहीं है और उन्होंने डिमांड कर दी कि बाहर फ्रेंड्स के पास देखते हुए कि मुझे आईफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो कहां से बच्चे उनके पेरेंट्स ला पाएंगे। तो इसीलिए बचपन में अगर आप उनकी आदतों को उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी बड़ी जरूरतों को मना करना भी सीखें।
5: बिल्कुल। और सबसे मेन बात पेरेंट्स की ये होती है कि अगर आपने किसी चीज के लिए ना कह दी है तो वो उस ना पर अडिग रहना है। हम क्या करते हैं कि पहले तो हम कह देते हैं नहीं नहीं मिलेगा, फिर जब बच्चे रोते हैं या बहुत बच्चों में आदत हो जाती है अपनी जिद को पूरी करने के लिए वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग तक पर उतर आते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है आपको मेरी बात नहीं पूरी करनी है तो हम खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरह की चीजों से झुके नहीं, क्योंकि आप सही हैं, तो सही को वो रखिए अपनी बातों को, और धीरे धीरे ऐसे ही बच्चों की जिद दूर हो जाती है। और चलिए चलते हैं अब एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की।
4: टाइम पता नहीं कैसे आज भाग गया, मुझे समझ हाँ नहीं आ रहा है।
5: टाइम तो भाग गया,
4: आज टाइम पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं पता चला है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ले चल रही हूँ उस दिशा में, इस गाने के माध्यम से आऊंगी और बताऊंगी आपको एक मॉरल स्टोरी, जो कि अंशिका से मैंने कहा था मुझे याद दिलाने को, मुझे उसने याद नहीं दिलाया। कौन सी बताओ जरा?
5: मिट्टी और हीरे वाली।
4: मिट्टी और हीरे वाली, ठीक है, मतलब याद, इसको है याद है, चलो माफ किया। तो बस हम इस गाने के बाद तुरंत आएंगे, नो ब्रेक नो एड, क्योंकि जो टाइमिंग है वो बिल्कुल भाग रही है और मुझे स्टोरी सुनाने में समझाने में भी टाइम लगेगा। तो बस हम यू गए यू आए।

0: अच्छा मुझे लगा कि मुझे बुलाया गया है, तो मैं फटाक से दौड़ के आ गई। एंड चलिए फटाफट से मैं सुना देती हूँ अब आपको आज की मॉरल स्टोरी। तो अंशिका से मैंने पहले ही कह दिया था कि अंशिका आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैंने कंपैरिजन किया है पूरा देश में। हाँ जी प्रीति जी कैसी हैं? वास्तव में सीधा सीमा से ज़्यादा अपने बच्चों से लाड प्यार करना घातक सिद्ध होता है। एग्जैक्टली प्रीति जी। तो आइए, एक मॉरल स्टोरी नहीं है ये, एक स्टार्टिंग में मैंने एक बात रखी थी, तो उस बात को मैं अभी बताने जा रही हूँ कि जैसे एक हीरा होता है और मिट्टी होती है। मैंने ये बात क्यों स्टार्टिंग में कही थी कि साथ में बैठने से अंशिका भी अब बहुत ज़्यादा चीज़ें सही होने लगी हैं, करने लगी हैं, और बहुत ज़्यादा बदलाव अंशिका में आया है। तो मैंने पहले ही अंशिका से बोल दिया है कि इसमें कोई गलत मतलब नहीं निकाला अंशिका, मतलब इट मींस कि मैं हीरा नहीं हूँ, आप मिट्टी नहीं हैं, और आप क्या कहते हैं अपने आप को, मतलब कोई भी किसी को ऐसे कमेंट बोला नहीं हो रहा है।
1: जी जी,
0: ये जस्ट समझाने वाला है कि अगर एक आपने सुना होगा कि जो हीरा होता है वो मिट्टी की खान में, कोयले की खान में मिलता है।
1: हाँ
0: ठीक है। तो मैं उन बच्चों को हमेशा से ये एक मोटिवेशन देना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल अंशिका, कि जब कोई सीखने की ललक में होता है ना, और उसका मेंटोर अच्छा होता है, आई मीन मेंटोर, मेंटोर लाइक मी,
1: यस,
0: क्योंकि ओनली ऑन क्रेडिट गोज टू मी,
1: यस,
0: मतलब मैं अपने आप को लेती हूँ, मैं अपनी कॉलर ऊपर करती हूँ इसके लिए।
1: जी,
0: ये भले ना मुझे क्रेडिट दे, बट मैं इस चीज का क्रेडिट लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर सोने के साथ हीरे के साथ में अगर मिट्टी भी साथ में होना, तो वो भी हीरे की चमक में वैसा ही हीरा बन जाता है।
1: ओ वाह, तो ये तो बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव बात है, मतलब इसको मैं अपने लिए पॉजिटिविटी की तरह लूंगी।
0: हाँ,
1: कि चेंज हुआ है और चेंज होना भी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं ना कि आप किसी से सीखने के लिए,
0: यहाँ सिर्फ चेंज होने की बात नहीं है, बदलाव की बात है, और बहुत बड़े बदलाव की बात है। तो वो बदलाव अंशिका में आया है, एंड आई होप सो कि ये जब तक यहाँ पर है ये बदलाव ऐसे ही कायम रहे। मेरी बात को समझे, क्योंकि जो हीरे की जो एक्चुअली वाली चमक होती है ना, वो जब खुद पे पड़ती है तो जीवन के साथ साथ अपना बिहेवियर, अपना लाइफस्टाइल, अपना सब कुछ चेंज होता है।
1: जी मैम,
0: समझ में आया?
1: समझ में आया।
0: कितना समझ में आया?
1: 60%।
0: चलते मेरे
1: याद रखना, कभी अलविदा ना कहना।
0: चलिए तो हम आपसे लेते हैं टेक केयर, बाय बाय। गर्मियां बहुत है और आज बड़े मंगल के भंडारे जगह जगह लगे हुए हैं, एंजॉय करिए और हमें दे इजाजत। हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
1: बाय।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला।

0: smart class and digital class board, convenience facilities, scout guide, events, project and educational tour.
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त. एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस अकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा. संपर्क करें 9450944999.
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं. कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके. आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण. याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं. स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान. टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं.
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो.
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज.
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है.
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ. संपर्क करें 0522-2711-827.
7: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
8: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन.
7: और जेंट्स के लिए,
8: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह.
7: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा. और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा.
8: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006. कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान.
9: अरे सुना?
10: क्या?
9: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट.
10: वाओ!
9: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो. एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12. गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है. पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546.
11: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान.
10: मतलब?
11: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना.
8: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें. जरूर याद रखें 14416. जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी. मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर.
12: श्रोताओं, वक्त हो चला है आपके फोनी फरमाइशी कार्यक्रम का और घड़ी की सुइयों की बात करें तो 3:06 यानी के ये आपके शो का टाइम है और शो का नाम है फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा, जो लेके आ गई है आपके अपने होस्ट हैं दोस्त आज आकांक्षा. आज है ट्रैकी वाला ट्यूसडे और ट्यूसडे में इतनी सारी डिमांड्स आ चुकी है, लगातार आपकी कॉल अभी भी मेरी आंखों के सामने आ रही है पर मैं उठा नहीं सकती क्योंकि मैं लिंक पे हूं. थोड़ी देर बाद कोशिश कर लीजिएगा. फिलहाल अगर आप भी अपनी डिमांड्स को ट्यून करवाना चाहते हो, अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बेशक भेजिए आपके स्टूडियो के नंबर पर. आपने ट्यून करके रखा रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और स्टूडियो का नंबर वही है 6393316429. फिलहाल आज की सबसे पहली डिमांड लेंगे हम अपने प्यारे राम भवन जी की, जो हमें सुनते हैं. बबनान गोंडा से लंगर आज भी लगा हुआ है, कौन कौन खा रहा है, किधर किधर लगा है, जरा हमको हालचाल बताएं और पता बताएं. वैसे हम आने वाले नहीं है लेकिन अपने श्रोताओं तक पहुंचा देंगे कि भैया जिसको खाना हो वहां तक जा सकता है. एंजॉय करिए इस ट्रैक को, आते हैं नेक्स्ट ट्रैक के साथ.

और हाँ, देखते ही देखते अभी मेरा ध्यान गया कि भाई मैं कॉल्स ही लेती रह गई, गाना तो ज्यादा बज गया। कोई बात नहीं, पहला सॉन्ग था तो थोड़ा ज्यादा एंजॉय कर लिया आपने, ये अच्छी बात है। और ये डिमांड थी हमारे राम भवन जी की, जो हमें सुनते हैं बबनान गोंडा से। और अब चलते हैं पंडित जी की डिमांड की ओर, और फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम अब्दुल मुजीम साहब की। देन होंगे हमारे अमित जी, देव प्रसाद जी, रमेश कुमार जी महाराष्ट्र से, मोनू जी होंगे रेलवे क्रॉसिंग से, और चांद टेलर जी जो हमें सुनने हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये गौरा चौकी से हमें सुनना है। फिलहाल एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड ले करके आप सभी की। और मेरे पास में नेक्स्ट कॉल भी आ गई है, ये गाना एंजॉय करिए, हम नेक्स्ट कॉल लेते हैं।

जी हाँ, और इस तरह से आपने अभी एक रैप को एंजॉय किया है दीनू जेम्स की आवाज में। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि ये रैप की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाते हैं। बड़ा ही अच्छा सा रैप था और सच्चाई थी आज के दौर की कहीं ना कहीं। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में अब्दुल मुजीम साहब की, जो हमें सुनते हैं अहमदाबाद से। आइए सुनते हैं इस कलाम को, और उसके बाद आते हैं अमित जी की डिमांड के साथ में। 3 से 4 के सफर में आप एंजॉय करें आपके अपने शो कॉलर ट्यून गुंडा को। मैं हूँ आपके होस्ट एंड दोस्त आर्जा कांक्षा।

अच्छा इस शो में मुझे एक चीज जरूर फील होती है, या तो मतलब आप एक ही बैलेंस पे क्रिए मतलब टिके रहते हो, या फिर आप कभी जिक में होते हो कभी जैक में होते हो, यानी कि कभी सैड सॉन्ग होता है कभी थोड़ी सी स्मूदी सॉन्ग होते हैं कभी हाई बीट, और वही फील अभी आपको इस गाने के उस पार मिलेगा। बहुत प्यारी सी डिमांड है भाई अमित जी की, थैंक यू सो मच।

और ओल्ड वर्जन वाला सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया। बड़ी ही सूदी सी आवाज थी और आवाज आप लोगों को पता है किसकी थी, लता जी की थी। जी हाँ, लता मंगेशकर जी की और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये सॉन्ग था। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर डिमांड की ओर और ये डिमांड हमारे अमित कुमार जी की है। गाना है गोपी किशन मूवीज से 90s हिट्स में से, बड़ी प्यारी सी डिमांड है भाई, मैं तो एंजॉय करने वाली हूँ, उम्मीद है आप भी उतना ही करेंगे जितना मैं करने वाली हूँ। और ये गाना मैं डेडिकेट करूंगी अपनी नीना जी को यानी चंगू जी को।

हाँ जी, और 98 से अभी हमने अमित कुमार जी की इस प्यारी सी डिमांड को एंजॉय किया है, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है देवी प्रसाद जी की, इंडिया वाले देवी प्रसाद जी की, और बड़े दिनों बाद आज हम फाइनली इनकी डिमांड को कंप्लीट करने वाले हैं इनकी पसंद से। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

भाई तारीफ के कोई पुल बांधना सीखे तो हमारे रवि तक्षक जी से सीखे, जिनका पेन नेम है अल्पज्ञ। तो भाई सुन लीजिए इन्होंने क्या लिखा है हमारी तारीफ में, बड़ा अच्छा लगा हमें पढ़ के। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी, वेलकम करना चाहूंगी आपके अपने शो कॉलेज गुना में। लिखते हैं, है आई रस भरी आवाज ये आकांक्षा है, ओके बहे वाणी धारा प्रवाह ये आकांक्षा है, शुक्रिया। रहे चाहत सदा जिन सरों की कर्णों को, ओ माय गॉड, रहे चाहत सदा जिन सरों की कर्णों को, अरे भाई यही तो आरजे आकांक्षा है। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। एक प्यारी सी पंक्ति आपने हम तक पहुँचाई, प्यारी सी एक ही नहीं है, चार पंक्तियाँ हैं, और उससे हमारे चेहरे पे प्यार भरी मुस्कुराहट आई। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली वाला मैसेज अल्पज्ञ साहब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सॉन्ग की ओर। वैसे सर मुझे आपका सॉन्ग समझ नहीं आ रहा है।

और ये डिमांड है हमारे रमेश कुमार जी की, तो मैं चाहूंगी कि आप एक दफा अगर मुझे कॉल करके अपने सॉन्ग को फिर से कंफर्मेशन करा देंगे तो मैं आपके गाने को जरूर प्ले करूंगी। उससे पहले मैं प्ले करती हूँ मोनू जी के सॉन्ग को, और मोनू जी का सॉन्ग आप तक पहुंचाते हैं। रेलवे क्रॉसिंग से ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है, और इसके बाद हम आएंगे चैट बॉक्स की ओर। लेकिन उससे पहले चाहेंगे रमेश कुमार जी महाराष्ट्र से जो हमें सुनते हैं, अगर आप तक हमारी आवाज़ आ रही है प्लीज अपनी कॉल दोबारा से मिला लें ताकि आपका सॉन्ग हम कन्फर्म कर सकें। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को मोनू जी की डिमांड पे।

श्रोताओं और रमेश कुमार जी ने कॉल करके अपने गाने को सही करा दिया है, तो ये डिमांड हमारे रमेश जी की है। उसके बाद में हम आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के अपने रवि तक्षक जी की, और उसके बाद में आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेकर के मनी जी की, फिर होंगे हमारे शहनवाज जी अहमदाबाद से, अजीत साहब होंगे मुंबई से। अपने अपनी बारी का इंतजार करिए। और राकेश शर्मा जी की तो आज खास वाली डिमांड में लग रही है, क्योंकि दामिनी मूवी के सारे गाने एक से बढ़ के एक हैं।

पहले की बकथा से फिसल जाए रेत की तरह, हर दिन की तरह आज भी बहुत सारी डिमांड आई हुई है, मैसेजेस भी आए हैं, तो चलिए पहले मैसेजेस ले लेते हैं फिर चलेंगे डिमांड्स की ओर। और सबसे पहला मैसेज लेना चाहूंगी रीना शर्मा जी का, जो हमें लगातार सुन रही है रुड़की उत्तराखंड से, और हमारे साथ में जी हाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रेम मौर्या जी भी जुड़ चुके हैं। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, इन्होंने भी बोल दिया है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं जनाब। और नेक्स्ट मैसेज की ओर बढ़ते हैं, तो चैट बॉक्स में हमें मुस्तफ़ा जी दिख रहे हैं सऊदी अरबिया से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कल्लू तिवारी जी हैं, आपका भी स्वागत है। राम भवन जी हैं बबनान गोंडा से, प्रबल मिश्रा जी पंडित जी हैं, मिश्रा ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी हैं, तान्या जी हैं गोंडा से, रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी हैं, और आपका भी स्वागत है सर। और कल मैंने आपका सैड सॉन्ग बजाया था, आपने सुना था या नहीं, मेरे को बस इतना फीडबैक दे दीजिएगा रामकृष्ण जी। और नीना जी हैं, यानी कि हमारी चंगू जी हैं, मंगू जी दिखाई नहीं दे रही, खैर कोई बात नहीं। और सचिन शुक्ला जी हैं भाई, जो मैं दिल्ली से सुनते हैं, ग्रेट डिमांड इन्होंने बोला, थैंक यू सो मच। इसके अलावा मोहम्मद चांद जी हैं हथियागढ़ से, ओके। और इसके अलावा अब्दुल मुजीम साहब भी हमारे साथ में बने हुए, ममता कसौधन जी भी हैं, और इनकी कल की डिमांड अभी तक हमारे पास में पेंडिंग पड़ी हुई है। चलिए आपकी डिमांड भी लगा देते हैं, और कुछ गानों के बाद आपकी डिमांड होगी, और उसके बाद में नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो आप लोगों के फीडबैक्स हैं जो लगातार हम तक पहुंचे हैं। कोई पत्थर जी भी आए हुए हैं भाई, अपने असली नाम से आया करें प्लीज, ताकि आपका नाम हम पढ़ सकें, हमें अच्छा लगेगा। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं है, ये डिमांड हमारे पास में मोहम्मद चांद जी की है, यानी कि चांद टेलर साहब की। आइए इसको एंजॉय करते हैं और फिर आते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ में, जो होगी मनी शर्मा जी की, नहीं जी रवि जी की, या मनी जी की, किसकी है देखते हैं, चेक करना पड़ेगा। तब तक एंजॉय करिए इस गाने को।

वक्त हो गया है नेक्स्ट डिमांड का और 3 से 4 के सफर में आप एंजॉय करें आपके अपने शो कॉलर ट्यून गोंडा को विद राज आकांक्षा। और ये नेक्स्ट डिमांड किसी और की नहीं, हमारे प्यारे खलनायक जी यानी के मनीष शर्मा जी की। इनका ऐसा कहना, मेरा तो नहीं कहना, ये खुद ही मान रहे हैं। चलिए आप डिमांड सुन लीजिए और खुद ही जान लीजिए इस गाने के माध्यम से।

हंसूं या गाना सुनाऊं या आप लोगों को हंस के सुनाऊं? वाओ व्हाट अ सॉन्ग, और प्रेम मौर्या जी ने भाई बता दिया, वाह क्या सॉन्ग है भाई, महफिल जम गई। थैंक यू सो मच नीना जी, आप क्या चाहती, मैं चक चक चक चक चलती ही रहूं और गाने ना बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे बहुत हंसी हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर

भाई बहुत ही सही सॉन्ग था और काफी सारे फीडबैक आए हैं इस गाने को लेकर। वैसे ये गाने से ज्यादा बेहतर ये मूवी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है जरूर देखिएगा। मैंने भी नहीं देखी है, बस तारीफ ही सुनी अपने दोस्तों से। मैंने कहा भाई मेरे को खलनायक बनने का कोई शौक नहीं है, उन लोगों ने कहा नहीं आप नायक बन जाओगे, हमने कहा नहीं मैं पहले से हूँ और नहीं बनना है। तो फिलहाल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं, रवि तक्षक जी की आई हुई हमारे पास में। और चलिए फिर सुनते हैं ये क्या सुनना चाहते हैं, फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेके हम शहनवाज जी की और अजीत साहब की, फिर होंगे हमारे राकेश वर्मा जी जो हमें बगल से सुनते हैं, यानी दुखरन्नास से सुनते हैं।

आप एंजॉय कर रहे हैं रवि तक्षक जी की इस डिमांड को। बड़ी प्यारी सी डिमांड है 90s हिट्स में से एक रोमांटिक सॉन्ग। लेकिन आपको बता दूं, जब इसमें ये वाला लाइन बजता है, तुझे दिल दे दिया मेरा दिल ले लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कोई खिलौना मांग रहा है, दो बच्चे खेल रहे हैं, दे दिया ले लिया, बड़ा अच्छा फील आता है भाई। थैंक यू सो मच इस प्यारी सी डिमांड के लिए। कुमार टेलर साहब भी जुड़ चुके हैं गौरा चौकी से, जमाता दी आपको भी।

भी फील हुआ ना, दे दिया ले लिया। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट साइड डिमांड की ओर, और ये डिमांड है शहनवाज जी की, और घड़ी की सुइयां बता रही 3:40 हो चुके हैं, शेष 20 मिनट मात्र है मेरे पास में, और रफ्तार को तेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ, जो कि है शहनवाज जी की अहमदाबाद से, और उसके बाद नेक्स्ट डिमांड अजीत साहब की, उसके बाद राकेश वर्मा जी के सॉन्ग में हम ऐड करेंगे रीना शर्मा जी को। उम्मीद है रीना जी आपको वो सॉन्ग पसंद आएगा, क्योंकि वो मेरी ही पसंद का सॉन्ग है भाई। राकेश जी ने हमसे कहा कि दामिनी मूवी से आप अपनी पसंद का कोई सॉन्ग बजा दीजिए। फिलहाल ये गाना भी बहुत प्यारा है, एंजॉय करिए।

जी और बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी अभी जो आपने एंजॉय की शहनवाज जी की। और अब चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे अजीत साहब की जो हमें मुंबई से सुनते हैं। चलिए प्रेम रोग मूवी की ओर रुख करते हैं और सुनते हैं उसी मूवी से ये गाना।

श्रोताओं, इस डिमांड के बाद रमेश वर्मा जी होंगे और उसी गाने में मैं ऐड करूंगी अपनी रीना शर्मा जी को रुड़की उत्तराखंड से। फिर होंगी हमारी काजल जी, रमेश जी नहीं, राम नरेश जी और क्षमा जी की डिमांड, मतलब तीनों की डिमांड एक होगी। और उसके बाद होंगे अजय मिश्रा जी और रई साहब, दोनों का सेम टेस्ट है इसलिए मुझे लगता है गाना फिट बैठेगा। और नेक्स्ट डिमांड लेके आएंगे हम भूपेंद्र जी की और उसके बाद ममता कसौधन जी, आपकी बारी, एंजॉय करते रहिए।

जी हाँ, ये डिमांड आपने एंजॉय किया जी साहब के डिमांड पे ही जो हमें मुंबई से सुनते हैं। और अब बारी हमारे राकेश वर्मा जी के सॉन्ग की, और उत्तराखंड से सुनने वाली हमारी प्यारी लिसनर यानी कि रीना शर्मा जी, मैं आपसे फीडबैक चाहूंगी, आपके लिए भी सेम सॉन्ग है, एंजॉय करिए 3 से 4 के सफर को यानी कि कॉलर ट्यून गुंडा को। गुलाब चांद सारी जी जो हमें सीतापुर से सुनती हैं वो भी दस्तक दे चुकी हैं चैट बॉक्स में, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं भाई 3:46 शेष हमारे पास 14 मिनट, देखते हैं कौन कौन होता है आज रेस से बाहर और किसकी डिमांड होती है कम्प्लीट।

शुक्रिया सनू शुक्ला जी का भी स्वागत करते हैं। ये गाना आपने एंजॉय किया है राकेश वर्मा जी की डिमांड पे, और इसमें हमने ऐड किया था रीना शर्मा जी को। हमारे कुछ होशियार लिसनर हैं जिनको पता है कि भाई बजेगा तो है नहीं, तो आप अपने मन से मैडम जी जो आपको सही लगे बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारी काजल जी, राम नरेश तिवारी जी और क्षमा जी की डिमांड पे। और इनका कहना है हमारे राम नरेश जी का, भाई मलमास चल रहा है तो कुछ भक्तिमय गीत हो जाए। तो चलिए काजल जी की डिमांड और आपकी डिमांड सेम कर देते हैं, और क्षमा जी के मन को प्रसन्न करते हैं इस गाने के माध्यम से।

एक भक्ति में बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आप अभी एंजॉय कर रहे हैं, माता रानी की भेंट। और हमारे बीच में मौजूद है भाई सनु शुक्ला जी, बड़े खुश हैं आज, इनका कहना है तो भाई लड्डू बांटिए। वैसे कल मुझे किसी ने 2 किलो लड्डू दिए थे, बहुत बहुत शुक्रिया उनको, भगवान उनकी तरक्की पे तरक्की करते जाए। नेहा जी आ गई है, यानी मंगू जी आ गई है बहराइच से, आपका भी इस्तकबाल है मैडम। और ये बताइए इतनी लेट कैसे आई, वैसे आ गई उतना ही काफी।

बिल्कुल भाई, हम भी माता काली के भक्त हैं और कहते हैं काली जी उन्हीं को अपना भक्त बनाती हैं। कम से कम 100 साल जिसने जन्म लिया, मतलब वो जिसको चाहती वही उनका भक्त होता है, अन्यथा कोई उनका भक्त नहीं हो सकता है। तो भाई मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली खुद को मानती हूँ। थैंक यू सो मच माता काली। और हाँ जी, दो लोगों को हमने चैट बॉक्स में बुला लिया इस गाने के माध्यम से। दो छुपे हमारे प्यारे लिसनर हमें सुन रहे थे, यानी कि सुरेंद्र यादव जी आज के गौरा चौकी से, कमल नैन जी ने भी दस्तक दे दी है। भाई माँ बुलाए और कोई आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बढ़ते फटाफट से नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। ये डिमांड हमारे पास में रईस साहब की और साथ ही साथ में अजय जी की, जो हमें सुनते हैं मिस्टर ऑप्टिकल से, और दोनों का टेस्ट सेम है, इसलिए मुझे लगता है कि ये गाना फिट बैठेगा। एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

बात है भाई, मजा आ गया। क्रेजी किया रे हो, क्रेजी किया रे। अब बढ़ते हैं भूपेंद्र जी की डिमांड की ओर, जो हमें सुनते हैं आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से। और मुझे लगता है अगर नागेश्वर जी होते तो आज अपनी रूपा जी को जरूर इस गाने के माध्यम से ढूंढ पाते। खैर कोई बात नहीं, एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

साहब भी आ गए भाई एमपी रीवा से, लास्ट 5 मिनट पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए, मुझे मालूम है ये अपने माइंड को फ्रेश कर लेंगे 5 मिनट में। भाई कुछ लोग होते हैं जो 5 मिनट में अपना दिमाग सही कर लेते हैं, और भाई लास्ट टाइम पे हमको कॉल आ रही है, डिमांड आज रह जाएगी, फिर भी कोई बात नहीं, एंजॉय करिए।

म्यूजिक की डिमांड पे आपने एंजॉय किया मेला का टाइटल ट्रैक। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, ममता कसौधन जी की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। पर आज की लास्ट डिमांड लेंगे भाई, हमने प्लेलिस्ट तो कर रखी है दो चार और नगमों को, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें कह रही हैं कि भाई बस एक गाना लो उसके बाद दूसरा और बजा पाओगे, उसके बाद नहीं हो पाएगा। जैसे कल मैंने मोहिनी जी के सॉन्ग को प्लेलिस्ट तो कर रखा था, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं उसे प्ले नहीं कर पाई थी। फिलहाल एंजॉय करते हैं ममता जी की इस प्यारी सी डिमांड को।

हाँ, बहुत ही प्यारी सी डिमांड थी हमारी ममता कसौधन जी की, भाई बड़ा ही प्यारा लगे हमें। और क्या बताएं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना, उनकी हर एक बात पे हंसी आ जाती है। फिलहाल अब लेंगे आप सभी से इजाजत और लास्ट डिमांड को ट्यून करते हुए जाएंगे। तो भाई कल जिनका हमने प्लेलिस्ट कर रखा था और गाना नहीं बजा पाए थे, उन्हीं की आज लास्ट डिमांड होगी। यानी कि हमारे पास में आज की लास्ट डिमांड है हमारी प्यारी मोहिनी तिवारी जी की। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को फ्रॉम द मूवी हेलो ब्रदर। हाँ जी, और इसी के साथ में बताते हैं भाई एहसान जी आपकी नेक्स्ट डिमांड थी, लेकिन वक्त की कमी के कारण मैं इसको नहीं ट्यून कर पाऊंगी। और जिन जिन की डिमांड छूट गई है उनके नाम ले लेती हूँ। एहसान जी हैं, रेनू तिवारी जी हैं, निब्बर जी हैं, और इसके अलावा अगर मैं देखती हूँ तो मेरे पास में डिमांड छूटी है रीत लाल जी की और राजू सलमानी जी की, और साथ ही साथ में मुमताज़ अंसारी जी हैं, मुस्तफ़ा जी हैं और नीना जी हैं। इतनी सारी डिमांड आज रह गई हैं, माफ़ी चाहूँगी क्योंकि घंटा एक ही होता है ना जनाब, क्या कर सकते हैं। एंजॉय करते रहिए रेडियो गाना सिटी 91.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मिलता है शाम के शो में, जी हाँ, गोंडा मैसेज मसाला में। तब तक एंजॉय करिए इस प्यारी से गाने को।

0: घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
2: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
2: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
1: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
0: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
1: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
0: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
1: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
0: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। और आपके साथ मौजूद है आपके अपने आरजे बिना, आपके शो विज्ञान शाला लर्निंग बियॉन्ड क्यूरोसिटी, यानी कि क्यूरोसिटी के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं विज्ञानशाला में। और विज्ञानशाला की बात अगर करूं तो सबसे पहले तो मुझे याद आ जाता है अभी हाल ही में बीता आपका और हमारा फेवरेट डे, यानी कि अर्थ डे, हमारी अर्थ डे यानी कि मदर अर्थ डे, जितने भी नाम लूँ उतने कम है। और इस डे को लेके बहुत सारी जगह अलग अलग काम किएगा। हम सब ने भी पेड़ पौधे तो लगाए ही होंगे, लेकिन पेड़ पौधे लगा देने मात्र से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। समस्या का समाधान तब होगा जब हम समस्या ना बनाएं, यानी कि समस्या सबसे बड़ी है पृथ्वी के लिए प्लास्टिक और पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन

ये तो हम बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं, व्हीकल कम कर रहे हैं, व्हीकलों को हम ईंधन के रूप में ना चला, ईंधन से ना चला करके हम इसे सोलर पैनल्स यानी कि सोलर ऊर्जा से चलाएंगे, सोलर एनर्जी से चलाएंगे, तो पोल्यूशन जो है वो कम होगा। तो ये तो पोल्यूशन की बात होगी। और क्या है जो हमारी मदर अर्थ को प्रभावित कर रही है, और क्या है जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है, वो है प्लास्टिक। और प्लास्टिक को लेके मैं अगर अपने गोंडा शहर की बात करूँ तो बहुत सारे विद्यालयों में, जैसे स्पेसिफिकली मैं सेंट जेवियर स्कूल की बात करूँगी, उस स्कूल में मैंने देखा कि बच्चे जो हैं इको ब्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं खर्चा करके बनाते हैं, उन्हें जहाँ भी कहीं प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई मिल जाती है वो उससे इको ब्रिक्स बनाते हैं। बहुत बढ़िया, वहाँ के मतलब जो भी टीचर्स हैं, मैनेजमेंट है, उन सभी ने एक अच्छी सोच को जागृत किया। और मैंने सोचा आप लोग को भी बताती हूँ कि आपके भी घर में अगर बोतलें आ रही हैं तो उसको इधर उधर ना फेंके। और इसी के साथ अब ब्रिक्स बनेंगी कैसे, आप सोचेंगे जब सीमेंट यूज ही कर लिया, मिट्टी यूज ही कर ली, तो ब्रिक्स कैसे बनी? नहीं, बाद मजबूती की आ जाती है ना, तो ब्रिक मतलब मजबूत होनी चाहिए। तो उसे मजबूत करने के लिए देखिए प्लास्टिक को प्लास्टिक से ही मजबूत किया जा रहा है। आपके घर में चिप्स के रैपर, पैक्ड मटेरियल तो आता ही है, आजकल तो दालें वगैरह भी प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक होके आती हैं, मतलब एकदम एयर टाइट। तो उन प्लास्टिक की पन्नियों को आपको इकट्ठा करना है और उसको बारीक बारीक मतलब सीजर से काटना है। जैसे घर में आप फ्री बैठे हैं तो थोड़ा सा काटिए, अगर हम दिन में 15 मिनट भी निकालें अपनी मदर अर्थ के लिए तो बहुत होगा। उसको बारीक बारीक काटना है और काट के उस बोतल में भर देना है, और बोतल में तब तक भरना है जब तक बोतल एकदम टाइट ना हो जाए, एयर टाइट मतलब फुल, कि अब जगह नहीं है सांस लेने की, तो उसको फिर ढक्कन लगा के बंद कर देना है। ऐसे करके कई सारी आप बोतलें बना लेंगे। और जब भी कहीं घर बन रहा है या कुछ बन रहा है, मान लीजिए घर के बाहर आपको पायदान बनवाना है, तो ईंटों की जगह उनका यूज़ करके सीमेंट में उन्हें जमवा सकते हैं। ब्रिक तो ईंट तो टूट भी सकती है कुछ भारी चीज़, ये ना टूटेगी ना कुछ होगा, बल्कि मजबूती की मजबूती, और प्रदूषण से हम बचेंगे। और ऐसा तो है ही, जोड़ना बनाना बिगाड़ना तो लगा ही रहता है हमारे घर में। गार्डन में हम लोग देखिए ईंटों की वो बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं, क्यारी को ईंटों की जगह बनाने के हम प्लास्टिक इन बोतलों से क्यारी बना सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। अब देखिए अब बात करेंगे कि जो हमारे हाल ही में हो रहे सर्वेक्षण है उनमें क्या बात हो रही है, तो आज बात करूंगी इसके बारे में भी। और बहुत सारे पहलू मैं आज आप लोग के साथ चर्चा करने के लिए लाई हूँ, मतलब बहुत सारी बातें। कहते ना कि विज्ञानशाला में आके जो लर्निंग है वो क्यूरोसिटी को भी और बढ़ा देती, जितनी क्यूरोसिटी के साथ हम लोग आते हैं उस क्यूरोसिटी में भी इंटू 100 हम करके तब जाते हैं कि अगली बार ये चीज़ें बात होंगी। तो जैसा कि हमने मदर अर्थ डे 22 को सेलिब्रेट किया, आज बात भी हो रही है थोड़ी बहुत, और बात के साथ साथ हम लोग देखिए चर्चा कर रहे हैं आज। स्पेसिफिकली मलेरिया डे भी था, वर्ल्ड मलेरिया डे अभी जल्दी गया है 25 तारीख को। और इसी के साथ मैं आज एक देश की खास चीज़ को लेके आई हूँ कि आयुष्मान दिवस क्या होता है, ये भी बताना है मुझे आप लोग को। तो बहुत सारी बातें होंगी, तो आज जुड़े रहिएगा इन सारी बातों को सुनने के लिए। और सबसे पहले हम लोग एक गाना सुनते हैं, और गाना सुनने के बाद आप लोगों से बात करते हैं आगे किस लेवल पे हमारी ग्लोबल वार्मिंग पहुंच रही है और पृथ्वी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: तो वापस से आप सभी का स्वागत है विज्ञान शाला में, लर्निंग बियॉन्ड क्यूरोसिटी। और जब क्यूरोसिटी की बात होती है तो हम लोग की जो जिज्ञासा है ना, वो कहीं दूर पहुंच जाती है कि अब और क्या जानेंगे, अब और क्या सीखेंगे और क्या क्या हम इस दुनिया को बताएंगे। तो जब दुनिया को बताने की बात होती है तो जब पृथ्वी के लिए हम सोचते हैं तो दुनिया क्या, हर इंसान एक कश्मकश में आ जाता है कि आने वाले समय में पृथ्वी की उम्र कितनी बची है, क्या पृथ्वी हमारे आने वाले जनरेशन्स को अपना वही प्यार देगी जो उसने हमें दिया है। और देखिए, बढ़ती हीट वेव का भी कारण कहीं ना कहीं पृथ्वी को पहुंचता नुकसान है। देखिए हमारी माँ को अगर नुकसान पहुँचेगा, मतलब हमारी पृथ्वी माँ को नुकसान पहुँचेगा, तो इंसान तो परेशान होता ही जाएगा। और गर्मी के मौसम में बहुत सारी मौतें शरीर में पानी कमी होने की वजह से हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं और उन कारणों को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। और सच्ची बताऊँ ना, मतलब दिल दहल जाता है सोच सोच के कि कैसे कैसे कैसे हम अपनी पृथ्वी को आने वाले समय में बचाएंगे। मन तो करता है पृथ्वी को एक चादर पहना दूं और आती धूप की किरणों से और आने वाले जितने भी मतलब परेशानियां उन सबसे बचा लूं, लेकिन क्या करें, हमारी जो विज्ञान है वो भी इसमें कुछ नहीं कर रही है। और हम तो इतना तक सोच रहे हैं कि धरती के साथ साथ और भी हम प्लैनेट्स पे अपने जीवन के लिए सोचें, क्योंकि धरती पे जब भार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी बढ़ेगी ना। तो सारी चीज़ें सोचते हुए विज्ञान भी बहुत कोशिशें कर रहा है पृथ्वी को बचाने की, और हम भी इस कोशिश में लगातार योगदान दे रहे हैं। और इस योगदान में हम ही नहीं, और आने वाले समय में भी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, चाहे वो जलवायु हो, मौसम हो और पृथ्वी का बदलता मौसम है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी यहाँ के जलवायु की, कैसे पृथ्वी को जलवायु प्रभावित कर रही है। और सबसे खास बात यह है कि यमन का नाम तो आपने सुना ही होगा। यमन के लाल सागर के तट पर बसे कॉफी के व्यापार में एक मशहूर मोचा शहर नाम का जो है वो मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में बह के चला गया। कहते हैं वहाँ मोचा नाम का जो चक्रवात आया था उसने सब कुछ बहा दिया था। और ये एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। इसी के साथ हमारे यहाँ भी आए दिन कभी कोई बाढ़ का केस बिहार में सुनने को मिल जाता है, कभी हुदहुद नाम के तूफान आ जाते हैं और तहलका मचा देते हैं, तितली, ना जाने कितने तूफानों के बारे में हम लोग भी जानते हैं। और जब बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, तो उसमें जितने भी सदस्य हैं उन सभी ने 2020 में ही स्वीकार किया है कि पृथ्वी को आने वाले समय में समस्याएं बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ेंगी। और ये समस्याएं आगे बढ़ते तापमान की वजह से हो सकती हैं, बदलते जलवायु की वजह से हो सकती हैं। तो अब मैं बात करूंगी, संयुक्त राष्ट्र जो कि आपदा न्यूनीकरण एजेंसी चलाते हैं, उन्होंने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से चक्रवाती तूफान को लेके बहुत सारी चीज़ें पहले भी बता रखी हैं। लेकिन क्या सिर्फ बात चक्रवात पे रुकती है? नहीं, सूखा, बाढ़, ये सारे ड्रॉबैक्स हैं हमारे पृथ्वी के परेशान होने के बाद। तो आपको क्या लगता है कि पृथ्वी का बदलता ये रूप, इसके जिम्मेदार कौन है? हम सब, एवरीवन, जितने भी लोग हम सब सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, वो जो इस दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, सब सब सब सब रिस्पॉन्सिबल हैं, सिवाय बेजुबान जानवरों के। उन्होंने कभी पृथ्वी को क्षति तो नहीं एटलीस्ट पहुंचाई। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों, शेर तो जानवरों को खाता है? नहीं, वो एक फूड चेन को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, और ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे आने वाले समय में जो ग्रीष्म ऋतु है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगी। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण जो है उसका दर बढ़ चुका है। इससे वातावरण में नमी की मात्रा की वृद्धि हुई है, और भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा की जो है वो तीव्रता से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर मैं बात करूं, कई स्थानों पर चरम वर्षा की घटनाओं की वृद्धि हो सकती है, और कहीं कहीं तो सूखा मालूम पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि कैसे हम बचा सकते हैं अपने ग्रह को। तो पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक से अपनी पृथ्वी को बचाएं, और आने वाले समय में जितने भी लोग हैं जिनसे कि उम्मीदें की जाती हैं, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मतलब लैंड एरिया। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लैंड एरियाज हैं जहाँ पे हम पेड़ लगा के अपने देश को, अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। और अगर मैं गर्मी के मौसम की बात करूं तो हीट वेव के लिए भाई सबसे बड़ा कारण जो है ये वायुमंडल में बदलती ऊष्मा की किरणें, जो कि तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आ रही हैं और पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ा रही हैं। और इसके पीछे कारण है हमारा बढ़ता हुआ प्रदूषण, पेड़ पौधों की कमी, जो कि सूरज की किरणों को काफ़ी हद तक यूज़ कर लेती थी, यूटिलाइज़ कर लेती थी और धरती को गर्म नहीं होने देती थी। तो धरती की जो ऊष्मा है वो तो बढ़ेगी जब पेड़ नहीं होंगे इन वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो पेड़ लगाइए, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करिए, प्रदूषण कम करिए। और देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि पृथ्वी को बचाना है, ना कि सिर्फ चलाना है। आप लोग सिर्फ, मतलब मैं कहूँगी कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए परेशान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस को चलाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पृथ्वी को बचाना। जिएंगे तभी तो इतने सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, इतने सारे गैजेट्स यूज़ करेंगे, नहीं तो क्या ही करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे पृथ्वी की, लेकिन अब मैं बात करना चाहूँगी मलेरिया की। जी हाँ, मलेरिया नामक बीमारी जो है उसने बहुत सालों में बहुत लोगों की जान ली है, लेकिन आप सभी को पता है ये होती कैसे है। तो मैं थोड़ा सा मलेरिया पे भी प्रभाव, मतलब आज की शाम जो भी है इसमें आज लर्निंग बियॉन्ड जो क्यूरोसिटी की बात हो रही है, तो लर्निंग वही है जो भी करंट चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में हमें पूरा ज्ञान हो। तो मैं मलेरिया के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से तो होता है, ये बात तो सही है, लेकिन मच्छर के ही काटने से बस नहीं होता है। मलेरिया जो है वो एक छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। चलिए, जिसको पता है आप जल्दी से मुझे आंसर करें, मतलब जल्दी से चैट रूम में आंसर करें। मैं चाहूँगी कि आप सभी आज जानें कि मलेरिया के पीछे का असली कौन गुनहगार है, किसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो सबको पता चलेगा कि मलेरिया नामक बीमारी लाने वाला है कौन। तो मैं दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि भाई मलेरिया जो है वो एक ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है। ये सबसे पहले तो हमारे रक्त पे प्रभाव डालती है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग को मैं जागरूक करती हूँ मलेरिया के बारे में कि मच्छर के काटने से फैलती है। मच्छर जो है यहाँ पे वेक्टर का काम करता है, यानी कि संक्रमण करता है, ये फैलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मच्छर को हमें रोकना है। क्या करना है, मच्छर को जन्म देने वाले जो एरिया है, यानी कि पानी जहाँ रुकता है, जहाँ पे मच्छर ब्रीडिंग कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, उस जगह को साफ़ सुथरा रखना है, पानी नहीं जमा होना चाहिए, मच्छरदानी लगा के सोएं, ठीक है। फुल बाजू के छोटे बच्चे हैं तो घर में फुल बाजू के उन्हें कपड़े पहनाएं, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है। तो सफाई अगर होगी तो कोई भी बीमारी हमारे पास वैसे ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, और ध्यान रखते हुए थोड़ा सा खुद ही नहीं एक्टिव होना है, आसपास के लोग जिनको इसकी जानकारी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको जागरूक करना है आप सभी को। तो अगर साफ़ सफाई होगी तो निश्चित तौर पे मलेरिया क्या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे आसपास नहीं दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दूँ कि मलेरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मलेरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। ये दो ऐसे, मतलब कह सकते हैं, प्रोटोजोआ हैं जिनसे ये बीमारी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रोटोजोआ है इसको ऐसे समझते हैं ना कि ये वो दोस्त है जो दो लोगों के घर रह के गुजारा करता है, मतलब इसने रेंट पे रूम नहीं लेना है, अपना रूम नहीं लेना है, दो लोगों के घर रह के अपनी ज़िंदगी चलानी है, मतलब कि ये आधी ज़िंदगी अपनी मच्छर के मुंह में बिताता है, ठीक है, उसकी गट में जाता है थोड़े दिनों के लिए, फिर बाकी आके हमारी लीवर की सेल में रहता है और वहाँ जाके हमारी RBC को नुकसान पहुँच जाता है, जिसकी वजह से हमारी प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है, हमें बहुत ठंड लगती है, चिलिंग फीलिंग आती है और साथ में फीवर बहुत ज़्यादा आता है, सर में दर्द भी हो सकता है, ठीक है। तो कई सारे लक्षण हैं और ये जो है ये मच्छर के मुंह में अपना रिप्रोडक्शन पूरा करता है और हमारे अंदर भी रिप्रोडक्शन करता है, मतलब ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह से करता है, यानी कि बड़ा खतरनाक जीव है, दो लोगों की ज़िंदगी को ख़राब कर डालता है। फिलहाल हम इसको कुछ ही नहीं बोल सकते भाई, ये तो भी अपना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, तो इनको भी जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात करनी मच्छर से और एक इंसान से, तो इनको मुलाकात करने ही नहीं देंगे हम, पानी रुकने ही नहीं देंगे, हमारे पास इनको आने ही नहीं देंगे। और सबसे खास बात कि हर मच्छर से नहीं होता है, लेकिन अब आप सोचेंगे हर मच्छर से नहीं होता तो और जमीना क्या गारंटी वो मच्छर मेरे घर आए नहीं आएगा, वो नहीं भाई, मच्छर का कोई पहचान तो आप कर नहीं पाएंगे, लेके बैठे तो है नहीं कि आप टेस्ट करें कौन सा मच्छर कहाँ है कैसे है, तो सबसे पहले तो आपको मच्छर को ही पैदा होने से रोकना है, ठीक है। तो मैं एनोफिलीज नाम का मच्छर है और ये एक मादा मच्छर है यानी कि फीमेल मॉस्किटो है। अब फिर कहेंगे कि लड़कियाँ जो है ना परेशानी करती हैं, तो ये बात हो गई, ठीक है। तो इस बात के बाद मैं आगे बात करना चाहूँगी आप लोगों से एक और ख़ास चीज़ की, जिसके बारे में आप सभी जानने के लिए हैं बिल्कुल परेशान। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन गन सिटी 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और आप सुन रहे हैं शो विज्ञानशाला, लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी। और अभी थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे बहुत सारी।

0: चाइल्ड फ्रेंड है लंदन से। मैं उसकी शादी में आई हूँ। और तुम?
1: उसकी शादी मुझसे हो रही है।
0: What?
1: तुम्हें होते क्या? ये कपड़े कैसे पहन रखे तुमने? ये बैक पे टैटू तुमने कब बनवाया? और ये गोरा कौन है तुम्हारे साथ?
0: I don't owe you any explanation. हमारा ब्रेकअप हो चुका है, remember?
1: ब्रेकअप? अभी तीन दिन पहले तक तो तुम मुझे बड़े सेंटी एसएमएस भेज रही थी, I miss you वाले।
0: तुमने रिप्लाई किया? नहीं ना, बस I got over you.
1: Got over you? तीन दिन में got over you?
0: See, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है। We're free. So let's just enjoy ourselves, okay?
2: Bia, come. Let's this.
0: Come on.
1: Bia, नाम भी बदल लिया?
3: भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हो? डांसिंग भाई साहब डांसिंग। आओ ना, लोनली लोनली करो।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
0: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
0: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: सो वापस से आप सभी का स्वागत है भाई। और जैसे कहते ना कि आज मैं नॉलेज का भंडार लेके आया हूँ आपके लिए। बिल्कुल। तो देखिए, जानेंगे नहीं तो क्यूरोसिटी कैसे नहीं मतलब आप लोग को परेशान करेगी। तो जानकारी रहेगी तभी और क्यूरोसिटी आएगी और हम पहचान पाएंगे और खोज करेंगे कि भाई एनोफिलीज मच्छर कौन है, क्यूलेक्स कौन है, और दोनों को पकड़ के उससे पूछेंगे क्यों, आखिर क्यों क्यों हमें तुम काटते हो। क्यों नहीं तुम वेजिटेरियन हो जाते हो। वेल, आगे बात करेंगे भाई, उसका टेस्ट, उसको खून अच्छा लगता है। तो विज्ञानशाला में आज बात हुई मलेरिया की और हमने बात की हमारी प्यारी मदर अर्थ की, और अब मैं बात करने वाली हूँ आयुष्मान भारत दिवस की। मतलब आप कहेंगे ना आज आरजे बिना एकदम पैकेज। यस, आज बहुत कुछ बताना है मुझे आपको। जैसे कहते हैं ना कि अब बहुत सारे लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होंगे, हो सकता है इसमें से कोई सवाल आके आपका दिमाग पंचर करने का सोचे, लेकिन आपको पहले से जानकारी है और आपका दिमाग पंचर हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए, 30 अप्रैल को मनाते हैं हम सभी ये दिवस, और ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट डे है। क्यों इम्पॉर्टेंट है चलिए जानते हैं। तो पहले बताऊँ, पूरे देश में 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस, और आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड वार्ड भी बनाया होगा ना, तो आज जानकारी पूरी दूंगी। तो एक ऐसा दिन जिसका मुख्य उद्देश्य है समाज में जो वंचित मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभता से पहुँचाने की और गुणवत्तापूर्ण सुविधा, मतलब देखिए सुविधा एक होती है, एक होती है गुणवत्तापूर्ण सुविधा, वो पहुंचाने को बढ़ावा देने के लिए मतलब और मोटिवेट करने के लिए ये दिन बनाया गया। और ये दिन सबसे पहले 2018 में शुरू किया गया, ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, ठीक है। तो ये दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस का जो उद्देश्य है वो समझिए कि 12 करोड़ से अधिक जो गरीब और संवेदनशील परिवार हैं, सेकेंडरी या कह सकते हैं कि माध्यमिक वर्ग के जो लोग हैं, या तृतीयक यानी कि टर्शरी वर्ग के लोग जो लोग हैं जिनको देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए कभी भी कोई मतलब आर्थिक आवश्यकता हो तो वो परेशान ना हो, तो उन्हें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, ठीक है। और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र इसके लिए बनाए जाते हैं, और इसकी योजना के तहत जो है ये केंद्र बनते हैं जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, गैर संक्रमक गैर संक्रमक रोग जो हैं उनको घरों के पास लोगों की जो कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट जानकारी उपलब्ध कराना, और पूरे देश में स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना, सबसे खास इम्पॉर्टेंट यही इनका उद्देश्य है कि सिर्फ इलाज ना हो, जब तक कि आप स्वस्थ ना हो जाओ, वेलनेस ना आपको आ जाए, तब तक आपको वो मतलब आश्वासन के साथ आपका इलाज होता रहे, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं, ठीक है। कैसी घोषणाएं? 2024 से 2026 के बीच में ये घोषणाएं की गई हैं। 70 वर्ष की आयु तक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी आय की परवाह किए बिना योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। क्योंकि देखिए 70 साल का इंसान जो है वो स्वास्थ्य तो उसका इतना साथ नहीं देगा कि वो कुछ कर सके। हाँ, बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, तो उनके लिए है ये, ठीक है। अगला है आयुष्मान वय वंदना कार्ड, ये भी बनता है इसी के अंतर्गत। 70 से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिकों का जो कहते हैं ना डेटा है उनको आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जाता है, जो कि लोगों के एज के अकॉर्डिंग लागू किया जाता है, और उनके परिवार में जितने भी 70 वर्ष से कम आयु के सदस्य हैं उन सभी को एक कवरेज के लिए साझा नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी 70 के अबव हैं वही ऐड किए जाएंगे। अब मैं बात करना चाहूँगी कि इसमें इम्पॉर्टेंट किन लोगों को मतलब किनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इस योजना या इस दिवस के जो कहते हैं ना कि पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए किसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। खास तौर पे इस योजना का फ़ायदा मिलता है कैंसर, हृदय रोग, न्यूरोसर्जरी और ऐसे कई गंभीर जो बीमारियाँ हैं उन सबको मिला के लगभग 70,000 से अधिक एम्पल जो कहते हैं ना सूचीबद्ध अस्पताल हैं जिनमें इन सबको कैशलेस और पेपरलेस इलाज करने की सुविधा दी जाएगी। मतलब आपको कोई पेपर नहीं करना है, अगर आपको बीमारी है आप सीधे जाइए, आप जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन है उसको कराइए और शुरू कर दीजिए अपना इलाज। तो इतनी ज़्यादा सुविधाएं अगर मिल रही हैं आपको एक ही छत के नीचे और एक ही सुविधा से, तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। और हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी अगर हो तो कई बार हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने जो बताया आपको कि फिर से आप लोग जान लीजिए कि आपको अगर इसमें आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कोई मान्य सरकारी या सरकार का दिया हुआ कोई भी कार्ड, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या कोई ऐसी आईडी जो इसके अलावा आपका जो होता है क्या कहते हैं, वोटर आईडी के साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे पर्सनल कार्ड्स होती हैं जो आपके आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका आ जाता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में जैसे आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यूटिलिटी बिल, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आपका निवास का प्रमाण पत्र आपको प्रमाणित करने वाला कुछ होना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक जाति गणना यानी कि SECC प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। हालिया पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। राज्य अथवा केंद्र द्वारा निर्देशित अन्य दस्तावेज भी जो आपके साथ लागू होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अब आपके पास ये होगा कि क्या BPL वाले भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, BPL वाले लोगों के लिए ही है ये, बिलो पावर्टी लाइन वाले। ठीक है, प्रतिवर्ष आपको 5 लाख रुपए का जो कवरेज मिलेगा अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, 5 लाख तक का खर्चा सरकार उठाएगी। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी मौजूदा बीमारियां हैं उन सब का इलाज इसके अंतर्गत किया जा सकता है। और आपको क्या करना है, आवेदन जो है वो पोर्टल पे जाके आपको करना पड़ेगा, ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी, अपना जितना भी डेटा है वो सारा सबमिट करना पड़ेगा। और जो इसका कहते हैं ना कि डेडलाइन है जो भी चीज़ों की वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें अगर ऐसे मिल जाएं, और सुविधाएं बहुत सारी हैं, हमें जानकारी का अभाव होने की वजह से पता ही नहीं होता। तो इस दिन को मोटिवेट करते हुए 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा कवरेज अगर मिल रहा है तो क्यों ना उन 5 लाख लोगों में वो सारे लोग भी हों जो मुझे सुन रहे हैं, जिनकी मतलब जो क्रेडिबिलिटी है, जो चाहते हैं कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उन्हें ये सुविधा मिल जाए। भाई देखिए, बीमारी और कह सकते हैं परेशानी कभी भी इन्फॉर्मेशन देके पहले से नहीं आती, तो हम अगर पहले से तैयार रहेंगे लड़ने के लिए तो हो सकता है कि हमारा हौसला कहीं भी ना डगमगाए। ठीक है, कई बार क्या होता है हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और घुटने टेक देते हैं बीमारियों के आगे, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना ABY समाज के जो जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उन सब के लिए है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, साल 2008 में UPA सरकार द्वारा लॉन्च किए स्वास्थ्य बीमा यानी कि NHBY को भी आयुष्मान भारत योजना में मिला दिया गया, एक ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी को चीज़ों की और डीप जानकारी चाहिए तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और संकुचित दृष्टिकोण से हटाकर एक व्यापक और अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ाने का एक छोटा सा पहलू है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। इसका उद्देश्य जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट हो और जितना भी मतलब जितना हो सके वो सरकार की तरफ से, आप ये ना सोचें कि हमारा कौन साथ देगा, आपका साथ आपका कार्ड देगा। ठीक है, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में कच्चा मकान में रहने वाले परिवार हैं, परिवार में किसी वयस्क जो 16 से 69 साल के उम्र के नहीं हैं, परिवार की मुख्य एक महिला का होना ज़रूरी है, परिवार में कोई दिव्यांग का होना, अनुसूचित जाति जनजाति भूमिहीन व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर, वो सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के बेघर व्यक्ति, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी, कानूनी रूप से मुक्त, बंधुआ आदि स्वतः आयुष्मान योजना का जो है वो लाभ उठा सकते हैं, और वो स्वतः ही मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली उनका नाम, कहते हैं ना कि इनका नाम आ गया, तो उनका अगर इसमें आ रहा है नाम, कैटेगरी में जा रहे हैं वो, तो वो ऑटोमेटिकली कर दिए जाएंगे। तो ऐसी सुविधाएं जब मिलती हैं तो हमें भी लाभ उठाना चाहिए। और देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिस्कशन भी करने बैठ जाए ना तो पूरा दिन पूरी रात कम पड़ जाएगी। ऐसी ऐसी समस्याएं लोगों के पास होती हैं, बहुत पुरानी बीमारियों से लोग झेल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सही इलाज सही समय पे नहीं मिलता। बहुत सारे लोग मतलब मैं एक बीमारी की बात करूंगी कि एक बीमारी है जिसका नाम है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। पहले इंडिया में बहुत फैला था लेकिन इसका इलाज जब शुरू किया गया तो जड़ से ये बीमारी ख़त्म हो गई। और अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग टीबी का इलाज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराते हैं और लाखों रुपए देते हैं। मैं बताऊं कुछ 1,000 या 500 रुपए का खर्चा लगता है दवाइयों का, वो भी मुझे लगता है कि बहुत बहुत रेयर वाली जो दवा होगी वो बाहर मिलेगी, बाकी आपके आने जाने का जो खर्च है हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल जाने का वो बस जोड़िए। इसके अलावा टीबी का मुफ्त इलाज होता है सरकारी अस्पतालों में। तो बिल्कुल आप जानकारी के अभाव में हैं अगर आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही, तो प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, हम लोग को सुनिए, और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैट रूम में हमें या हमारी मेल आईडी पे या हमारे इंस्टा अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली हम आपकी मतलब उन बातों पे चर्चा करेंगे और आपकी जानकारी जो है ना संपूर्ण रूप से आपको दी जाएगी। तो अब आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, आप सुन रहे थे शो विज्ञानशाला आरजे बीना के साथ अपने अंदाज में, यानी कि लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335484। अब बारी है आपकी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
8: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
9: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
8: सच में, क्या खास है वहाँ?
9: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
8: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
9: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
8: और फोटोग्राफी वगैरह?
9: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
8: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
9: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
8: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
1: और जेंट्स के लिए?
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा आपके अपने इवनिंग वाले शो यानी कि गोंडा मैसेज मसाला में। और मसाले की बात बारी आ गई है, वक्त हो चला है घड़ी में पूरे 6:22। कहीं ना कहीं शाम की चाय तो भाई ओवर हो चुकी होगी। कुछ दोस्त यार अब अपने ऑफिस से फुल्ली फाइनली रिलैक्स होकर के अपने घर की ओर लौट रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो अभी भी गप शड़ाक में लगे होंगे अपने दोस्तों के साथ में और कह रहे होंगे चलो एक कप चाय हो जाती है। तो भाई ऐसे वाला मौसम है और कुछ जगह तो भाई चाय की बजाय कह रहे होंगे कौन सा कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया जाए। बताओ ना, पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं गया, क्या खाते हैं चलो बताओ। तो ऐसा वाला भी माहौल है। तो इन सभी माहौल के बीच में हाजिर हूँ मैं आपका शो लेकर के, जिसका नाम है गोंडा मैसा मसाला, और आप सभी ने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आज दिन है मंगलवार। मंगलवार के साथ में मेरे को एक और बात याद आई भाई, गोंडा में तो इतनी सारी जगहों पे लंगर लगा हुआ है, अभी भी भजन लगातार चलते जा रहे हैं, और मैंने एक बात और साथ में सोची कि भाई मंगलवार होता है और इस वार पे किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता है। भाई आमने सामने सड़क के इस पार सड़क के उस पार लंगर लगे हुए होते हैं, भंडारे चल रहे होते हैं, प्रसाद वितरण हो रहा होता है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता है कि एक स्टॉल, मात्र एक स्टॉल पे पूरी सब्जी, छोला, कढ़ी, चावल और इन सबकी जाए फल का स्टॉल लगा दिया जाए। काश कोई ऐसा सोचता हमारी तरह। हम खाली सोचते हैं, हम करते नहीं है। तो ऐसा कोई शायद सोचता हो, और जितने भी व्रत वाले इंसान हैं शायद उनका भी पेट पूजन हो जाए। हाँ, अगर किसी तक मेरी आवाज जाएगी तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे वो ये वाला दिमाग यूज करे। फिलहाल चलते हैं उस ओर जिस ओर आज हमें जाना है। हाँ जी, आज है ट्रैकी वाला ट्यूसडे, और ट्यूसडे यानी कि स्टोरी, यानी कि कहानी, यानी कि वो किस्सा, वो हिस्सा जो हमारे साथ में आपका भी होता है। और कहानियां तो भाई साहब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव रखती हैं, और हम महसूस भी करते हैं कई दफ़ा कि जो हमारी कहानी होती है या किसी कोई अपनी कहानी सुना रहा होता है तो हम उसे रिलेट कर पाते हैं। तभी तो एंटरटेनमेंट का इतना बड़ा जगत चल रहा है। बेशक कहानियां लिखी जाती, कविताएं लिखी जाती हैं, फिल्म बनते हैं, और जब हम कोई ऐसी फिल्म देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल होता है तो हम रो तक पड़ते हैं। हमारे इमोशन पे कितना गहरा असर छोड़ जाती है किसके डायलॉग्स, किसकी कहानी, किसके जज्बात, ये भी सोचने और देखने की बात होती है। तो भाई आज दिन वही है, ट्यूजडे यानी कि मंगलवार, मंगलवार यानी कि कहानियों वाला दिन। चलेंगे कहानी की ओर भी दोस्तों, लेकिन उससे पहले कल का मेरा कुछ रह गया था आपसे जो साझा करना था। कल था आपका कॉल इन शो, आपकी इतनी कॉल्स आई मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। हर दफा मेरा यही होता है, मैं लेके आती हूं और मेरी पूरी बात कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती, वक्त कम पड़ जाता है। आज हम उस बात पे पहले चर्चा करेंगे क्योंकि वो आपके मस्तिष्क से, आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात रखती है। और जब बात आपके दिमाग और आपके दिल और हालात की हो तो उसको भाई उम्दा बनाने का काम हमारा है, यानी कि आपकी अपनी आज आकांक्षा का है। और क्या, हाँ बिल्कुल सही सुना। चलिए चलते हैं, फिलहाल लेते हैं एक शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मुझे लग रहा है कि आज हम ये जो ब्रेक ले रहे हैं वैसे पीने का वक्त है, मतलब कोई ड्रिंक ले रहा है, कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, कोई कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर रहा है, कोई कॉफी ऑर्डर कर रहा है। बट एक गाना मेरे को याद आया, लोग कहते हैं आंखों से पी जाती है, तो भाई आंखों से कैसे पी जाती है तो मुझे नहीं पता है, तो हम गाना सुन के ही जानेंगे। लेकिन उससे पहले साकिया एक नजर जाम से पहले पहले, हमको जाना है कहीं शाम से पहले पहले। हाँ जी, तो शाम से पहले पहले आपको जहाँ जाना था आप जा चुके हैं, आप बारी है आपकी आने की, आपके अपने शो में आने के गोंडा मैसेज मसाला में, वो भी आपकी अपनी आरजे बीना वाला। लेकिन आज कल तो फिलहाल बीना जी थोड़ी सी रेस्ट ले रही हैं और उम्मीद है दो चार दिन में वो वापस आ जाएंगी पूरी तरह से आपके आशीर्वाद के साथ में। तब तक हम ले चलते हैं आपको एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। ब्रेक के उस पार आते हैं और आपसे वो बात साझा करेंगे जो हमें आपसे कहनी है फिर आज की कहानी। और कहानी में हम चाहेंगे आप भी हिस्सेदारी अपनी बनाएं, आपकी हिस्सेदारी मौजूदगी होना जरूरी है। फिलहाल मैं कहानी पे बाद में आती हूँ, पहले ये गाना सुनाती हूँ। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, जस्ट यू गई यू आई।

हाँ जी, और इस प्यार भरे नगमे की ओर जरूर वापस से लौटेंगे, लेकिन उससे पहले वो बात जो हमें आपसे साझा करनी है। भाई आज प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, क्योंकि आज है किससे कहानियों का दिन, यानी कि है ट्यूसडे, ट्रेकी वाला ट्यूसडे, और आपका दिल और दिमाग को थोड़ा सा हम डालेंगे असमंजस में, और आप भी उन ख्यालों की ओर जरूर से जाना पसंद करेंगे जो आप कहीं पीछे छोड़ आए हैं। और हाँ, कभी किसी को याद कर लेते हैं, कभी किसी से बात कर लेते हैं, और कभी जो आपसे रूठ के या किसी कारणवश आपसे दूर चला गया है उससे दो पल याद कर लेते हैं। तो हाँ जी, आज का दिन है याद करने का, क्योंकि आज है दिन ट्रैकी वाला ट्यूसडे, और हम उस कहानी की ओर भी जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मुझे कल से आपसे बातें करनी थी, जो मेरा छूट गया था एक हिस्सा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर के हिसाब से। आज के वक्त को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं। फिलहाल हमें लगता है हमारे जितने भी ज्ञानस्थली के परिवार हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो अपनी आरजे कांक्षा या हमारे यहाँ के जितने भी आरजेज हैं सारे एक से बढ़ के एक हैं, और सब अपने अपने गुर में पूरी तरह से कंप्लीट है। भाई मेरा दुख अलग ही लेवल का है। मेरा ये दुख है कि मैं कभी दुखी ही नहीं हो पाती, मैं दुख को पूरी तरह से फील ही नहीं कर पाती। 24 घंटा तो मैं ही क्या करती हूँ सिवाय सोते वक्त। हाँ, सोने के टाइम पे मैं ख्यालों में होती हूँ, किसी के सपनों में होती हूँ, लेकिन ही आती नहीं हूँ। तो मेरा ये दुख है, और मुझे लगता है आप लोगों का भी ऐसे ही कुछ प्यारा प्यारा अच्छा वाला दुख होगा जैसा कि मेरा है। ये मेरा अपना है। खैर, चलते हैं उस ओर जो मैं आपसे कहना चाहती। तो कल था 8 जून। 8 जून को मनाए जाते हैं 3 खास चीज़ें। एक तो है समुद्री ओशियन के जीवों के लिए दिवस मनाया जाता है, दूसरा था नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे, और तीसरा था विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, यानी कि वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। और ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है? आजकल लोग अवसाद में पाए जाते हैं, लोग स्ट्रेस में पाए जाते हैं। कारण है ये इतना उलझा हुआ हमारा दिनचर्या। हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा कामों में उलझ जाते हैं, और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है, आपने भी देखा होगा और जानते भी होंगे ऐसे लोगों को, आप ही के रिलेटिव्स होंगे जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 कामों में अपने हाथ पाँव को जिन्होंने डाल रखा हुआ है, मतलब ऐसा कहा जाता है हाथ पाँव को डालना, यानी कि 3 काम एक ही साथ में एक ही टाइम पर कर रहे हैं। किस लिए? जीविकोपार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो ऐसे में क्या है, देखिए हम एक स्ट्रेस तो पूरी तरह से झेल नहीं पाते, एक काम का लोड तो हमसे होता नहीं, और जब 3-3 कामों का लोड है, 3-3 अलग अलग मैनेजमेंट का, अलग अलग ब्रेन लेके चलना, या 3 छोड़ दीजिए, ज़्यादा हो गया तो आप मान लीजिए 2 ही मान लीजिए, 2 कामों में हाथ डाला हुआ लोगों ने, तो इस तरह से क्या होता है, हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक ठहराव नहीं दे पाते, एक टाइम नहीं दे पाते जो हमें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उस टाइम पर हमें ऐसी दिक्कतें देखने को आती हैं, और जब हमारे दिमाग पे कहीं ना कहीं जोर पड़ता है तो हमारा वो एक ट्यूमर का रूप ले लेता है। तो इसका उद्देश्य इस गंभीर बीमारी के बारे में जन को जागरूकता फैलाना है, मतलब कि विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाने का जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य कारण क्या होता है, मस्तिष्क ट्यूमर मस्तिष्क या उसके आसपास की कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है। इसके चेतावनी संकेतों को पहचानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे में क्या होता है, लगातार सिरदर्द होता है, विशेष रूप से सुबह के समय या गंभीर रूप से होने वाला दर्द हो जाता है, दौरे पड़ना, अचानक से बिना किसी पूर्व इतिहास के मिर्गी जैसे दौरे आना, मतलब कितना भयावह होता होगा जिस फैमिली में ऐसी स्थिति होती होगी, और आजकल बहुत ज़्यादा देखी भी जा रही है, तो इसलिए मुझे लगा कि कल मेरे पास वक्त नहीं था तो आज मैं इसको आपसे ज़रूर साझा करूं। इसके अलावा अन्य लक्षण अगर देखा जाए तो धुंधला दिखाई देना, संतुलन बनाने में परेशानी होना, उल्टी होना व्यवहार या याददाश्त में बदलाव, और सुनने या बोलने में कठिनाई, ये भी होता है। क्यों? क्योंकि हम हमारे जहन में कुछ और चल रहा होता है, सामने वाला हमसे कुछ कह रहा होता है तो हम वहाँ तक सोच भी नहीं पाते और दिमाग नहीं ले जा पाते, हमारा दिमाग पूरी तरह से थक चुका होता है। भाई एक काम में अगर आप पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं और आपने 3-3 2-2 कामों में अपना दिमाग लगा रखा है, तो भाई उसको, दिमाग भी तो हमारा एक मशीन की तरह, उसको भी तो आराम चाहिए। आप पूरे दिन सुबह से उठ रहे हो, अपना दिनचर्या आपने किया, उसके बाद में दैनिक कार्य से निवृत्त होकर जब आप अपने काम पे गए, फुल टाइम आप काम करो, शाम को आ रहे हो, फिर आपका वही मतलब रोज़ आना वाला सब्जी लाना, ये लाना, घर के मसलात अलग होते हैं, उन सब से मतलब रूबरू होना, फिर फाइनली आप एनी हाउ बेड पे जाते हो और सोते हो। तो ये आजकल की दिनचर्या हो गई है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियाँ पनप रही हैं, और पनप क्या नहीं, पूरी तरह से पसर रही हैं, ये कह सकते हैं। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप इन सब चीज़ों से जागरूक हो पाएं। इसका उपचार क्या है और सहायता क्या करें अगर ऐसा कुछ है किसी के साथ में, तो निदान के लिए CT स्कैन कराएं, MRI कराएं, या फिर बायो
या फिर बायोप्सी कराएं और इसके माध्यम से पुष्टि की जाती है। और रोकथाम और इलाज की बात करें तो सही समय पर पहचान और उन्नत उपचार जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी से जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आ सकता है। और चिन्ह इस जागरूकता अभियान के प्रतीक के रूप में लोग मस्तिष्क के ग्रे मैटर को दर्शाने वाले ग्रे रिबन पहनते हैं, मतलब ग्रे कलर का जो रिबन पहनते हैं उनको आप समझ सकते हैं कि वो लोग ऐसे मस्तिष्क की बीमारी से जूझ रहे हैं। फिलहाल अगर इस सब की नौबत ही ना आए तो हाँ, तो उसका भी उपाय है ना मेरे पास, चलिए सुझाते हैं आपको। तो जो लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया उसका कारण क्या है, निदान क्या है ये भी आपको बता दिया। अगर कुछ ऐसा कर लें कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ आए ही ना, ऐसा कोई समय ही ना आए, हम हेल्दी रहें, हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहें एकदम अपनी आर्जी कांग्रा की तरह, हाँ तो ये भी हो सकता है और उसका उपाय मैं आपको ज़रूर सुझाऊंगी। लेकिन उससे पहले भाई जो गाना मैं आधा अधूरा छोड़ के आई हूँ उसको कंप्लीट कर लेते हैं, मतलब कि लेते हैं एक शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक और उस ब्रेक के उस पार आते हैं। और तब तक सुनिए ये वाला गाना, वो तसव्वुर का आलम वो तेरी आशिकी। जी हाँ, इसको कंप्लीट करते हैं फिर आते हैं और आपको सुझाते हैं कि भाई हेल्दी मस्तिष्क के लिए आपको क्या करना चाहिए।

हाँ जी, तो अभी आपने इस शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक को एंजॉय किया है और अब हम चलेंगे उस ओर जो मैं भाई पेंडिंग छोड़ के गई थी। हाँ, उस बात को आपको सुझाना है, लेकिन इससे पहले याद दिला दूं कि शो चल रहा है आपका गुंडा मैसेज मसाला और आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो गाना 89.6 FM गुंडा शहर की धड़कन। हाँ, बात कर रहे थे हम दिमाग की और दिमाग के रोग की यानी कि ब्रेन ट्यूमर की, वो होता क्यों है, उसका निदान हमने बात की और अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में अपना लें, अपनी दिनचर्या में अगर शामिल कर लें तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। और बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं आजकल जो साइंटिस्ट और अगर मेडिकल लाइन में देखा जाए तो ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है और सोचा जा रहा है कि शुरुआत से ही दिमाग को ही पूरी ऐसे कॉपी किया जाए, मतलब ऐसा उसमें कुछ डाला जाए कि सब कुछ पहले से ही सब कुछ ठीक ठाक हो, ऐसे मतलब बहुत सारी रिसर्च चल रही हैं। फिलहाल के लिए मुझे जो पता है, मैं जो पर्सनल करती हूँ वो तो दो थेरेपी है जो आपको अपनानी चाहिए, ये मैं अपनी वाली बता रही हूँ। उसके बाद हम आएंगे थोड़े से तर्कपूर्ण और साथ ही साथ में थोड़ा सा साइकोलॉजी के बेस पे बात करेंगे। तो दो क्या तीन चीज़ें हैं, हाँ मुझे याद आ गई, जो चलते चलते मतलब दिमाग चलाते चलाते मेरा दिमाग चल गया तो मेरे को तीन चीज़ें याद आ गई जो मैं अपने लिए यूज़ करती। सबसे पहली तो थेरेपी आपकी होती है माइंड की, ब्रेन की, सबसे बेस्ट होती है हंसना। जी भर के हंसिए, खुल के हंसिए, 24 घंटे हंसिए, हंसने पे कोई टैक्स नहीं है, बेवजह हंसिए, बस हंसते रहिए। हाँ, कोई लोग आपको पागल कहेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन पागलपन भी अपना एक अलग फन है, एक अलग लेवल की खुशी है और हर किसी के बस में नहीं है कि वो पागल हो पाए। हर किसी के बस की बात नहीं है पागल होना, तो बिल्कुल जनाब आप पागल हो सकते हैं और हंसने के लिए अगर आपको कोई पागल करा तो बेशक हो जाइए। और ये पहली थेरेपी है ब्रेन के लिए, क्योंकि इससे हमारे मस्तिष्क का व्यायाम होता है, हमारे दिमाग का व्यायाम होता है। हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एक व्यायाम बताया गया, एक थेरेपी दी गई। शरीर थक गया तो उसके लिए सो जाओ, आराम कर लो, थोड़ी देर रुक जाओ, ठहर जाओ, बहुत चल लिए हो, तो ऐसे ऐसी थेरेपीज होती हैं। आँखों के लिए बताया गया है कि अगर आपकी आँखें कमज़ोर हो रही हैं या आँखों में कोई दिक्कत आ रही है तो आप 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में आँखों को थोड़ी देर के लिए झपक लीजिए, मतलब 2 सेकंड के लिए उसको हॉल्ट दीजिए, आँखें बंद कीजिए, फिर अपने काम में आइए। तो ऐसे अगर आप दिनचर्या अपनाते हैं तो आपकी आँखों में देखेंगे कि एक अच्छा वाला सकारात्मक वाला बदलाव आएगा कि आपकी आँखों में जो परेशानी आ रही थी उसकी परेशानी कम हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे दिमाग के लिए भी होता है कि भाई जब हमारे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ें हो कि आपको लगे कि प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसे पहले ही ना बेहतर है ना कि लाइफ में हंसी खुशी से रहो। एक तो देखिए सकारात्मक ऊर्जा का डेवलपमेंट होगा, वाइब्स आपकी बहुत एनर्जेटिक होगी, बहुत प्यारी होगी, लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। और तीसरी बात अभी ये आपको बता दूं कि कभी आपको प्रॉब्लम जैसी लगेगी ही नहीं। तो हंसने के बहुत सारे फायदे हैं, तो हंसो, मुस्कुराओ और क्या। और दूसरी थेरेपी जो मैं यूज़ करती हूँ रात में जब मैं निकलती हूँ, भाई मैं दिन में थोड़ा देर से उठने वालों में से हूँ तो सुबह तो मेरे से नहीं हो पाता, वैसे तो सुबह ही घूमना टहलना बेस्ट होता है। वैसे तो मैं कहूँगी दोनों टाइम घूमना टहलना बेस्ट होता है सेहत के लिए, मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए तो, क्योंकि वहाँ पे प्राणवायु बह रहा होता है। तो ये हो गया। दूसरा है जब मैं निकलती हूँ रात में तो उस टाइम पे मैं उल्टे पाँव की थेरेपी लेती हूँ, मतलब कि जो लोग सीधा सीधा चलते हैं तो हम उल्टा उल्टा चलते हैं, इससे क्या होता है हमारे, बोला जाता है दिमाग को क्या होता है रिवर्स की चीज़ है, हमारी याददाश्त मजबूत होती है, याददाश्त को मजबूत करने के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। जब हम रिवर्स में चलते हैं ना तो हमारी रिवर्स की चीज़ें कहीं ना कहीं उससे मजबूत होती है, हमारी याददाश्त को ये मजबूत करती हैं। ये हो गया। और तीसरी थेरेपी जो मैं लेती हूँ वो मैं भूल गई। ओह माय गॉड, ये मेरे साथ में हमेशा होता है। तो तीसरी थेरेपी क्या है, अगर मुझे अभी याद आया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हाँ, याद आ गया। तो तीसरी थेरेपी ये है कि एक ही टाइम पे हम दो काम करें, मतलब दो हाथ से, जैसे राइट से भी लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि हम लेफ्ट से भी लिख पाएं और फोकस करके। तो इससे क्या होता है जब हमारे दिमाग को ऑर्डर मिलता है, जैसे हमारी एक ही जो हम डेली बेस पैटर्न बना लेते हैं दिमाग के लिए, वही हम काम करने लगते हैं, वही चीज़ें हमारे साथ में होती हैं। और जब हम एक के साथ में दो काम करेंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग का डेवलपमेंट होगा। एक पार्ट हमने तो क्या बोलेंगे, काम में ले रखा है और दूसरा पार्ट हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, इस तरह का होता है। तो जब हम दोनों हाथ से काम करेंगे तो हमारे दोनों साइड का ब्रेन काम कर रहा होगा। तो इससे क्या होगा, ये भी हमारा एक एक्सरसाइज है ब्रेन के लिए, ये एक टास्क देना है और हमारे दिमाग को मजबूत करना है और आगे ले जाना है। तो ये तो भाई मेरा पर्सनल व्यू था जो मैं करती हूँ, वो मैंने आपसे साझा किया।
इसके अलावा जो हम कर सकते हैं वो है दिमाग को मजबूत और तर्कपूर्ण यानी कि लॉजिकल बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीके सबसे कारगर होते हैं जो नियमित रूप से न्यूरोलॉजिस्ट देते हैं बताते हैं और ये आपके दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए निर्णायक क्षमता याददाश्त को बढ़ाने के लिए बेहतर होते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे बढ़िया नंबर वन पे आता है तार्किक क्षमता यानी कि लॉजिकल स्किल आपकी। पहेलियाँ और बोर्ड गेम्स खेलें जैसे कि सुडोको हो गया, शतरंज हो गया, ऐसी चीज़ें जैसे दिमाग की कसरत हो और लॉजिकल हिस्सा आपके दिमाग का सक्रिय हो सके। इसके अलावा नई भाषा या कौशल सीखें, कोई नई स्किल पे काम करें। और एक बात और लाइफ में याद रखिएगा, अगर आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो लाइफ टाइप आप सर्च ओरिएंटेड रहिएगा, मतलब कि कुछ ना कुछ नया नया सीखना, हर दिन कुछ नया सीखिए, हर दिन कुछ नया सीखने का होता है। तो हम क्या करते हैं, हम पुरानी ही चीज़ों में, हम अपने घर की झंझटों में या किसी ने कुछ कह दिया उसी में उलझ के रह जाते हैं, तो वो लाइफ क्या हो जाती है, हमारी बोरिंग हो जाती है। अगर आपको अपनी लाइफ बोरिंग नहीं बनाना भाई, तो इससे बाहर आना है तो कुछ नया खोजते रहिए, लाइफ को हर एक जोन से जीना सीखिए। जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत कुछ है जिंदगी में, और दुनिया भी बहुत बड़ी है। हम जितना हम देखते हैं हमें लगता है दुनिया उतनी ही ना, फिर हम नल कूप हो जाएंगे। तो कूप मडूक मत बनिए और दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए, अपनी लाइफ को बहुत प्यारा बनाइए, और उसके लिए कारण एक ही है, सर्च ओरिएंटेड बनिए। हाँ जी, कुछ नया हमेशा सीखते रहिए। तो इससे क्या होगा, कोई नई भाषा, वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोडिंग सीखने से मस्तिष्क में एक न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन बनते हैं जिससे आपका दिमाग मजबूत होता है। उल्टे हाथ का इस्तेमाल करें, देखो जो हमने आपसे बताया था ये हम करते हैं इसलिए हमने आपको बताया था। और एक उल्टा चलना ये भी बहुत ज़रूरी होता है, याददाश्त मजबूत करता है, और आपकी वो चीज़ें जो आप कई दफ़ा होता है ना रिविज़न नहीं कर पाते हो पढ़ने के बाद, वो भी आपके जहन में बनी रहेंगी। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाने से प्रिफ्रंट मस्तिष्क का वो हिस्सा जो तर्क और निर्णय के लिए जिम्मेदार होता है मजबूत होता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। पर्याप्त नींद लें, मनोवैज्ञानिक के अनुसार 7 से 8 घंटे की नींद के दौरान दिमाग दिन भर की बेकार यादों को साफ करता है और नई जानकारियों को सहेजता है। तो भाई दो चीज़ तो अपनी लाइफ में उतार लीजिए, पूरा पूरा नींद लीजिए और दूसरा खूब हंसिए जितना हंस पाइए। और तीसरा है भाई, एक और बात है हमारे पास में कि तनाव को नियंत्रित करना सीखिए। तनाव बहुत है आज की दुनिया में, तनाव बेहद है, बेइंतहा है। अगर आप सुकून से बैठे हैं तो कोई अपना ही आपको पिंच करके आपको तनाव दे जाएगा। तो तनाव लेने का नहीं देने का, ये एक फिल्म का डायलॉग है, टेंशन लेने का नहीं देने का। तो बॉस, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। ये भी बहुत बड़ा वाला फॉर्मूला है जो आप अगर सीख गए, ये गुण अगर आप में आ गया तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो यूं ही शॉर्ट आउट हो जानी है, क्योंकि लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ही कौन करता है, ये मिस्टर तनाव ही तो है जो हमें देते हैं, तो इनसे थोड़ा सा निजात पा सकते हैं आप। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक पोषण, हाँ जी, डाइट और एक्सरसाइज, तो रोज़ाना 30 मिनट टहलना, दौड़ना या साइकिलिंग ये आप ले सकते हैं, जिससे आपका दिमाग पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। इससे क्यों स्वस्थ रहेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और नए न्यूरॉन्स का निर्माण होगा। जब नए न्यूरॉन्स का निर्माण होगा तो आपके दिमाग को और 4 हाथ मिल जाएंगे। कहते हैं ना कि एक काम, अगर एक परिवार है तो उसमें अगर 4-5 लोग हैं तो काम आराम से बट के 1 घंटे में निपट जाएगा। सेम ऐसा ही कुछ होगा आपके दिमाग के साथ में, आपके नए न्यूरॉन्स पनपेंगे आपके ब्लड सर्कुलेशन के चलते, तो उसको एक हेल्प मिलेगी और आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। इसके अलावा अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐड करें, जो कि अखरोट, अलसी के बीज से मिलता है, और हरी सब्जियां और बेरीज, और पर्याप्त पानी भी इसमें शामिल करें। इतना कुछ करना है आपको और इसके बाद अपनी लाइफ को जी नहीं, नहीं। मेरे को गाना याद आ गया था गाना है ऊ ला ला रे, ऐसे कहते हुए आप एंजॉय कर सकते हैं, बेशक ऊ ला ला रे हो जाएगी आपकी लाइफ। उम्मीद है कि आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा और अपने लाइफ में बहुत कुछ अपनाने वाले हैं। फिलहाल हमारे साथ में प्यारे प्यारे लिसनर्स जुड़ गए हैं, जरा उनको भी हम वेलकम कर लेते हैं उनका। जी हाँ, स्वागत और इस्तकबाल करेंगे सबसे पहले हम अपनी रीना शर्मा जी का, रुड़की उत्तराखंड से, जो हमें सुन रही हैं।
इसके बाद हमारी नीना जी यानी कि हमारे चंगू जी और साथ में मंगू जी भी आ चुकी हैं, आपका भी इस्तकबाल है भाई, यानी कि नेहा जी बहराई से आ चुकी हैं। और इसके अलावा बात करें तो तान्या जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं गुंडा से। भाई मेरे को ये नहीं समझ आ रहा आप इतना हंस कह रही हैं, गुड इवनिंग मैम मेरे जैसा, भाई पूरा एक सेगमेंट बन सकता है इनके हा हा के ऊपर, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं अब एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर और फिर आते हैं उस कहानी को लेकर के जो आज पूरी होगी। लास्ट मैंने उसका 3 पार्ट सुनाया था, आज उसका एंड करेंगे, उसे उसके साथ साथ में कुछ सूफिज्म और दिल की बातें करेंगे। जी हाँ, सूफिज्म और दिल की बातें। चलिए चलते हैं शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर और फिर आते हैं। फिलहाल सुनिए हमारी पसंद का, हमारी प्लेलिस्ट से ये वाला सॉन्ग।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए
1: स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: हाँ जी दोस्तों, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आनी आपकी होस्ट एंड दोस्त आज आकांक्षा आपके अपने शो गोंडा मैसेज मसाला में। भाई मसालों भरी बातें। हाँ जी, आज तो भाई कहानी की बात है, और कहानी में मैं ये जानना चाहूंगी आप सभी से कि भाई मैं जो कहानी लाई हूँ तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन अगर आपको लगता है इस कहानी में आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं, या इसका अंत कैसा होना चाहिए, या इसकी शुरुआत आपको लगती है कैसी नहीं ऐसी होनी, या आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, तो ज़रूर आपने चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको ज़रूर लेना चाहूँगी। फिलहाल कुछ मैसेजेस हैं और हमसे कहा जा रहा है कि भाई आपने शायद ध्यान नहीं दिया। हाँ तो चलिए चलते हैं उस मैसेजेस की ओर, लेकिन उससे पहले कुछ अर्ज करते हैं। और एक मैसेज आया हुआ मेरे पास में, क्या लिखा इन्होंने। हेलो आकांक्षा मैम, ये गाना ओके, अगर पॉसिबल हो तो चला देना जी। देखते हैं अभी, और जाते आते जरूर कंप्लीट करके जाऊंगी। नेक्स्ट तो मुझे आपसे ये कहना था कि खुश हो ऐ दिल की मोहब्बत तो निभा दी तूने, खुश हो ऐ दिल के मोहब्बत तो निभा दी तूने, लोग उजड़ जाते हैं अंजाम से पहले पहले, अब तीरे जिक्र पे हम बात बदल देते हैं, अब तीरे जिक्र पे हम बात बदल देते हैं, कितनी रगबत थी तीरे नाम से पहले पहले। हाँ जी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और ऐसा ही कुछ कहना चाहती हैं हमारी नीना जी। तो नीना जी ने अर्ज़ किया था जो मैंने पढ़ा नहीं था, इन्होंने लिखा था, हंसना तो दिखावा, असल में ज़्यादातर लोग रो रहे होते हैं। तो इस पर भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगी कि बिन कहे बहुत कुछ कह और पढ़ लेती हैं आँखें, आज जो मुस्कुरा रही हैं कभी बहुत रोई हैं वो आँखें, बस इतना ही जी। और इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज नेहा जी ने कहा है, भैया लीजिए हमने हंस लिया इतना ही और हंसो। जी हाँ, आप लाइफ टाइम हंसती रहिए, बस आपके लिए इतनी सी दुआ है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ओ अच्छा, देखते हैं कल से रिवर्स गियर में डालते हैं अपने पाँव को, क्योंकि बहुत कुछ मैं भूल चुकी हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो भूलने वाली होती हैं, और उम्मीद है वो आप भूल ही रहिएगा, याद भी मत करिएगा, याद भी ना आए आपको। फिलहाल ये आप ट्राई कर सकती हैं, याददाश्त के लिए अच्छा होता है। अमित सिंह जी हैं मुंबई से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है आपके अपने शो गुंडा मैसेज मसाला में। और नेक्स्ट मैसेज में बात करें तो आपस में काफ़ी सारी चिट चैट हो रही है आप सभी की, और नाइस सॉन्ग का फीडबैक मिला है तान्या जी की ओर से, गुंडा से जो हमें सुनती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनिल शास्त्री जी भी आ चुके हैं जो हमें गोरखपुर से सुनते हैं। गुड इवनिंग आकांक्षा जी, उन्होंने बोला गुड इवनिंग आपको भी सर। अब चलते हैं उस शोर, उस कहानी की ओर जो मैंने पिछली दफ़ा तो आपको सुनाई थी, लेकिन उसका तीन स्टेज आप तक पहुँचाया था, तीन पड़ाव आप तक पहुँचाए थे। और फिलहाल समरी में मैं आप लोगों से वो कहानी सुना देती हूँ कि मैंने उसके तीन पार्ट में आप सभी से क्या साझा किया था। कहानी का टाइटल था, शीर्षक था एक अनजान ख्याल। आर्यव रोज जो कि हमारे स्टोरी के हीरो हैं, उनका नाम है आर्यव, और जो हीरोइन है वो है सिया। तो फर्स्ट भाग में जो हुआ था वो मैं आपसे साझा करती हूँ, छोटे से टुकड़े में, क्योंकि कहानी तो बहुत बड़ी थी, मैंने 5 पार्ट में इसे बांटा था, तो 3 पार्ट मैंने आपसे साझा किया था, उन तीनों को मैं आप तक पहुंचाती हूं। वैसे मैं बता दूं, जब मैं लिसनर हुआ करती थी तो इसका पहला पार्ट मैंने भी जिम्मी, आरजे जिम्मी जो हमारी हुआ करती थी, उसे साझा किया था। ये मेरी ही कहानी है, मतलब मैंने लिखी थी। तो चलिए फिलहाल आपको ले चलते उस कहानी की ओर। अगर आपको भी लगता है आपका भी कोई कहानी आप ऐसा है जो आप अपने जीवन से कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि आप यहाँ पर साझा कर सकते हैं, प्लीज़ चैट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं पढ़ना चाहूँगी। तो पहला पार्ट उसका ये था कि आरव रोज बस स्टॉप पर एक लड़की यानी सिया को देखता था और दोनों के बीच कोई ख़ास बातचीत नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे की मौजूदगी उनकी आदत बन चुकी थी। एक दिन सिया कई दिनों तक दिखाई नहीं देती, जिससे आरव को एहसास होता है कि वो उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी है। जब सिया वापस आती है तो दोनों की बातचीत शुरू होती है और एक सुंदर दोस्ती जन्म लेती है। कहानी का पहला भाग इस एहसास पर ख़त्म हो जाता है कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि ख्यालों से शुरू होते हैं। फिर आई थी इसके दूसरे पार्ट की बारी। दूसरी पार्ट का नाम मैंने रखा था डायरी और बढ़ता विश्वास। जी हाँ, मूवी, मैं मूवी में चली गई। जी हाँ, और चलिए फिर आपको सुना ही देती हूँ, कुछ और कहूँ उससे बेहतर। सिया और आरव की दोस्ती गहरी होने लगी थी। एक दिन सिया और अपनी निजी डायरी आरव को सौंप देती है। डायरी में उसके सपने, डर, संघर्ष, भावनाएं लिखी होती हैं। इससे आरव को महसूस होता है कि सिया उसे अपने सबसे करीबी लोगों में से एक मानती है। दोनों एक पुस्तक मेले में जाते हैं, जीवन और रिश्तों पर बातें करते हैं और एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। कहानी के अंत में सिया एक सवाल पूछती है, क्या तुम्हें किसी अपने को खो देने का डर लगता है, जो आगे आने वाले रहस्य की भूमिका को तैयार करता है। फिर आती है तीसरे स्टोरी के तीसरे पार्ट की बारी, जो जिसका शीर्षक है डायरी का आखिरी पन्ना। आरव को सिया की डायरी में छुपा एक गुप्त पन्ना मिलता है, जिसमें एक पता और एक तारीख लिखी होती है। वो वहां पहुंचता है लेकिन सिया नहीं मिलती उसे। उसकी जगह एक बुजुर्ग उसे एक पत्र देते हैं। पत्र में सिया अपने जीवन के किसी बड़े रहस्य का संकेत देती है और कहती है कि वो अपने अतीत का सामना करने गई है। बाद में आरव को ऐसा एक रहस्यमयी तस्वीर मिलती है, जिसमें बचपन की सिया एक अज्ञात लड़के के साथ दिखाई देती है। थोड़ा सा रोमांच बढ़ रहा है ना यहाँ पर। बचपन में सिया एक अज्ञात लड़के के साथ दिखाई देती है, हो सकता है वो आरव या कोई और, ये तो देखने की बात होगी। कहानी का अगला हिस्सा आपको बताएगा, फिलहाल इस हिस्से को पूरा करते हैं। तो जिसमें बचपन की सिया एक अज्ञात लड़के के साथ दिखाई देती है, तस्वीर के पीछे लिखा होता है, सच्चाई यहीं से शुरू होती है। साथ ही उसे पुराने रेलवे स्टेशन पर अकेले आने का संदेश मिलता है। यहीं से कहानी एक रोमांटिक सफ़र से बदल कर रहस्य और खोज की कहानी बन जाती है। जी हाँ, मैंने जहाँ तक आपको सुनाया था वो रोमांटिक पड़ाव था, और आज जो मैं उसके अगले पार्ट आपको पहुँचाऊँगी, यानी कि उसका चौथा और पांचवा पार्ट, वो होगा थोड़ा सा रहस्यात्मक और खोज भरी कहानी। तो इस कहानी के जो 3 पार्ट जो मैंने अभी आपसे साझा किए, इन समरी में बहुत छोटे भाग में कर करके इसको, तो पहला भाग बताता है कि एक अनजान मुलाकात से शुरू होती है दोस्ती, और दोस्ती से जन्मा गहरा भरोसा और अपनापन, ये भाग 2 बताता है। भाग 3 कहता है, भरोसे के बीच छिपा एक ऐसा रहस्य जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी है। चलेंगे कहानी के अगले पड़ाव की ओर, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके भी मन में अगर कोई कहानी का कोई भी अंश या कुछ आप डेवलप कर पा रहे हैं अपने ब्रेन में, तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आके उसे साझा करें। फिलहाल चलेंगे एक शॉर्ट से म्यूज़िकल ब्रेक की ओर और उसके बाद आते हैं, अपनी कहानी को कंप्लीट करते हैं जो पिछले मंगलवार अधूरी रह गई थी। एंजॉय करें आप अपने शो गुंडा मैसेज मसाला को। आज दिन है मंगलवार, मंगलवार यानी कि कहानी और किस्से और कुछ हमारे कुछ आपके हिस्से। फिलहाल चलते हैं एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, और होता है ना कि कहानी हो या कुछ भी हो, लाइफ हो, दोस्त हो, जिंदगी हो, कुछ भी हो, पर जिगर का टुकड़ा तो वही होता है ना जो होता है। फिलहाल एंजॉय कर लेते हैं शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक को।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: एक बार पुनः से स्वागत, इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने शो गोंडा मैसेज मसाला में। दिन है आज मंगलवार, मंगलवार यानी कि कहानियों की बारी, और कहानी में मैंने आपको अभी वो कहानी सुनाई जो मैं आप तक लेके आई हूँ, एक ख्याल जो साथ चलता रहा। उसके तीन भाग थे जो मैंने आपसे साझा किए, जो मैंने लास्ट टाइम आपको सुनाया था एज अ समरी। अभी हम चलते हैं उसके चौथे भाग की ओर, और चौथे भाग में क्या हुआ ये आपको हम बताते हैं। चौथा भाग यानी कि

0: हमारी प्यारी हीरोइन यानी कि सिया ने बुलाया था हमारे आरव को रेलवे स्टेशन पे। तो ये भाग है चौथा भाग जिसका नाम है पुराना रेलवे स्टेशन। अगले दिन शाम के 5 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे, आरव पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था। ये स्टेशन कई साल पहले बंद हो चुका था। अब वहाँ मुश्किल से कोई आता जाता था। टूटी हुई बेंच, जंग लगी हुई पटरियाँ और हवा में उड़ती धूल उस जगह को किसी भूली हुई कहानी जैसा बना रही थी। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे, आरव के मन में सैकड़ों सवाल थे, जैसे किसी के भी मन में होते अगर उसके साथ में ऐसा कुछ होता। तो तस्वीर में वो लड़की कौन थी, नहीं वो लड़का कौन था सिया के साथ? तस्वीर में वो लड़का कौन था, सिया कहाँ है या कहाँ थी? और आखिर वो सब से सब कुछ छुपा क्यों रही है? घड़ी ने 5 बजाए, कुछ मिनट बीते, फिर दूर से एक व्यक्ति उसकी ओर आता दिखाई दिया। सफेद शर्ट, काला बैग और चेहरे पर गंभीरता। वो आरव के सामने आकर रुका।
1: तुम आरव हो?
0: जी हाँ, और आप? ऐसा पूछना था आरव का। उस व्यक्ति ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। वही तस्वीर। मेरा नाम कबीर है, उस व्यक्ति ने कहा। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया। तस्वीर में जो लड़का था वो मैं हूं? कुछ क्षण तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। सिया कहाँ है, आरव ने बेचैनी से पूछा। कबीर ने गहरी सांस ली। उसे खोजने से पहले तुम्हें उसका अतीत जानना होगा आरव, ऐसा कबीर ने उससे कहा। दोनों स्टेशन की एक पुरानी बेंच पर बैठ गए। कबीर ने कहा, कबीर ने कहना शुरू किया, करीब 15 साल पहले हम दोनों एक ही अनाथालय में रहते थे, यानी कबीर और सिया। आरव हैरान रह गया। अनाथालय? हाँ, हम दोनों भाई बहन नहीं थे, लेकिन उससे भी बढ़कर थे। दुनिया में हमारा कोई नहीं था। कबीर कुछ पल रुका, फिर एक दिन एक परिवार सिया को गोद लेने आया और तुम्हें, ऐसा पूछा आरव ने। मुझे नहीं, कबीर ने जवाब दिया। उसकी आवाज में वर्षों पुराना दर्द था। उस दिन उसने मुझसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे कभी नहीं भूलेगी। आरव ध्यान से सुन रहा था, लेकिन फिर जिंदगी हमें अलग अलग रास्ते पर ले गई। कई साल तक हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। हम बहन भाई तो नहीं थे, लेकिन उससे बढ़ के थे। और कबीर ने बैग से एक फाइल निकाली। करीब 6 महीने पहले उसने मुझे खोज लिया। तुम्हें पता है आरव, उसने मुझे खोज लिया। आरव की आंखें फैल गई। लेकिन उसने मुझे कभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान किस बात से, आरव ने पूछा। कबीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि उसे लगा था उसका अतीत लौट आया है। आरव के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सीधे सीधे बताइए ना, सिया कहाँ है, क्या हुआ है उसे, वो कहाँ गई और उसके साथ हुआ क्या? कबीर ने फाइल उसके हाथ में रख दी। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज, अखबार की कतरने और एक पुलिस रिपोर्ट थी। आरव ने पहला पन्ना खोला। शीर्षक पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। 12 वर्ष पुराना लापता बच्ची का मामला फिर खुला था। उसने तुरंत दूसरा पन्ना देखा एक जिज्ञासा के साथ। उसमें एक छोटी बच्ची की तस्वीर थी। वो बच्ची सिया जैसी दिख रही थी। बहुत हद तक, आरव ने कांपती आवाज में पूछा, इसका मतलब? कबीर बोला, सिया को हमेशा लगता था कि वो अनाथ है, लेकिन कुछ महीने पहले उसे पता चला कि शायद वो वास्तव में लापता हुई बच्ची है। शायद, हाँ, कुछ बातें मिलती थीं, कुछ नहीं। और अब, आरव ने पूछा, अब वो सच जानने गई है? आरव के मन में एक साथ सैकड़ों सवाल उठे। तो वो कहाँ गई है? कबीर ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। क्या मतलब? आरव ने पूछा। उसने आखिरी बार मुझे 3 दिन पहले फोन किया था। उसने कहा था कि उसे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो सब बदल सकते हैं। और उसके बाद? उसके बाद क्या भाई, फोन कट गया। फिर उसका नंबर बंद हो गया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा था। अब मामला सिर्फ एक पुरानी रहस्य का नहीं था, सिया सचमुच गायब थी। अचानक कबीर ने जेब से एक छोटी चाबी निकाली। ये उसके लॉकर की चाबी है। लॉकर? यहाँ एक से बढ़ के एक रहस्य आरव के सामने आ रहे थे, और वो एक रहस्य को संभाल नहीं पा रहा था कि तभी दूसरा रहस्य उसके सामने आ रहा था। हाँ, कबीर ने कहा, उसने कहा था अगर कभी वो संपर्क ना कर पाए तो ये मैं तुम्हें दे दूं। आरव ने चाबी हाथ में ली। उस पर एक नंबर खुदा था, 217, और पीछे एक शब्द लिखा था, विश्वास। उसी क्षण स्टेशन के लाउडस्पीकर में अचानक खरखराहट हुई। ये अजीब था, क्योंकि स्टेशन तो वर्षों से बंद पड़ा था। दोनों ने चौंक कर ऊपर देखा। फिर स्पीकर से एक टूटी हुई रिकॉर्डिंग सुनाई दी। आरव, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो अगला सुराग लॉकर नंबर 217 में है। आवाज सिया की थी। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। हवा एक तेज झोंका लेके आई। कबीर और आरव दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, ये एक खोज बन चुकी थी। एक ऐसी खोज जिसके अंत में या तो सिया मिलेगी या ऐसा सच जो उसके बारे में सब कुछ बदल देगा। और अब अगला पड़ाव था, यानी कि लॉकर नंबर 217। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो कहानी है जिसका हिस्सा मैं आप तक पहुंचा रही, उसके अगले पड़ाव की ओर हम जरूर बढ़ेंगे। और आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना शो गुंडा मैसेज मसाला, और आज का दिन है मंगलवार, लेकिन उससे पहले लेंगे एक शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर जानेंगे कि आरव और सिया की जो कहानी थी उसने आखिरकार अंतिम पड़ाव पर क्या मोड़ लिया। लॉकर नंबर 217 क्या है, और सिया को अगर पहले से ही सब कुछ मालूम था तो इतना बड़ा मैनेजमेंट उसने कैसे क्रिएट किया कि उसी टाइम पर जो रेलवे स्टेशन इतने दिनों से बंद था वहां तक आवाज का आना, लाउड स्पीकर में आवाज का आना, और बहुत सारे ऐसे सवाल जो आरव के भी मन में थे और अब कबीर के मन में भी उन सवालों के दस्तक हो चुके थे। इन सभी का जवाब लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। और हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स से। प्रिया आर्जकांक्षा जी, गुड इवनिंग दिल से, आपको भी दिल से आशीर्वाद और गुड इवनिंग आपको भी। चलते फिलहाल एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, और ब्रेक के उस पार आते हैं इस कहानी के लास्ट पड़ाव की ओर। एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

जी दोस्तों, और इस म्यूजिकल ब्रेक के अंदर ही मुझे लेनी पड़ी एंट्री, क्योंकि मैंने देखा भाई घड़ी की सुइयां बता रही हैं 7:24 हो गए हैं। मतलब अगर मैं आज स्टोरी अगर नहीं कंप्लीट करूंगी तो एक मेरे पास में डिमांड भी है, उसे भी अभी कंप्लीट करना है। तो चलते हैं फिर स्टोरी की ओर और जानते हैं कि आरव और सिया के लाइफ में आगे क्या हुआ। कहानी का वो पड़ाव जो फाइनल स्टेज पे आज पहुंचा है लास्ट मंगलवार से। चलते हैं, आपको भी वहां तक लेके जाते हैं। नीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो कहानी थी एक ख्याल जो साथ चलता रहा आज और इस वक्त, यानी कि बाय स्टूडियो क्लॉक 7:25 हो रहे हैं और अब बारी है इस कहानी के अंतिम भाग यानी अंतिम पड़ाव की। अंतिम भाग का नाम है लॉकर नंबर 217। लॉकर नंबर 217 की चाबी आरव की मुट्ठी में थी, लेकिन उसके मन में डर, उम्मीद और बेचैनी एक साथ उमड़ रहे थे। अगली सुबह वो और कबीर उस पुराने रेलवे स्टेशन के पास बने सामान गृह पहुंचे, जहां वर्षों पहले यात्रियों के लिए लॉकर हुआ करते थे। जी हां, ये लॉकर की चाबी किसी तिजोरी की नहीं थी, किसी के दिल की नहीं थी, पर हां किसी के दिल के लाखों सवाल जरूर खोलने वाली थी। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक जंग लगा हुआ लॉकर मिला। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था 217। आरव ने कांपते हाथों से चाबी लगाई, चाबी घूमी, लॉकर खुल गया। अंदर एक छोटा सा डिब्बा, कुछ कागज और एक वीडियो रिकॉर्डिंग वाली पेन ड्राइव रखी थी। सबसे ऊपर एक पत्र था, पत्र पर लिखा था आरव और कबीर के लिए। आरव ने पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, अगर तुम दोनों ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अपने जीवन के सबसे बड़े सच तक पहुंच चुकी हूं। मैं गायब नहीं हूं, ना किसी मुसीबत में हूं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए था ताकि मैं अपने अतीत को समझ सकूं। कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि मैं वास्तव में अनाथ नहीं थी। बचपन में एक मेले में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। बहुत खोज हुई लेकिन मैं कभी नहीं मिली। मुझे अनाथालय पहुंचाया गया था। हाल में कुछ दस्तावेज और पुराने रिकॉर्ड मिले जिनसे मुझे अपने असली परिवार तक पहुंचने का रास्ता मिला। पत्र पढ़ते पढ़ते आरव की आंखें भर आई थी। आगे लिखा था, मैं डरती थी कि अगर ये सब सच निकला तो मेरी दुनिया बदल जाएगी, और अगर झूठ निकला तो मैं फिर से टूट जाऊंगी। इसलिए मैंने किसी को कुछ बताया ही नहीं। कबीर चुपचाप ये सब सुन रहा था, जो कि सिया का मुंह बोला भाई था। फिर आरव ने पेन ड्राइव चलाई, स्क्रीन पर सिया दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी लेकिन उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब था। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मैं वो सफर पूरा कर चुकी हूं जिससे मैं बरसों से डरती थी। उसने कुछ क्षण रुककर कहा, कबीर तुमने बचपन में मुझे एक वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मुझसे ये वादा तुमने लिया था, मुझे याद है। मैंने वो वादा निभाया है।
तुम मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक हो। कबीर की आंखें नम हो गई। फिर सिया ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा, और आरव, ये सुनते ही आरव की धड़कन तेज हो गई। उसका दिल धक धक धक धक करने लगा। तुम मेरी जिंदगी में उस समय आए जब मैं खुद को समझने की कोशिश कर रही थी। तुमने कभी मेरे अतीत के बारे में कोई सवाल नहीं किया, लेकिन हमेशा मेरे साथ, मतलब मेरे आज का साथ दिया। हर किसी को जीवन में कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिलता जो बिना शर्त भरोसा करे, पर मुझे मिला तुम्हारे रूप में। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। फिर वीडियो में सिया मुस्कुराई। अब आखिरी बात, तुम दोनों बाहर जाकर लॉकर के पीछे वाली दीवार को देखना। वीडियो समाप्त हो गया। दोनों तुरंत बाहर निकले। लॉकर के पीछे पुरानी ईंटों की दीवार थी। उस पर सफेद रंग से एक तीर बना था। तीर का निशान स्टेशन के पीछे वाले बगीचे की ओर इशारा कर रहा था। वे दोनों तेजी से वहां पहुंचे। बगीचे के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था और उसके नीचे कोई खड़ा था। सफेद सूट, वही मुस्कान, वही शांत सी आंखें, और वो थी सिया। कुछ क्षण के लिए समय जैसे रुक सा गया था। आरव को यकीन ही नहीं हुआ, सिया मुस्कुरा रही थी। सरप्राइज, कबीर हंसते हुए बोला, तुम्हें अंदाजा है हम कितने परेशान हुए थे? है सिया ने सिर झुका कर कहा, लेकिन मैं चाहती थी जब मैं लौटूं तो अपने सारे सवालों के जवाब लेकर लौटूं। तो क्या सच मिला? आरव ने पूछा। सिया की आंखें चमक उठी। हाँ, मुझे मेरा परिवार मिल गया, सच मुझा। उसकी आवाज़ भारी थी। माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने मुझे कभी ढूंढना बंद ही नहीं किया था। तीनों कुछ देर चुप रहे। कभी कभी खुशी के पल शब्दों से नहीं, खामोशी से बयां किए जाते हैं। फिर सिया ने धीरे से कहा, लेकिन एक बात और समझ आई मुझे। क्या? परिवार सिर्फ वो नहीं होता जो हमें जन्म देता है। उसने कबीर की तरफ देखा जो उसका मुंह बोला भाई था। परिवार वो भी होता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहता है। पर उसने आरव की तरफ देखा, और कभी कभी परिवार हमें रास्ते में मिल जाता है। शाम ढल रही थी। बरगद के पत्तों ने छन कर धूप फेंकना अब धीरे धीरे कम कर दिया था। तीनों के चेहरे उस धूप से एक दूसरे को देख रहे थे। सिया ने अपनी डायरी आरव के हाथ में रखी। अब इसका आखिरी पन्ना पढ़ना। आरव ने पन्ना खोला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कुछ लोग हमारी कहानी में आते नहीं बल्कि हमारी कहानी बन जाते हैं। आरव मुस्कुराया। उसे याद आया, एक बस स्टॉप, एक अनजान मुस्कान, एक ख्याल, और वही ख्याल जो आज उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। उस दिन तीनों ने अतीत को विदा कहा और भविष्य की ओर अपना अगला कदम बढ़ाया। क्योंकि हर रहस्य का अंत डर में नहीं होता दोस्तों, कुछ रहस्य हमें हमारी मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। आपको लगा था ना, मुझे मालूम है आप लोगों को लगा कि कोई तो सस्पेंस है, और इतने सारे सस्पेंस के साथ में क्या हैप्पी एंडिंग होगी? हाँ भाई, लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग के बिना लव स्टोरी ख़त्म ही नहीं होती। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ लोग संयोग से मिलते हैं, लेकिन उनका साथ किसी वरदान से कम नहीं होता। रिश्ते खून से बने या भरोसे से, उसकी असली पहचान मुश्किल समय में साथ निभाने से होती है। और कभी कभी एक छोटा सा ख्याल पूरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी बन जाता है। हाँ, उम्मीद है कि आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। हम चलते हैं एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। उससे पहले हम, जी हाँ, वेलकम कर लेते हैं कमल लैन जी का, और उम्मीद है कि आप कुशल मंगल के साथ होंगे, यानी कि बहुत अच्छे होंगे।
और इसी के साथ में रामकृष्ण नंदन जी का भी मैसेज आ रहा है, तो मैसेज को आने देते हैं, तब तक लेते हैं एक शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे हम, फिर कुछ मैसेजेस लेंगे और फिर हमारे जाने का वक्त होगा, और आरजे आपकी प्यारी सिंपल यानी कि आरजे सिंपल के आने का वक्त हो चलेगा, और गीत आपके नाम से का भी वक्त हो चलेगा। चलते हैं इस शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, बने रहिए आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो गैनेस्ट 89.6 FM गुंडा शहर की धड़कन के साथ। अब मुझे दीजिए इस एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के साथ में कुछ पल बिताने का वक्त।

हाँ जी, और आपने अभी इस प्यारे से नगमे का उठाया लुफ्त, और अभी हम चलते हैं चैट बॉक्स की ओर और कुछ मैसेजेस लेते हैं, और लेते हैं आप सभी से अलविदा। हाँ जी, और जाते जाते हम कंप्लीट करके जाएंगे हमारी रीना जी की डिमांड। और रामकृष्ण नंदन जी का कहना, भाई कल इनको थोड़ा सा टेंशन हुआ था इसीलिए ये अपने गाने को सुन नहीं पाए थे, तो आज फिर से इनके गाने को हम बजा देंगे, मतलब लगा देंगे, प्ले कर देंगे, ट्यून कर देंगे। और इन्होंने चाहा कि हम अपनी पसंद का कोई सैड सॉन्ग बजाएं, तो जो हमने कल ही इनके लिए प्लेलिस्ट किया था वही आज फिर से इनके लिए बजाएंगे। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं हम चलेंगे अपनी रीना शर्मा जी की कहानी की ओर, और फिर अपनी कहानी नहीं यार, सॉन्ग की ओर, फिर आएंगे नेक्स्ट सॉन्ग को लेकर के। और रीना जी का फीडबैक भी आ गया, कहानी बहुत अच्छी थी, और सिया जी और आरव जी की, ओके बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे

जी हाँ दोस्तों, और अब चलते हैं उस गाने की ओर जिसकी डिमांड कल से ही पेंडिंग पड़ी हुई है, यानी कि रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी की डिमांड। और इन्होंने सुना चाहा है एक सैड सॉन्ग, तो हमारी पसंद का ये सैड सॉन्ग हम आप तक पहुंचाते हैं। और स्वागत और इस्तकबाल करेंगे जुगल किशोर वर्मा जी का एमपी से। इन्होंने हमें बोला है, शुभ संध्या आर्य आकांक्षा मैम, आपकी संध्या बहुत बेहतरीन हो। मिश्रा ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी ने भी गुड इवनिंग बोला है, आपकी भी इवनिंग बड़ी ही प्यारी और सुकून भरी हो। इसी के साथ अब दीजिए आपकी अपनी आर्य आकांक्षा को यहाँ से विदा। सुनते रहिए रेडियो 89.6 एफएम गोडा शहर की धड़कन। और हाँ जी, एक बात और, आपकी अपनी आरजे सिंपल आ ही रही होंगी, तो अपने डिमांड्स लगाना शुरू कर दीजिए भाई। एक ही जगह तो है जहाँ आप मांग पूरी करवा पाते हैं हम आरजे से, तो बिल्कुल डिमांड कीजिए। सुनते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी ग्रेट इवनिंग टू ऑल ऑफ यू।

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। सो कैसा लगा आज का ये नगमा आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से? ये पेशकश था आप सभी के लिए। कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में? बहुत खास खास, बहुत प्यारी प्यारी प्यारी, ओ माय गॉड वाली बात जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए। जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्यों? क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके, और गीत आपके नाम से तो रहेंगे ही रहेंगे। और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। सो कैसे हैं आप सब? हाँ, मंगलवार के दिन सब मंगल मंगल है ना। सो कैसे हैं? वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड स्वागत इस्तकबाल करती है आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल जुगल किशोर वर्मा जीएमपी से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा जी, बबीता गोंडा से अनुष्का श्रावस्ती से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, नेहा बहराइच से, मनीष शर्मा को रासा गोंडा से, मोहम्मद मुशीफ जी बाराबंकी से, निशा पटेल नगर गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, बजी रानी बाजार सुनारकली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, मालवीय नगर से, राजेश सिंह जी, राकेश वर्मा दुकरननाथ गोंडा से, चांदनी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल। हाँ, और अल्फिया स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली पहली पहली पहली पहली फरमाइश। और पहली फरमाइश हमारे पास में है ओ एम जी मीन्स जग्गू दादा की, और जग्गू दादा को सुनना है गाना दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। सो एंजॉय करते हैं दादा मूवी का ये वाला गाना हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी भी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। How sweet I am, no? वो तो आप ही लोग जानते होंगे।

फिलहाल ये वाला गाना तो नहीं बजने वाला है, लेकिन ये वाला गाना जरूर बजने वाला है। सो एंजॉय करते हैं बबीता जी की फरमाइश पर, कौन सा वाला गाना ये आप अभी सुन के गेस कर ही लेंगे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

दम की कसम हम दम के लिए, हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना बबीता जी की फरमाइश पर, और बबीता जी हैं गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। एंड दोस्तों, अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है? अगली फरमाइश है हमारी बबीता जी की फ्रेंड अनुष्का की। बबीता तो है गोंडा से और अनुष्का है श्रावस्ती से, लेकिन इन दोनों की फ्रेंडशिप ओ माई गॉड, और साथ ही साथ में इन दोनों की प्लेलिस्ट कमाल की रहती है दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं अनुष्का की फरमाइश पर ये वाला गाना, हाँ, जिसका सुनकर एक बार ठुमकने का और दो बार ठुमका लगाने का जरूर सबका मन कहेगा। सो एनर्जी से भरपूर नगमा एंजॉय करते हैं अनुष्का की फरमाइश पर, जो कि है श्रावस्ती से।

0: तो गुल्लक फोड़ के लहंगा आ गया है और चलिए अब लहंगे को पहन कर किसी शादी फंक्शन में जाते हैं और मजा करते हैं ना अनुष्का जी। सो हम एंजॉय किया है ये गाना अनुष्का की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है गाना तन्हा दिल घबराता है मीठा दर्द जगाता है। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू की आवाज में त्यागी मूवी का ये गाना हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो अनिल वर्मा जी फ्रॉम सैदापुर। स्टे ट्यून्ड।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
2: हाय,
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। हेलो केके गुप्ता जी, तिरंगा कॉम्प्लेक्स से स्वागत है आपका।

इसीलिए भी मैंने भी किसी के पास टेलीफोन किया था और टेलीफोन करने के बाद में पता चला कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर अभी कहीं और व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद पुनः कॉल करें या फिर थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, धन्यवाद। ऐसे ही बोला था, फिर दोबारा ना मैंने पुनः कॉल किया और प्रतीक्षा, वो भी आपकी आर जे सिंपल, प्रतीक्षा के लिए आपकी आर जे सिंपल तो प्रतीक्षा करे ना, और ऐसे किसी से कॉल पे बात करने के लिए आपकी आर जे सिंपल प्रतीक्षा करे, नो नेवर, हाँ नेवर एवर। हमने एंजॉय किया ये वाला गाना, बहुत ही सुपर डुपर डुपर हिट गाना, किसकी फरमाइश पर, धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर, जो कि है आवाज विकास गोंडा से, और के गुप्ता जी का कहना है इस गाने के लिए सिर्फ और सिर्फ टेलीफोन और बहुत सारे टेलीफोन और उसी के साथ में बहुत सारे गुलदस्ते, बहुत सारा दिल, एक एक दिल, फिर दो दो दिल, फिर पटाखे भी फूट रहे हैं, फिर सितारे भी निकल रहे हैं, फिर मन में लड्डू भी फूट रहे हैं, फिर चांद सितारे सब इकट्ठा हो रहे हैं। भाई इसका मतलब इनका फेवरेट वाला गाना है। इसी के साथ में मोहम्मद मुशीफ जी का बाराबंकी से कहना है कि ये टेलीफोन वाला गाना तो मेरा भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश और देखते हैं अगली फरमाइश किसकी किसकी है फेवरेट वाली फरमाइश। सो दोस्तों हमारे पास में अगली फरमाइश है अल्फिया की, और अल्फिया को सुनना है गाना राहों में तेरी, मैं जाऊं बिखर अगर साथ मेरे हो तू हम सफर। सो फाइनली हम सफर गाना एंजॉय करते हैं सैयारा का, हमारी अल्फिया की फरमाइश पर। अल्फिया आपके सब्र की घड़ी खत्म हुई, एंजॉय करते हैं आपकी फरमाइशी गीत को हम सभी के साथ में। स्टे ट्यून्ड।

अगर साथ मेरे तू है हम सफर, हमने एंजॉय किया है अल्फिया की फरमाइश पर सैयारा का ये वाला नगमा एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सुरेंद्र यादव जी की, और सुरेंद्र यादव जी को गौरा चौकी से सुनना है गाना हम तुम पिक्चर देख रहे। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में रंग मूवी का ये गाना हमारे सुरेंद्र जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

अच्छा तो तुम ही दोनों चले जाना सर्विस करने के लिए। क्यों, सही कहा ना मैंने, हीरो हीरोइन को कह देंगे कि जो भी मेंटेनेंस की दिक्कत आ रही हो जाके आप ही चेक करो, चेक करने के बाद में फिर अगर आपके लायक होगा तो आप सही करना, नहीं तो फिर जिसका काम होगा उसको बुलाया जाएगा, है ना। ऐसे परवाह कर रहे हैं ये लोग, रोमांस भी कर रहे हैं और परवाह भी कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। सबने एंजॉय किया है रंग मूवी का ये गाना हमारे सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर, जो की है गौरा चौकी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा की, और अजय मिश्रा को मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से सुनना है गाना एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाना दिल ये बताना, कुछ ऐसी लिरिक्स हैं, सो एंजॉय करते हैं कहो ना प्यार है का ये ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल का गाना सिर्फ और सिर्फ अजय मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

गोंडा से अजय मिश्रा की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा कहो ना प्यार है का गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मुमताज अंसारी जी की, और मुमताज अंसारी जी को सुनना है गाना मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम, और दिल अपना चीर कर हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। सो एंजॉय करते हैं ये गाना मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर। स्टे

मौका मिलेगा हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं। सनम दिलवाले का ये गाना हमने एंजॉय किया है। मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से, और मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। सो एंजॉय करते हैं एक लड़का एक लड़की का ये गाना साधना जी की और कुमार सानू जी की आवाज में ये सदाबहार नगमा मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर जो की है बाराबंकी से। स्टे ट्यून।

जितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम, वो हमने एंजॉय किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा साधना सरगम और कुमार सानू जी की आवाज में मोहम्मद मुर्शीद जी की फरमाइश पे, जो की है बाराबंकी से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेश कुमार जी की चौक से। सुरेश कुमार जी को चौक से सुनना है गाना मुझे रात दिन बस। सो एंजॉय करते हैं सोनू निगम जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा संघर्ष का नगमा सुरेश कुमार जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सुरेश कुमार जी की चौक से बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहित की मालवीय नगर गोंडा से, और मोहित को मालवीय नगर गोंडा से सुनना है गाना दगाबाज रे। सो एंजॉय करते हैं दबंग 2 का ये वाला गाना। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने हम सब के अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। सो पेट पूजा करके आइएगा, मिलते हैं सीधे 9 बजे, एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
4: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
6: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5,00,000 रुपए मिलेंगे।
5: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
7: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
5: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: तुझसे बिल्लो,
1: अरे बिल्लो बोला बिल्लो,
0: जो भी देख यही पूछ है किसकी जगाती है कयामत कोई।

हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो वायुनंदन द्विवेदी जी, आपका स्वागत है तान्या गोंडा से। वेलकम इन योर शो फरमाइशी एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आनंद कुमार ठाकुर, आपका भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है केके गुप्ता जी की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, और केके गुप्ता जी को तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से सुनना है गाना यमला पगला दीवाना मूवी कल। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

टिंकू जी और इश्क का मंजन घिसे हैं पिया, हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना केके गुप्ता जी की फरमाइश पर, जो कि तिरंगा कॉम्प्लेक्स को नरसेना। लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनिल शास्त्री जी गोरखपुर से आपका स्वागत है और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना तुम पे मर जाएंगे, सो एंजॉय करते हैं पलक मचल का ये गाना हमारे अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

फरमाइश हमारे पास में आई थी दोस्तों अनिल वर्मा जी की तरफ से, जो कि हैं सैदापुर से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मनीष शर्मा की खुरासा गोंडा से, और मनीष शर्मा को खुरासा गोंडा से सुनना है गाना भीड़ में तन्हाई में मुझे तुम याद आते हो। सो एंजॉय करते हैं उदित नारायण और श्रेया जी की आवाज में ये नगमा मनीष शर्मा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी मनीष शर्मा की खुरासा गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल शास्त्री की गोरखपुर से। अनिल शास्त्री जी को गोरखपुर से सुनना है गाना तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। ओ नहीं नहीं नहीं, मिस्टेक हो गई, ये तो फरमाइश है निशा जी की। अनिल शास्त्री जी की फरमाइश है मुझे इश्क है तुम्ही से। सो मोहम्मद रफी जी की आवाज में इंजॉय करते हैं अनिल शास्त्री जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

से फरमाइश थी अनिल शास्त्री जी की गोरखपुर से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है निशा की पटेल नगर गोंडा से। और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही दर्द भरा सा नगमा अनु दुबे की आवाज में हमारी निशा की फरमाइश पर। स्टेट

पर ये प्यार कहाँ पाओगे और तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। भाई ये गाना भले ही दर्द भरा हो, भले ही बेवफाई वाला हो, भले ही लोग इसको मतलब दुख के टाइम पे सुनना चाहते हो, लेकिन एकदम रियलिटी चेक करने वाला गाना है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये गाना, हमने इंजॉय किया है निशा की फरमाइश पर ये गाना। और निशा है पटेल नगर गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी रीवा। आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल। सो चले चलते हैं बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ, जिसके साथ में आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी से लेना चाहेगी अलविदा। सो अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है मेहरबान मूवी के गाने की। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चल के मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक हाथ जाते तब ये गाना बनता ही नहीं दोस्तों, आसमां तक हाथ नहीं जा रहे इसीलिए ऐसे गाने बन रहे। कैसे प्रोवोक करते हैं ना, कहने की बात कुछ और होते हैं। जो वो एक कहावत है ना कि हाथी के दांत देखने के कुछ और खाने के कुछ और, तो ये इश्क प्यार मोहब्बत भी एकदम हाथी के दांत की तरह होता है, देखने में कुछ और खाने में कुछ और। क्यों सही कहा ना मैंने। सो चले एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, लेती हूँ इसी के साथ में अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना तो बिल्कुल मत भूलना, और आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना तो कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि इस कुर्सी को छोड़ने के बाद में रास्ते में लगा हुआ भंडारा, भंडारे से प्रसाद ग्रहण करने के बाद में सॉरी मतलब हाँ मेरा बहुत देर आते टाइम भी मेरा मन था, वो तो मैं लेट हो रही थी, लेकिन जाते टाइम डन प्रसाद तो लेना ही लेना है, तो भंडारे से प्रसाद लेके खा के फिर पटाख से घर के लिए निकलना है। सो मैंने तो ये सोच लिया है। सो मुझे बहुत सारा मिस करना, मिलते हैं कल। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपके आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए आप सभी की तरफ से, और आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, बाय बाय बाय बाय बाय, और एंजॉय करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा गाना। कभी कभी कितना ओवर ड्रामा करने लगती हूँ ना मैं, लेकिन दोस्तों कभी कभी चलता है ओवर ड्रामा, कभी कभी ओवर ड्रामे की जरूरत पड़ती है। सो आप सुन रहे रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपके पियाजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। बाय, मिलते कल।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गैनेस्ली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बाहर ए गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। क्या बात है भाई, आज हमारी शुरुआत बीट्स कुमार जी से हुई है और हैप्पी वेरी हैप्पी वैल्यूएबल इवनिंग। क्या बात है भाई, क्या बात है, शाम और वो भी वैल्यूएबल, क्या शब्द इस्तेमाल किया भाई, शब्दों का चयन बहुत अच्छा लगा आपको इट्स कुमार जी हमारा। रोहित जी हेलो सर, एक शाम और आई हो जाने को, कुछ मीठे सपने और आँखों में सजाने को, कुछ खट्टी मीठी कुछ खट्टी यादें भी साथ लाई है, मीठे पलों की कीमत बताने को, शाम सलाम स्वीकार करिए बहार गज़ल के उद्घोषक महोदय। जी हाँ बिल्कुल, आपका शाम सलाम और आदाब हम दोनों इस्तकबाल करते हैं आपका आपके ही शो में। झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है। झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, उसकी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। जिस शायर ने ये बात बोली 18 साल की उम्र में मुशायरे पर, एक मुशायरे के दौरान जिंदगी के 40 साल गुजारने के बाद, जब वो शख्स माइक पर फिर आया जिंदगी के तजुर्बात को लेकर, दुनिया की मसलहत को लेकर, तो उनके जुबान पर शेर था कि जनाजे पर मेरे लिख देना यारों, जनाजे पर मेरे लिख देना यारों, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। इस 40 साल की उम्र में उन्होंने जिंदगी के कई सारे पड़ाव देखे। अनुभव एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी बाजार से नहीं खरीद सकते, ये आपको जिंदगी जीकर ही मिलती है। 40 बरस की जिंदगी के धूप छांव देखने के बाद वो मुशायरों की दुनिया के सरपरस्त बने, और हम आप उन्हें राहत इंदौरी के नाम से जानते हैं। आज हमारा कार्यक्रम बेस्ड होने वाला है राहत इंदौरी पर। झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, उसकी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। इसी प्रकार से लाइफ चलती है, और हम बोलते रहते हैं क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। अरे दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, आपको लिखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। और एक बात यहां पर और आई कि किसी शायर ने कहा कि बोलने पर लगा दी पाबंदी, बोलने पर लगा दी पाबंदी, उसने लिखना सिखा दिया मुझको। यानी बोलने पर पाबंदी लगा दी, तुमने कहा ठीक है अब बोलेंगे नहीं, अब लिखेंगे। और आप सभी जानते हैं पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कलम में तलवार से ज़्यादा ताकत होती है। इस दुनिया की जितनी भी क्रांतियाँ हुई उनमें वहाँ के कलमकारों का, वहाँ के दानिश्वरों का बड़ा हाथ रहा। अगर फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, तो रूसो, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू जैसे लोग निकलते हैं। जीन जैक्स रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखते हैं और कहते हैं कि अगर मुझे आज़ादी ही देनी है तो वो आज़ादी दो जो जन्म के पहले की आज़ादी थी। टर्न टूवर्ड्स नेचर, प्रकृति की ओर लौटो कहा जाता है। तो जो कलमकार होते हैं साहब, वो जिंदगी को बदलते हैं।
जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। ये वतन इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यहाँ कलम बोलती है। और एक वाकया मेरे दिमाग में आया कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जी और दिनकर जी लाल किले से सीढ़ियाँ उतर रहे थे, अचानक कहीं नेहरू जी का पैर लड़खड़ाया। दिनकर जी ने उनको सहारा दिया, उन्होंने कहा भाई धन्यवाद, आज आप न होते तो हम गिर जाते। कलमकार ने कहा कि जब कभी भी सियासत लड़खड़ाती है तो साहित्यकार उसे सहारा देता है। ये इसीलिए कहा जाता है लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाज का दर्पण है। जी हाँ, अनिल शास्त्री दादा चरण स्पर्श करते हैं आपको, शुभ संध्या, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। रूही जी हमारे साथ हैं और नवा शिकार उन्होंने कुछ कहीं किया होगा। और थोड़ा अपडेट वर्जन नमस्कार का, जी हाँ अच्छा, ये अपडेट वर्जन है नवा शिकार की, जी वाह क्या बात है। और ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप इसको उल्टा कर दीजिए तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द सामने आता है, दैट इज़ मॉम, MOM। सविता शास्त्री आ चुकी हैं, शुभ संध्या सर जी। जी चरण स्पर्श आपको प्रणाम, आपको उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। ओ और इसके पश्चात वाह राहत इंदौरी साहब, वाह सच में शेर है, वास्तव में शेर है भाई। और उन्होंने कहा था कि एक शेर पैदा होने में कम से कम 9 महीने का समय लगता है। जब वो किसी मुशायदे में गए तो उनसे कहा गया कि कुछ नया सुनाइए, ये सुना हुआ है, ये शेर आपका सुना हुआ है। उन्होंने कहा बेटे एक शेर को पैदा होने में कम 9 महीने का समय लगता है। अभी ये 4 महीने पहले का लिखा हुआ शेर है, नया शेर आने में कुछ समय दो। तो उस युवक ने कुछ बोला और इत्तेफाक ये था कि मैं उस मुशायरे को सुन रहा था, अयोध्या में मुशायरा था। तो जरा जो यूथ लड़के होते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो अपने सामने किसी को गिनती नहीं, कहा जाता है एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्टॉर्म, जो किशोरावस्था होती है वो तूफान का काल होती है। अपने सामने किसी को कोई गिनता नहीं है। आप देखिए बच्चों को जो एडोलसेंस की अवस्था में है, 18-21, 13 से 18-21, 22 साल की उम्र में, वो कहीं मैं सब आई कैन डू एवरीथिंग, और ये अच्छी बात भी है। तो उस लड़के ने कुछ बोला तो राहत इंदौरी ने कहा कि मेरी जान, मुस्कुराते हुए, जहाँ तुम बैठे हो वहां पहुंचने में मुझको 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं यहां आने में तुम्हें 5,000 साल लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला सबको लेखनी नहीं देता। खर्च करने से पहले कमाया करो, जिंदगी क्या है खुद समझ जाओगे, बारिश में पतंगे भी उड़ाया करो। जी हाँ बिल्कुल, क्या बात है भाई, अनिल शास्त्री ने तो एकदम उनकी पंक्ति। और वास्तव में उन्होंने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी पेशानी पर ये ऐलान लिख देना, मेरे खून से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। क्या जी जी जी जी, हमारा मकान थोड़ी है, क्या बात है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। उन्होंने मुशायरे में कहा, बात याद आ गई मुझको, कि सरकार चोर है। तो उनके घर पर पुलिस आ गई तो कहा कि आपके नाम से वारंट है। तो राहत इंदौरी ने कहा कि वारंट है क्यों, कहीं कल रात आपने मुशायरे में कहा कि सरकार चोर है। तो राहत इंदौरी साहब ने कहा मैंने ये तो नहीं कहा कि कहाँ की सरकार चोर है,
भारत की चोर है, पाकिस्तान की चोर है, अमेरिका की चोर है, इंग्लैंड की चोर है, ऑस्ट्रेलिया की चोर है, कहाँ की सरकार चोर है, मैंने ये तो नहीं कहा। हमने सिर्फ इतना कहा कि सरकार चोर है। पुलिस वाले ने कहा अच्छा तो आप हमें बेवकूफ़ भी समझते हैं। इसका मतलब पुलिस वाला ये मानता था कि सरकार कहाँ की चोर है। तो ये उनके बात करने का अपना एक सलीका था, मतलब उनकी बातों में, उनकी बातों का तोड़ ढूंढने में लोग सोचते थे कि हमने किससे पंगा ले लिया। चलिए भाई, बात बहुत ढेर सारी हो चुकी है और आप लोग भी शिरकत कर रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं एक नगमों की दुनिया में, और नगमों की दुनिया के पश्चात आएंगे गज़लों की दुनिया में। फिलहाल आज की शुरुआत एक नगमे से करते हैं, और कायनाती गला हिंदुस्तान में दो व्यक्तियों का माना गया, एक मोहम्मद रफ़ी जिनका मंदिर बना हुआ है, और एक जिनके कंठ में माँ शारदे साक्षात निवास करती थी अर्थात लता मंगेशकर। आइए एक नगमे से शुरुआत करते हैं, और इस नगमे के पश्चात आपको फिर ले चलते हैं गज़ल की ओर। सुनते रहिए और रेडियो गैनेस्ट्री 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।

आप लोग बहुत विद्वान हैं भाई, और विद्वता से आपने ये परख लिया होगा कि ये सामान्य नगमे नहीं थे, ये जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, तू छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की ये आवाज है। आत्मा की आवाज मतलब सूफिज्म है इसमें, अगर आप तलाश करें तो। और साहब चांद में लोग तलाश करते हैं महबूबा को, कहीं मामा को, और इस गीत में, इस नगमे में चांद को न्यायाधीश बना दिया। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। आप जो फैसला सुना देंगे वो मंजूर होगा। यानी यहाँ पर प्रकृति का ऑब्जेक्ट जज की भूमिका निभा सकता है, ये कलमकार ही कर सकते हैं कमाल। मतलब आप फैसला सुनाएंगे और जो आप सुनाएंगे वो हमको मंजूर होगा, ये दोनों कह रहे हैं, क्या बात है। और दोनों उस फैसले को के लिए तैयार हैं। अब बढ़ते हैं राहत इंदौरी साहब की ओर। उन्होंने कहा, दुश्मनी जब किसी से की जाए, दुश्मनी दोस्ती जब किसी से की जाए, जब आप किसी से दोस्ती करें, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। इंसान हो, परिवार हो, देश हो, समाज हो, खतरा हमेशा अपनों से होता है। ये हमने इंडियन पिक्चर में सुना था, डायलॉग था ओमपुरी का। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए, मौत का जहर है फजाओं में, मौत का जहर है फजाओं में, अब कहाँ जाके सांस ली जाए, बस इसी सोच में हूँ डूबा हुआ, बस इसी सोच में हूँ डूबा हुआ, ये नदी कैसे पार की जाए, अगले वक्तों के जख्म भरने लगे, अगले वक्तों के जख्म भरने लगे, आज फिर कोई भूल की जाए, क्या बात है। लफ्ज धरती पे सर पटकते हैं, क्या एहसास देखिएगा साहब। लफ्ज धरती पे सर पटकते हैं, गुंबदों में सदा न दी जाए, कह दो इस अहद के बुजुर्गों से, कह दो इस अहद के बुजुर्गों से, जिंदगी की दुआ न दी जाए, बोतलें खोल के तो पी बरसूं। आय क्या बात कही उन्होंने, कहा जिंदगी भर बोतल खोल के पिया मैंने, बोतलें खोल के तो पी बरसों, आज दिल खोल कर पिया जाए। और जिंदगी के बारे में वो कहते हैं कि तुम जियो और जियो हजारों साल, ये अगर दुआ है तो बद्दुआ क्या है। और एक शायर होने के नाते नहीं, वो एक महबूब होने के नाते ऐसा बोलते हैं कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरी

सच्चाई क्या है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहाँ अब पहले जैसी है। अरे फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सा, क्या अंदाज था, इसी अंदाज से कहते थे वो। और सोचिए एक महबूब होने के बाद जब वो एक वालिद बने, पिता बने, तो उनका शेर कितना गजब का आता है। वो कहते हैं कि सबकी नींदों में चलें, ख्वाबों में शामिल हो जाएं, सबकी नींदों में चलें, ख्वाबों में शामिल हो जाएं, लोग सोए हैं चलो शहर में दाखिल हो जाएं, कीमतें क्या है हमारी उसे मालूम नहीं, कीमतें क्या है हमारी उसे मालूम नहीं, उसकी कोशिश है कि हम उसे मुफ्त में हासिल हो जाएं। और अंत की दो पंक्तियां दुनिया के हर पिता का दर्द बना। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी मौत मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे, ऐ मेरी मौत मुझे कुछ दिनों मोहलत दे दे, मेरी कोशिश है कि मेरे बच्चे किसी काबिल हो जाए। तो जब वो एक महबूब के रूप में उतरते हैं तो एक महबूब आता है, पिता के रूप में उभरते हैं तो पिता आता है, बच्चे के रूप में उभरेंगे बच्चा भी आएगा। जी हाँ, अपने बेटे को सिखाएंगे भी वो भी गज़ल आपको सुनाऊंगा मैं। और भाई नीना जी आ चुकी हैं, आदाब करते हैं आपको, खैर मकदम है आपका, स्वागत करते हैं आपका आप ही के शो जी बहारे गज़ल में। जी छलिया का तत्पर्य है माया देवी से, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अपनीश कुमार जी। मेरा मानना है अभी तक अध्ययन के अनुसार आत्मा नाम की कोई विषय वस्तु न होती है, केवल चेतना होती है, एक एनर्जी है जो मृत्यु पर्यंत ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। जी हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक माना गया तो लोग यही मानते हैं। नज ने कहा पुराने नग में क्या बात है, मेरे अध्ययन के साथ साथ धार्मिकता बिल्कुल शून्य हो गई, पता न क्यों सर। नहीं नहीं बिल्कुल आध्यात्मिकता शून्य हुई, आपने तो इतनी अच्छी बात कही। हाँ जी आपने ज़्यादा पढ़ लिया, जी हाँ। और रूही जी हमारे साथ हैं, भाई ये दिल तुम बिन नहीं लगता नहीं, क्या बात है भाई। और इसके बाद रूही जी हैं हमारे साथ, मनी शर्मा जी जुड़ चुके हैं जी। किसको खंजर मार रहे हो सर जी? अरे आपके अलावा, आप श्रोताओं के अलावा कौन है साहब, अपना सुख अपना दुख अपना गम मनी शर्मा जी आप ही लोगों से तो बांटेंगे, और कहाँ बांटेंगे जी। और अन्ना जी हैं, रूही जी हमारे साथ बनी हुई हैं। मुझे न कुछ आया है न कुछ आएगा, ये चोला धरती का है साहब, यहीं छोड़ कर जाएंगे, क्या बात है भाई। आइए अब आपको सुनाते हैं, सफ़र की धूप में साया तलाशते रह गए, आवाज़ मखमली आवाज़ के मालिक जगजीत सिंह की आवाज़ में ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए। इस गजल को जरा ध्यान से सुनिएगा।

सोचने का नजरिया है दोस्तों, लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। और जब इस गीत को हम सुन रहे थे तो वो गीत भी याद आया मुझको कि अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरा दिल जाए चाहे मेरी जान जाए। और जी हाँ, खुशखबरी की बात यह है कि भाई चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। जी हाँ, उनके कदम इस महफिल में क्या पड़े, खिजा में मानो बहार सी छा गई। जी मैं बात कर रहा हूँ श्री अशोक त्रिपाठी जी की, जिनके बारे में मैंने कभी कहा कि इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। लेकिन उनको देखकर लगता है कि भारतवर्ष में रहने के बावजूद इतना शानदार व्यक्तित्व अपना बना पाना शायद बहुत मुश्किल होता है। अगर आप उनसे कभी व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे तो आपको लगेगा कि वो वास्तव में एक व्यक्तित्व है, और मैं मिला हूँ तो मैं मानता हूँ। उन्होंने कहा है कि दर्द तो हमें भी होता है मुर्शिद, मसला ये है शिकायत किससे करें। अरे हमसे कह दीजिए, लेकिन हमसे भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आँख तक आ भी नहीं सकता। बात तो सच है सर, बात तो सत्य है प्रभु। अगर आपको तकलीफ है तो आप तो दुनिया भर की तकलीफों का हल निकालते हैं, आपकी तकलीफ होगी तो उसका हल तो मुझे लगता है कि बस वही होगा कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। इंसानों के बस की बात आपकी समस्या का हल करना नहीं है, और ना वो आपके दर्द को कम कर सकता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। क्या बात है भाई, बहुत बहुत चरण स्पर्श आपको, और आपका एक संदेश प्राप्त हुआ और हमारी तबीयत खुश हो गई। हमारे इस महफिल में आपने चार चांद लगा दिए, एक बार पुनः चरण स्पर्श आपको। और सत्यज लिखती हैं बहुत अच्छी गज़ल, जीवन पर्यंत क्लास जारी रहती है, कभी किसी चीज़ की कभी किसी चीज़ की। जी हाँ बिल्कुल, धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ हैं जी, नमस्कार आपको भी। मनीष शर्मा जी ने लिख दिया है, बारिश शुरू हो चुकी है भैया, कुछ देर के लिए रुकवा दो, हम जरा अपने घर पहुंच जाएं। और इसके पश्चात नीना जी हैं जी, आज पूरे चैट रूम में की बहन मेरे फ़ोन की थी, दीपांशी तिवारी, नव्या और सुंदर, क्या बात है भाई। रुई जी को गीत बहुत पसंद आया। और धर्मेंद्र लिखते हैं, मनोज सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, आप ऐसा गाना बजा दीजिए कि क्या ही, बहुत ही लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शास्त्री लिखते भाई धन्यवाद और शुक्रिया जी, और बताते जाइए जी। और मैंने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। तो अब राहत इंदौरी जी की बात करते हैं, उन्होंने एक पिता बने तो उन्होंने अपने बेटे से क्या कहा, उन्होंने कहा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मगर हद से गुजर जाने का नहीं, जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, मतलब इतना धैर्य, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। वह आपने कविता सुनी होगी, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, और सितारे नोच कर ले आऊंगा मैं, सितारे
नोच कर ले आऊंगा मैं, खाली हाथ घर जाने का नहीं। और अंतिम पंक्ति लगता है कोई शेर दहाड़ा, कहता है वो गर्दन नापता है, नाप ले, वो गर्दन नापता है नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। जी हाँ, ये सीख एक पिता अपने पुत्र को अवश्य उनको देनी चाहिए। ठीक है, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हों। प्रबल मिश्रा जी हमारे साथ, भाई बहुत समय के बाद आए रूही जी। जी, और अब घड़ी की सुइयाँ बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहेगा। प्रबल जी आपको खास नमस्कार, और आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे भाई अपने खजाने के साथ। आप तैयार रहिएगा, कल कालीन प्रोग्राम है, आसमान वाले ने चाहा तो कल आपसे मुलाकात होगी। कल आप होंगे श्रोता और बाकी लोग जब गाएंगे तो वो वक्ता हो जाएंगे, और मैं भी यहाँ पर बैठकर केवल श्रोता का ही काम करूँगा। चलिए, कल की प्रतीक्षा में अगर आसमान वाले ने चाहा तो आपसे पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। प्रसन्न रहिएगा, खुश रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठ पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु। आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी डर। गीता के हाथ में किताब थी और वो इधर उधर देखे जा रही थी क्योंकि सुधीर उसके हाथ में किताब पकड़ाकर गायब हो चुका था, या यो कहें कि वो कहीं छुप गया था या दूर भाग गया था। गीता सोच रही थी कि शायद मेरी ही मति मारी गई थी जो मैंने उससे किताब ले ली। सच कहें तो वो काफी समय से गीता को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था, हालांकि कभी कुछ कहा नहीं था। और आज जब उसे पता चला कि गीता को इस सब्जेक्ट की किताब की जरूरत है तो न जाने कहां से फौरन उस किताब को अरेंज करके उसके हाथों में पकड़ा कर चला गया था। उस समय तो गीता ने किताब पकड़ ली, लेकिन अब उसके छिप जाने या गायब हो जाने से उसका दिमाग बहुत परेशान हो रहा था। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। वो इस तरह परेशान हाल उसी पार्क में पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ गई। वहां पर कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे और वो उसके आसपास ही घूम रहे थे। गीता को ऐसा लगा कि जैसे शायद सब उसे परेशानी में देखकर उसके और करीब आ रहे हैं। खैर, हर तरफ से मन हटाकर उसने किताब का पहला पन्ना खोला। सरसराता हुआ एक सफेद प्लेन पेपर उसके हाथों के पास आकर गिर पड़ा। न जाने क्यों उसका मन एकदम से घबरा गया। समझ ही नहीं आया कि क्या होगा इसमें। फिर भी झुककर उसे उठाया और खोलकर चेक किया। कहीं कुछ भी नहीं लिखा था। वो तो एक समझदार लड़का है और मेरी हेल्प करना चाहता है, बस उसने खुद को समझाने की कोशिश की। फिर उसने दूसरा पन्ना पलटा तो एक और सफेद प्लेन पन्ना सरक कर गिर पड़ा। इस समय वो अनजाने में ही जोर से चीख पड़ी। पार्क में मौजूद आधे लोग पहले से ही उसकी तरफ देख रहे थे और बचे कुचे लोग भी अपनी सेहत पर ध्यान देने के बजाय उसकी ओर निहारने लगे। अचानक से सुधीर दौड़कर उसके पास आ गया। वो उसके चीखने की आवाज सुनकर काफी घबराया हुआ सा लग रहा था। नहीं, कुछ नहीं, बस वो इस घास में कीड़े से डर गई थी। ये मेरे पैर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। गीता ने घास पर चल रहे हरे रंग के एक छोटे से कीड़े को दिखाते हुए कहा, तुम बहुत डरती हो, इस नन्हे से कीड़े से डर गई। देखो वो तुम्हारी जरा सी चीख से कैसे दुबक गया है, सुधीर मुस्कुराते हुए बोला। सौम्या भी थोड़ा छिपते हुए मुस्कुरा दी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है डर। अब तक आपने सुना, उस दिन सुधीर गीता के हाथ में एक किताब पकड़ा के चला गया जो उसे पता चला था कि गीता को चाहिए। उस किताब में गीता को दो पन्ने मिले लेकिन दोनों खाली। गीता कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अब आगे सुधीर को सामने देखकर गीता बोली, तुम अभी तक कहाँ थे सुधीर? मेरी एक चीख पर ही दौड़ते हुए अचानक कहाँ से आ गए? अरे पागल, मैं तो यहीं पर था, जॉगिंग कर रहा था, सुधीर बोला। ओह, तो क्या तुम यहाँ रोज आते हो? गीता ने पूछा। हाँ, और क्या, तुम्हें क्या लगा आज तुम्हारी वजह से पहली बार आया हूँ? सुधीर ने मजाकिया अंदाज में बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, गीता बोली। चलो अब मैं घर जा रहा हूँ, तुम आराम से इस किताब को पढ़कर वापस कर देना। सुधीर बिना कुछ कहे और रुके वहां से चला गया। कितना बुरा है, बताओ उसने एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुम साथ चल रही हो। ऐसा सोचकर गीता को ऐसे महसूस हुआ जैसे वो किताब देकर उसने उस पर कोई एहसान किया हो। वो उदास होकर घर की तरफ चल पड़ी। मन में उसके लिए न जाने क्या क्या सोच रही थी और वो एकदम से उसका उल्टा ही निकला। घर आकर भी बिल्कुल मन नहीं लगा। कमरे में बेड पर लेटकर उसके ही बारे में सोचती रही। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या है ये सब? मन उसकी तरफ से हट क्यों नहीं रहा था? क्या वो भी मेरे बारे में सोच रहा होगा? गीता लेटे लेटे न जाने क्या क्या सोच रही थी। ओह, ये आज मेरे मन को क्या हो गया है, उसने हल्के से सिर को झटका दिया। पर दिमाग था कि उसकी तरफ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलो थोड़ी देर जाकर माँ के पास बैठती हूँ, अब तो वो स्कूल से आ गई होंगी, थोड़ी देर उनसे बातें करूंगी तो उधर से दिमाग हट जाएगा। गीता उठकर माँ के पास आकर बैठ गई। आ गई गीता बेटा, माँ उसको देखकर बोली। हाँ माँ, गीता ने कहा। तो माँ बोली, बेटा एक कप चाय बना लाओ, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। स्कूल में बच्चों की कॉपियां चेक करना बहुत दिमाग का काम है। गीता बिना कुछ बोले चुपचाप किचन में आकर चाय बनाने लगी। दो कप चाय बनाकर वापस माँ के पास आकर बैठ गई। लेकिन आज माँ ने कोई बात नहीं की, उन्होंने चुपचाप चाय पी और आंख बंद करके लेट गईं। शायद वो आज बहुत ज्यादा थकी हुई थीं। गीता वापस वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। उस पूरी रात गीता सो ही नहीं पाई। घरवटों में उसने सारी रात गुजार दी। सारी रात वो सुधीर के ही बारे में सोचती रही।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है डर। अब तक आपने सुना सुधीर जैसे हर वक्त गीता के आसपास रहता था, कुछ कहता भी नहीं था, और अगर उसे पता चल जाए कि गीता को किसी चीज की जरूरत है तो तुरंत उस काम को वो कर देता था। गीता बहुत परेशान थी कि आखिर सुधीर इस तरीके से क्यों कर रहा है। मनी मन तो वो भी सुधीर को पसंद करती थी, लेकिन कहे कौन। अब आगे, उस दिन कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। येलो कलर की साड़ी पहनकर वो कॉलेज पहुंची। वहां सब उसे ही देख रहे थे। उसे लगा आज तो पक्का सुधीर उससे बात करेगा, लेकिन पूरी पार्टी निकल गई पर अपने एक बार भी उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। अब सच में उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। गुस्से और रोने के समय अक्सर गीता के चेहरे पर लालिमा आ जाती थी, जो उसकी सुंदरता में इजाफा कर देती थी। वो यूं ही कॉलेज के गेट से बाहर निकल कर आ गई। अचानक से लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। कौन हो सकता है? मन में थोड़ी घबराहट का भाव आया और दिल तेजी से धड़कने लगा। सुधीर एकदम से गीता के सामने आ गया। ओह सुधीर, तुम? मैं तो एकदम घबरा ही गई थी। उसका दिल वाकई में घबराहट के कारण तेजी से धड़कने लगा था। सुधीर कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद एक खूबसूरत सा लिफाफा देते हुए कहा, ये सर ने आपके लिए भिजवाया है। गीता बोली, क्या है इसमें? तो सुधीर बोला, आपकी ड्रेस के लिए शायद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। सुधीर के चेहरे को पढ़ते हुए लगा कि वो सच ही कह रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भी भाव ऐसा नहीं था जिससे लगे कि वो मजाक कर रहा है। उस वक्त अचानक गीता के मन में ये ख्याल आया कि जो बात वो नहीं कह पा रहा शायद लिख कर दिया हो। गीता, अगर तुम कहो तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूं। आज मैं अपने पापा की कार लेकर आया हूं, सुधीर ने उसे जाते देखकर कहा। गीता ने बिना देर किए फौरन सिर हिला दिया, क्योंकि वो सुधीर के साथ थोड़ी देर का भी साथ गवाना नहीं चाहती थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे सुधीर के चेहरे को गीता बार बार पढ़ती रही, पर उस पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे अनुमान भी लगाया जा सके कि उसके दिल में कोई कोमल भावना भी है। गीता का घर आ गया था और वो उतर गई। उसने सुधीर से कहा, सुधीर घर के अंदर नहीं आओगे? नहीं, आज नहीं, फिर कभी। आज तो मुझे जल्दी घर जाना है, सुधीर बोला। ओह कितना खड़ूस है ये, इसकी नजर में तो जैसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो इससे एक तरफा प्यार कर रही हूँ। आज से इसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद। गीता ने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले लिया था। चाहे कैसे भी हो, मुझे अपने मन को समझाना ही पड़ेगा। चलो, अब कभी उसका नाम लेकर उसे याद नहीं करूंगी। गीता दिमाग झटक के मुस्कुराती गुनगुनाती अपने कमरे में आ गई। आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारा। मन में उदासी का भाव आया। सुधीर की वजह से ही तो इतना सच सवर के गई थी। खैर अब छोड़ो। उसने हाथ में पकड़े लिफाफे को बेड पर रखा और चेंज करने के लिए अलमारी से कपड़े निकालने लगी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है डर। अब तक आपने सुना, गीता सुधीर को पसंद करती थी, पर सुधीर कभी भी ऐसा कोई साइन नहीं देता था जिससे गीता को ऐसा लगे कि वो भी उसे पसंद करता है। हाँ, पर वो गीता के आसपास जरूर रहता था और अगर गीता को किसी भी चीज की जरूरत हो तो उस काम को फौरन कर देता था। उस दिन उनके कॉलेज में फेयरवेल था। गीता सच सवर के गई थी कि शायद आज सुधीर कुछ कहे, लेकिन उस दिन भी सुधीर ने कुछ नहीं कहा। बस उसे एक लिफाफा दिया और बोला कि ये आपको सर ने दिया है। गीता ने उस दिन निर्णय ले लिया कि अब वो सुधीर के बारे में और नहीं सोचेगी। अब आगे अलमारी से कपड़े निकालते निकालते अचानक गीता को ख्याल आया, चलो पहले इस लिफाफे को ही खोलकर देख लूं, सर ने ना जाने क्या लिखा होगा। बेमन से उसने खोला, उसमें से सफेद रंग का एक प्लेन पेपर निकलकर नीचे गिर पड़ा। ओह, तो ये बदतमीजी है। आज उसे फोन करके कह देती हूँ कि मुझे इस तरीके का मजाक पसंद नहीं है। गुस्से में आकर वो फोन मिला ही रही थी कि लिफाफे के अंदर रखे एक कागज पर नजर चली गई। वो निकालकर पढ़ने के लिए खोला ही था कि मम्मी के कमरे में आने की आहट सी हुई। मम्मी को भी अभी आना था। बेटा जरा मार्केट तक जा रही हूँ, कुछ मंगाना तो नहीं है? मम्मी बोली, नहीं मम्मी कुछ नहीं चाहिए। गीता ने फौरन मना कर दिया, चलो ठीक है आती हूँ, कहकर मम्मी चली गई। मम्मी के जाते ही उसने पेपर को पढ़ना शुरू कर दिया। पत्र तुम्हारा सुधीर के साथ खत्म हुआ था। जो लिखा था वो उसे खुशी से झुमाने के लिए काफी था। उसमें लिखा था, मैं अपने दिल से तुमसे ढेर सारी बातें करने की इच्छा को चुपके से छुपा लेता हूं। तुम्हें किन किन रातों में देर रात तक मेरे इनबॉक्स के कोने में हरे रंग में चमकते हुए देखा जा सकता है। डरते डरते मैं कीबोर्ड पर उंगलियां रखता हूँ, दो चार शब्द लिखता हूँ, फिर मिटा देता हूँ, तुम्हें भेजता नहीं। कहीं तुम गलत ना समझ लो, कहीं तुम्हें लगे कि मैं हद से ज्यादा कर रहा हूँ, कहीं तुम नाराज होकर मुझसे और दूर ना चली जाओ। प्यार को छिपा कर रखने का दर्द क्या होता है, क्या तुम समझती हो? नहीं समझोगी, मुझे पता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। कभी कभी तुम्हें बहुत देखने का मन करता है, मन करता है कि तुम्हारे पास चुपचाप कुछ देर हाथ पकड़कर बैठूं, होठों पर बातें ना हो लेकिन आंखों में हल्का सा नरम प्यार हो। इस इच्छा को भी मैं अपने सीने में दबा लेता हूँ, दूर से चुपके चुपके तुम्हें देखता हूँ, हल्की हल्की मुस्कान के साथ। तुम्हें छिपकर देखने में भी इतनी अनमोल खुशी मिल सकती है, अगर मैं तुमसे प्यार ना करता तो शायद कभी ना जान पाता।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है डर। अब तक आपने सुना, सुधीर अक्सर गीता के आसपास रहता था लेकिन उसने कभी उससे अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। बस एक बार एक किताब दी थी जिसमें दो खाली पन्ने लिखे थे, कुछ भी नहीं लिखा था। गीता भी उसे मन ही मन पसंद करती थी लेकिन जब इतने दिनों तक उसने कुछ नहीं कहा तो गीता को भी लगा कि उसे सुधीर को अपने मन से निकाल देना चाहिए। उस दिन सुधीर ने एक लिफाफा दिया था जिसे खोलकर जब गीता ने पढ़ा तो उसने उसमें अपने दिल का सारा हाल बयां कर दिया था। उसमें लिखा था, जब तुम दुखी दिखती हो तो मुझे भी बहुत दुख होता है, जानती हो। मन करता है कि मैं अपने प्यार भरे हाथों से तुम्हारी आंखें पोंछ दूं, अपनी उंगलियां तुम्हारे बालों में डुबो दूं, वो कितने नरम हैं। मन करता है कि मैं अपने असीम स्नेह से भरा सीना तुम्हारे लिए खोल दूं, तुम उसमें सिर रखो, आंखें बंद करके अपनी थकान, दर्द, तकलीफ और सारी उदासी भूल जाओ। मेरे साथ कुछ नहीं होता, ना प्यार जाहिर होता है, ना तुम्हें पाने की उम्मीद, बस एक अनजाना डर मुझे हर वक्त बेचैन रखता है। सीने के बहुत गहरे कोने में सिर्फ प्यास और कमी बढ़ती जाती है, ये डर कि कहीं तुमसे दुख ना मिले, कहीं तुम्हें खो ना दूं, कहीं तुम मुझे ठुकरा ना दो। सब कुछ समझता हूं, महसूस करता हूं, ये भी जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और तुम्हें पाना बहुत मुश्किल है, ये भी मानता हूं, फिर भी मैं खुद को नहीं समझा पाता। प्यार शायद ऐसा ही होता है, इसे किसी तर्क वितर्क से विश्लेषित नहीं किया जा सकता। ये जानते हुए भी कि दुख मिलेगा, उस दुख को प्यार करके ही चुपके से खामोशी में सहन करना पड़ता है। सीने में एक हल्की सी उम्मीद बांधे कि शायद एक दिन वो समझेगा और मेरी तरह ही मुझसे भी प्यार करेगा। गीता सोच रही थी, वो भी मुझे उतना ही प्यार करता है, वो भी मेरे लिए उतना ही बेचैन है, वो भी कुछ कहने को तरसता है, वो भी मेरा साथ पाना चाहता है, लेकिन मेरी ही तरह इस डर का शिकार था कि कहीं मैं मना ना कर दूं उसके प्यार को, अस्वीकृत ना कर दूं। वाकई वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, तभी तो कभी उसने मेरे हाथ तक को एक बार भी टच करने की कोशिश तक नहीं किया, वरना कितने ही मौके आए थे। वो खुशी से झूम उठी, एक बार खुद को आईने में निहारा और अब वो खुद पर ही मोहित हो गई और उसके मुंह से निकल पड़ा, आई लव यू सुधीर। उसकी आंखों के सामने सुधीर का मुस्कुराता चेहरा था और अब वो शर्मा के अपनी नजरें नीचे की तरफ करके जमीन को देखने लगी थी। आखिर उसके सच्चे मन की दुआ सफल जो हो गई थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी डर। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू लिसनर्स। आज की जो हमारी संगीत जगत के सितारा हैं, उन्होंने अपने निजी जीवन को बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं किया, पर फिर भी बोलते हैं ना, हीरा चाहे कोयले में हो अपनी चमक जरूर बिखेरता है। आज की हमारी प्लेबैक सिंगर ने लता जी के साथ एक ही नहीं बल्कि अनेकों गाने गाए हैं। इसके अलावा हिंदी संगीत जगत में इन्हें कई सारे गायकों के साथ गीत गाने का गौरव प्राप्त है, जैसे महेंद्र कपूर, किशोर दा, रफी साहब, मन्ना डे, पर सबसे ज्यादा इन्होंने आशा जी के साथ गाने गाए। ये हैं कौन, किस नाम से जानी जाती हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ, जैसे सवालों पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत विथ योर आरजे। जी हाँ, रात्रि का समय है, आज फिर से एक सफरनामा हमारे पास है। है किसका ये बताएंगे, लेकिन पहले ये प्यारा सा सॉन्ग उसी कलाकार की आवाज में जिसकी आज हम बात करने वाले।

आज हम जिस गायिका की बात कर रहे हैं उनका नाम है मीनू पुरुषोत्तम, जो कि हमारे भारत के पंजाब प्रांत से ताल्लुक रखती हैं। इनका मानना था कि जो लोग अच्छे गायक नहीं होते तो जरूरी नहीं कि उन्हें संगीत की जानकारी नहीं, वो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर या कंपोजिशर या कंपोजर हो सकते हैं। सिख धर्म में गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहब में 36 रागों के द्वारा सारे शब्द गुरुबानी कंपोज किए थे। अब वे देखने को या सुनने को नहीं मिल रहे, ऐसा कहना है हमारी मीनू जी का। हम वेस्टर्न म्यूजिक की ओर झुकाव कर रहे हैं तो ऐसी चिंता जताती हैं हमारी मीनू जी, जो स्वयं बहुमुखी प्रतिभा की धनी गायिका हैं। हिंदी, पंजाबी, मराठी आदि भाषाओं में अपना वर्चस्व कायम किया मीनू ने। हमारे रफी और ओपी नैयर साहब भी पंजाबी मिट्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने संगीत जगत में अपना योगदान दिया। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सिंगर्स के साथ इन्होंने डुएट गाए। तो चलिए एक बार पुनः से इन्हीं की आवाज का लुत्फ उठाते हैं आपके अपने शो भूले बिसरे गीत।

जिस प्रकार अपनी भाषा से प्यार होता है हर किसी को, वैसे ही हमारी मीनू जी को भी था। इसीलिए कहीं ना कहीं इनको पंजाबी फिल्म्स में बहुत सारे अवसर प्राप्त हुए और इन्होंने बहुत ढेर सारे गीत भी गाए। इसके अतिरिक्त, जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया कि अलग अलग भाषाओं में इन्होंने कई सारे गाने गाए। बॉलीवुड में तो इन्होंने ज़्यादातर ड्यूएट गीत गाए हैं, लेकिन जो भी गाने गाए हैं वो उस वक्त के आला गानों में से एक हुआ करते थे। हिंदी पंजाबी फिल्मों के गीत संगीत के मध्य मीनू पुरुषोत्तम के नाम को जान पहचान की कोई जरूरत नहीं है। मीनू पुरुषोत्तम लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी आदि के समकालिक रही हैं। शमशाद बेगम के साथ भी इन्होंने काम किया। बाकी सैकड़ों हिंदी फिल्मों में इनकी आवाज सुनी है आपने। नी मैं यार मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले, फिल्म दाग, हुजूर आला। चलिए एक गीत सुन ले इन्हीं की आवाज में।

मीनू जी पंजाब की मिट्टी से बॉम्बे कैसे आई, पटियाला से शहर लुधियानवी जी के गीत किस तरह गाए, एक संगीतकार से वे कैसे मिले और उनकी संगीत जगत की यात्रा के बारे में आज हम जानेंगे आपके अपने रात के फेवरेट शो भूले बिसरे गीत में। और आज हम जिस सफरनामे पे निकले हैं वो मैं आपको बता दूं, उनकी जानकारी इकट्ठा करने में मुझे बड़ा वक्त लगा। बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं, पर हाँ जितनी है उतनी काफी है, क्योंकि इनका मानना भी है कि संगीत अपने आप में काफी है। आइए आनंद लेते हैं इन्हीं के द्वारा गाए हुए एक

दोस्तों, मीनू पुरुषोत्तम हिंदी सिनेमा की एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर हैं, जो 1960 से 1970 के दशक में सक्रिय थीं और अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर जैसे कलाकारों के साथ युगल गीत गाए और उनके प्रसिद्ध गानों में हाथ न लगाना फिल्म ताजमहल से, जिसमें इनको सबसे पहले काम करने का मौका मिला था, और एक जंगल है तेरी आंखों में जैसे गीत शामिल हैं। साथ ही वो आर्य समाज में भी जुड़ी रहीं और कई सारे भजन भी गाती रहीं।

मीनू पुरुषोत्तम के जन्म की बात करें तो ये पटियाला पंजाब में 20 नवंबर 1944 को जन्मी। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों के लिए गाने गाए और अपनी आवाज से श्रोताओं का दिल जीता। उनके लोकप्रिय गीतों में कुछ यूं हैं, नी मैं यार मनाना नी, तेरी गुटदा जो कि इन्होंने मोहम्मद रफी के साथ गाया था, एक जंगल है तेरी आंखों में, अदाएं तीर है आशिक का दिल निशाना है। हाँ जी, अदाएं तीर है और आशिक का दिल निशाना है। तो चलिए आनंद लेते हैं, कहीं और क्यों जाना। एंजॉय करते रहिए आपके अपने फेवरेट शो भूले बिसरे गीत को, इस रात के सफर को और गहरा बनाते हैं इस गीत के माध्यम से।

0: लाजू की बल्कि धोखा देता है। चल भाग यहाँ से, पहले गोली तो ला दूंगा।
1: सुर जी कैसे जाऊंगा, ट्रेन चल रही है, मेरी टांग टूट जाएगी, आप जेल चले जाएंगे।
0: जेल चले जाऊंगा कैसे, तो जंजीर कैसे
1: ये ठीक है।

श्रोताओं, कलाकार तो अपनी कलाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन मीनू पुरुषोत्तम अपनी आवाज को बहुत ऊंचा ना रखने और संगीत के प्रवाह के साथ चलने की कला के लिए जानी जाती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी आवाज में उम्र के साथ बदलाव आया है, मतलब जो सभी के साथ आमतौर पर होता ही है, और अब वे भजन व गजल के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। तो क्यों ना हम भी सुन लें एक आधा गजल इस अदाकार

0: वेड़िया मैनू ते डर लगता है।
1: क्यों?
0: पमरा ते हरजाई हुंदा है।
1: मैं हरजाई नहीं, चलिए तेरा शहदाई हां।

0: जी।
1: अच्छा जी,
2: स्कूल टाइम पे ही मीनू पंजाब से बॉम्बे आ गई थी। वहाँ शहर लुधियानवी की बहन इनकी फ्रेंड थी, जिन्होंने अपने भाई से इन्हें मिलवाया और लुधियानवी जी ने रोशन जी से। रोशन जी ने इन्हें पहली बार मूवी ताजमहल में ब्रेक दिया। नेक्स्ट फिल्म ये फिर ना रात आएगी, जिसमें ओपी नैयर जी ने इन्हें दूसरा मौका दिया। फिर क्या था, फिल्मों का ये सिलसिला और मीनू जी के गायन का सिलसिला यूं ही अनवरत चलता रहा।

श्रोताओं, एक बार मीनू जी से पूछा गया, शायरी या गीत में क्या चुनेंगी आप? तो मीनू जी का कहना था कि संगीत तो अपने आप में पूर्ण है, जैसे चोली दामन का साथ, वैसे ही शायरी और गीत है। शायरी अपने आप में अलग है और गीत अपने आप में अलग है, पर दोनों ही पूर्ण हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वही जैसे चोली दामन का साथ, ठुमरी हो या फिर कोई और गीत। अच्छा, मान लीजिए अगर हम सफर पे निकलते हैं और अगर वहीं कहीं कोई कलाकार है तो उसके जहन में कुछ बोल याद आ जाएंगे और उसके बाद एक नई धुन सी तैयार हो जाएगी। तो एक दूसरे की कमी पूरी करती है गीत, संगीत, शायरी, लेकिन सभी अपने आप में पूरे हैं, ऐसा मानना है मीनू पुरुषोत्तम जी का। फिर इनसे एक सवाल किया गया कि मैथ के बच्चे को क्या संगीत सिखाया जा सकता है? तो इन्होंने कहा

हाँ बिल्कुल सिखाया जा सकता है, अभ्यास तो हर चीज में जरूरी होता है, लेकिन जब तक सीखने वाले के मन में शौक नहीं होगा वो सीख नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कोई एक संगीत का ज्ञाता हो और उसकी आवाज अच्छी ना हो तो क्या वो संगीत को नहीं जानता? जानता है, बेशक जानता है, बस गा नहीं सकता। जो फिल्मों में गाते वही सिंगर नहीं, जब फिल्म नहीं थी तभी संगीत उरूज पे थी, क्योंकि संगीत खुद में पूर्ण है, जैसे लोकगीत, ठुमरी, क्लासिक, सुगम संगीत से परे जीवन भी संगीत है, जो निरंतरता के साथ सुर लय यानी के सांसों और धड़कनों से पिरोया है, ऐसा मानना था हमारी मीनू जी का। इनका कहना था कि आर्टिस्ट को किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना ओरिजिनल देना चाहिए, वरना लोग आर्टिस्ट आएंगे तो पर पहचान उन्हीं की होगी जिन्हें वो फॉलो करते आए हैं।

तो श्रोताओं, आज हमने बात की एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी कलाकारा की, जिनका नाम था मीनू पुरुषोत्तम। अगले एपिसोड में फिर किसी को लेके आएंगे, या कुछ किसी सफर पे चलेंगे, या फिर कोई एक कहानी किस्सा आपको सुनाएंगे, जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे वो गीत हम आपको पिरो के लेके आएंगे जो भूले बिसरे हैं। जी हाँ, जिन्हें हम कहीं भूल गए हैं, लेकिन याद तो कराती रहेगी ना आपकी आरजे अनोखी उन सभी दौर को जो आप भूल गए हैं। तो बतौर तोहफा हर बार जो मैं आपको देती हूँ ये गीत, आनंद लीजिए। आप सुन रहे थे 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88-40-33-95-84। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
6: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
6: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरौला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
8: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

मगर मगर।